मस्ती में कलम जो में मजा नहीं मजाए गवारा।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खेड़ू पुनेरी आवाज 107.8 FM पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नव दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पे, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर. तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है. आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नव दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करने का जब पूरा तरीका हमने समझा, उसमें जब रिश्तों को देखा, तो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब रिश्तों की बात होती है तो उसमें दो लोग तीन लोग शामिल होते हैं और उन पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब अध्यात्म या अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी, उसको समझते हुए, खुद को समझते हुए रिश्तों को देखा, तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई और पावर हमारे हाथ में आ गई कि हम हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और तलाशते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को देखते हैं, कुछ कड़ियों में देखें, रिश्तों को हमने एक नई नज़र से देखा है कि अब हर चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा नाम आते ही मुझे लगता था मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन जब हर चीज़ को ठीक करने की पावर मेरे पास आ गई तो फिर मैं कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ।
1: एब्सोल्युटली। और उसके लिए हमने देखा कुछ एक बातों पर जिस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉज कि रिलेशनशिप को हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहले क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे को हम किस दृष्टिकोण से अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि नो वन एल्स कैन हर्ट मी।
0: I hurt myself.
1: You can say what you want, but I use what you say to hurt myself. No one can hurt me. I hurt myself. तो हम खुद ही अपने दर्द को क्रिएट करते हैं। कोई और मुझे दर्द नहीं देता है। कोई और धोखा दे सकता है, लेकिन दर्द फिर भी मेरी क्रिएशन है। तो जैसे ही मुझे वो रियलाइज होता, तो उसको फिनिश करना आसान हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि सारा दिन में जो हम लेबल्स लोगों को लगा देते हैं, तो लेबल्स लगाकर फिर हम उसमें बहुत सारे बैगेजेस भरते जाते हैं कि वो ऐसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं, तो उससे हमारे मन में गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, यू नो, ये सारे बैगेजेस भरते जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल हेल्थ और फिर अगर जल्दी नहीं फिनिश किया गया तो फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के, या कम से कम रात को तो ज़रूर एक बार अपने सारे बैगेज को हल्का करें, तो नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे,
0: क्लीन हम होंगे। या फिर मैंने क्रिएट किया हुआ होगा। हमने कहा था कि घंटी बजे उससे पहले ही हम एक इमेज क्रिएट कर चुके होंगे कि जैसी इमेज मैं चाहता हूँ, हाउ आई वॉन्ट टू परसीव हिम एक्चुअली।
1: एब्सोल्युटली। एंड उसमें सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो जो है जैसे हैं उनको अगर राइट परसीव करना है तो वो तो एक आत्मा है। अगर लेबल्स के आधार से परसीव करना है तो वो भी सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो एक आत्मा है एंड अ प्योर सोल। सो इफ आई वॉन्ट टू हैव द ट्रू परस्पेक्टिव, देन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और एक बार सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर रिश्ता बना तो फिर उसमें तो कोई दर्द की मार्जनी नहीं। लेकिन ये सारे जो हमारे औरों के साथ रिश्ते हैं, इनको निभाना, इनको स्मूथ करना, इसमें एनर्जी फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रिश्ता किसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा? अपने आप के साथ। आई विद माई सेल्फ। आज मेरा सारा अटेंशन इन रिश्तों पर है, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, सब कुछ इज़ फॉर समवन एल्स, बट डू आई लव माई सेल्फ? क्या मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो रिश्ता मेरे से नहीं जुड़ा तो औरों के साथ जुड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अपने आप से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, अगेन, यू नो, अपने आप से रिश्ता इन द सेंस, अगर मैं कॉन्शियसनेस पे भी जाती हूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आई द सोल क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद आई द बॉडी?
1: नो, दिस इज नॉट आई द बॉडी।
0: हाँ,
1: दिस इज तो माई
0: बॉडी। यस, आई द सोल, आई वो चैतन्य शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति, किसके साथ रिश्ता क्रिएट कर, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ?
1: नहीं, रोल के साथ भी नहीं रिश्ता। रिश्ता तो अपने आप के साथ, रिश्ता रोल के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, रिश्ता अपने आप के साथ। वो मतलब क्या? आप देखो, आत्मा के अंदर ये एक ताकत है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्फ। हमने पहले भी देखा कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू, वेयर, हियर। सिमिलरली व्हेन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ
0: I create an image of myself.
1: I will create a relationship with myself. Self, हम यहाँ बोल रहे हैं वो चैतन्य शक्ति को. तो when I the self reflect on myself, I am a pure soul. This is giving vibrations of purity to myself. You are a pure soul. This is giving vibrations of purity to you. I love you is giving vibrations of love to you. I am a loveful soul is giving vibrations of love to myself. तो इसलिए जब तक मैंने अपने आप को वो एनर्जी नहीं दी तो वो एनर्जी मैं औरों को दे पाऊँ वो पॉसिबल नहीं
0: होगा. तो अच्छा ये जो मनन करना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया
1: कुछ भी अपने बारे में कि ये जो दर्द हुआ ये क्यों हुआ ये दर्द के जिम्मेवार कौन था ये सारा जो अपने आप के साथ जो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ कि आपको दर्द हुआ क्यों हुआ

0: सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस ये कि मेरी कौन सी थॉट्स एंड फीलिंग्स रॉन्ग हैं, कौन सी राइट है मेरे
1: मेरे
0: लिए,
1: लिए
0: मेरे लिए, या वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है, लेकिन उनके लिए देखना तो पड़ेगा ना। इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस मुझे ये रियलाइजेशन दिलाती है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट भी कौन कर रहा था।
1: मैं कर रही थी।
0: आज दिन तक क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो अपने आप से रिश्ता क्या था। मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं खुद ही यहाँ बैठ कर क्या क्या क्रिएट कर रहा
1: इनफैक्ट
0: हूँ।
1: मुझे अभी तक यही पता था अपने साथ ये रिश्ता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मुझे वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल
0: क्योंकि मेरा
1: करूँगा।
0: रिश्ता उन सब के साथ था तो मैं उनको देख सकती थी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या क्या दे रहे हैं। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो मुझे अपने तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा। द सेल्फ अवेयरनेस मतलब यू नो गोइंग थ्रू द डे विद दिस अवेयरनेस कि ये सारी जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफिस में बहुत बड़ा केओस हो जाए, काम नहीं हो रहा, आई एम अवेयर कि प्रोजेक्ट खराब हो रहा है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरा भी कंप्यूटर क्रैश हो गया, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस। आई एम आई अवेयर कि ये सारी सिचुएशन में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, ये ध्यान रखना। मुझे ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि लोगों को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बेसिकली उस पर ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है। सो जब सारा दिन यहाँ देखना शुरू कर देंगे तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी। एंड फिर उनमें से कौन सी थॉट्स और फीलिंग्स मेरे लिए हेल्दी
1: अच्छी
0: हैं
1: है।
0: और
1: हाँ
0: कौन सी मेरे लिए ही डैमेजिंग है, क्योंकि हमने कितनी बार देखा कि अपना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं थी तो क्रिएट करते ही जा रहे थे। लेकिन जब अब ये जागृता आ जाएगी कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर फिनिश करने का प्रोसेस अपने आप आ जाएगा। अवेयरनेस होती है तब हमें रियलाइज होता है कि मैं लेबल्स नहीं हूँ, मैं रोल्स भी नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ, मैं हूँ कौन,
1: मैं वो चैतन्य शक्ति,
0: मैं वो चैतन्य
1: और
0: शक्ति।
1: जहाँ मैं पावरफुल सोल कहता हूँ ना, समवेयर इट एक्चुअली एम्पावर्स यू,
0: एब्सोल्युटली
1: यू नो, लाइक इट्स एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ रियलिटी
0: एब्सोल्युटली
1: व्हेन यू सी इट हैपनिंग। एक एक चीज को जब आप जीतना शुरू करते हैं, इट गिव्स यू दैट रियल इमेंस हैप्पीनेस, यू नो।
0: लेकिन जीतने वाले को ये पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे पास शक्ति कौन सी है।
1: हाँ
0: सी द होल प्रोसेस इज नॉट गोइंग लाइक दिस लेकिन इट्स गोइंग लाइक दिस। तो मुझे स्मृति आई आई एम अ पावरफुल सोल, मुझे स्मृति आई कि हर थॉट हर फीलिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देन मैं सारा दिन कल ऑफिस में उस अवेयरनेस के साथ रहा, मुझे स्मृति आई कि भले आप कुछ भी कहें मेरा दर्द मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं उस अवेयरनेस में चल रहे हूँ सारा दिन ऑफिस में, सो वॉट विल हैपन टू द रिलेशनशिप्स, वो तो अपने आप ठीक होते जाएंगे क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि सारी एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है। तो मुझे ध्यान किसका रखना है, अपना रखना है। तो मेडिटेशन में जो सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता है ये कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक यू नो इनर कनेक्शन, जो हम आज दिन तक सुनते आए थे कि अपने आप को देखना अपने आप को खोजना, लेकिन आई डोंट थिंक वी वर वेरी श्योर व्हाट वी वर लुकिंग
1: ओह,
0: फॉर।
1: लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी गोइंग इन मीन्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड।
0: देखना मतलब सिर्फ धीरे धीरे ये संकल्पों को देखना, फीलिंग्स को देखना और इस स्मृति से देखना कि हम क्रिएट कर रहे हैं। शुरू में कई बार ये हो सकता है कि हम सोचे नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं है। अभी सिर्फ देखते जाए, सिचुएशन आने दो, सिचुएशन आएगी, आप अपने रिस्पॉन्स को देखो और फिर देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था रिस्पॉन्स। इट स्टार्टेड विद अ थॉट। प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपसेट हो रहे हैं, आस्क योर सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्स। अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो आस्क योर सेल्फ ये किसने क्रिएट किया, दिस इज अवेयरनेस। फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा मैं ही तो डिस्टर्ब हुई थी, नेक्स्ट टाइम लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम करते करते मुझे रियलाइज हो जाएगा कि कंट्रोल का स्विच कहाँ है, यहाँ है, बाहर नहीं है। पहले हम वेट कर रहे थे बाहर ठीक हो
1: तो मैं ठीक हो
0: तो
1: जाऊंगी
0: मैं ठीक
1: ना,
0: हो जाऊंगा।
1: वेरी ट्रू। ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा।
0: अगर कोई बहुत डिस्टर्ब होता है ना ऐसे वायुमंडल में, बच्चे मान नहीं रहे या काम ठीक से नहीं ऑफिस में हो रहा, उनको आप बोलो अच्छा 2 मिनट आप तो बैठो सब ठीक हो जाएगा, बोले पहले सब ठीक तो हो जाने दो
1: तभी मैं
0: फिर
1: बैठी।
0: मैं बैठ जाऊँ। सो वी आर लुकिंग एट इट ऑलवेज।

0: the other way around. The self-awareness means I am the master of the situation. मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, परिस्थिति अपने आप हो जाएगी. तो मेडिटेशन का ये सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता. एंड सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें बेनिफिट मिलता, दैट इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल,
1: यस, यू नो, अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा.
0: देखो, आज दिन तक कंट्रोल शब्द जैसे ही हम सुनते थे, द इमेज दैट कम्स इज लाइक, यू नो, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ओवर पावरिंग समथिंग, या किसी चीज़ को बड़ा टाइट पकड़ कर रखना. लेकिन जहाँ अंदर की बात आती है, इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती, वहाँ कंट्रोल मतलब एक्चुअली क्या? टू लेट गो. टू लेट गो. इफ आई वॉन्ट कि मेरे मन की स्थिति इन कंट्रोल चले,
1: तो जाने देना.
0: तो जितने डैमेजिंग थॉट्स हैं, हर्ट वाली थॉट्स हैं, लेट देम गो. थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं. और जैसे ही हम इस अवेयरनेस से चलते हैं कि आई हैव टू लेट गो, ये थॉट, ये बैगेज मैंने पकड़ा है, लेट गो, लेट गो, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता जाता है. तीसरी बात जो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट करती है, वो होता है कम्युनिकेशन पर. हमारे जो कम्युनिकेशन है, आज दिन तक हम समझते थे कम्युनिकेशन इज एट वर्ड लेवल, कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक दूसरे के लिए करते हैं, वो कम्युनिकेशन है. अब हमें समझ में आता है कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के आधार से होता है, कि मैं एनर्जी जो आपको ट्रांसमिट करती हूँ. अब मुझे अपने वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. पहले
1: कहना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू.
0: कई बार क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बोलते कुछ और हैं, तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है. सपोज आई डोंट लाइक वॉट यू आर वेयरिंग राइट नाउ बाई चांस, बट आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वट एम आई ट्राइंग टू डू, कि मेरी थॉट कुछ और है, अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रही हूँ.
1: और फिर उसमें डर रहता है कि कहीं निकल ही ना जाए, कि अच्छा ये रंग जो है ना कभी भी निकल सकती है वो.
0: अब कम्युनिकेशन पर कैसा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा, और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तनाव क्रिएट होता है, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है. अब इसी में अगर कभी गुस्सा आ गया मुझे गलती से, तो वो कन्वर्टर काम करना
1: बंद कर देगा और मैं कहूँगी आप तो गंदे लग रहे थे, मैंने फिर भी कहा कि आप अच्छे लग रहे थे,
0: तो वो सारा ऐसे का ऐसे बाहर निकलने लगता है. और फिर हम कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया. क्यों? क्योंकि मेरा कन्वर्टर बीच का काम करना बंद हो गया था. तो कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. वी आर सेइंग के लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हम कहते मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ. व्हाई? वेयर इज द प्रॉब्लम? यहाँ क्लैरिटी नहीं है. यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाट डू आई फील. जो यहाँ क्लियर होगा, उसको यहाँ एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा. तो मेडिटेशन से, क्योंकि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती जाती है, तो फिर वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आती जाती है.
1: एक्चुअली हमें भी तो कभी कभी नहीं पता होता. यस, मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन दैट. हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता. हम सोच तो रहे हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही होती हैं.
0: तो इसलिए अंदर से अगर बुरी लग रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं लेकिन अच्छा है, बोलना चाहते हैं बहुत बहुत अच्छा है, तो बाहर रिजल्ट क्या निकल कर आएगा?
1: कन्फ्यूजन.
0: यस. एंड फिर सामने वाले को आप भले बहुत बहुत अच्छा बोलो, लेकिन उनको फिर भी वाइब्रेशंस कौन से आ जाएंगे? नहीं, समथिंग इज नॉट कम्फर्टेबल. और फिर हम कहेंगे मैंने इतना अच्छी तरह से बोला, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो तो मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन कौन सी ट्रांसमिट की. तो मेडिटेशन क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पर हमें वर्क करने में मदद करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है. बहुत बार भाई बहनें जब ब्रह्मा कुमारीज में आश्रम में आते या माउंट आबू में आते, तो कहते हैं यहाँ सारे भाई बहनें ऐसे ही बात करते हैं क्या? दे आर ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेरी स्लो एंड यू नो हाउ कम दे डू इट. They need to know that no one has been trained how to do it. Many people also ask me, आपको ट्रेनिंग मिला ऐसे कैसे बोलना है, इतना धीरे आप लोग सब बहने कैसे बोलते हो? No. No one here has worked at the level of the words. लेकिन everyone is working at the level of the thoughts. वो words तो अपने आप हो जाते हैं. आजकल बहुत emphasis है communication skills पर, presentation skills पर. आपकी जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस में, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम सब उसको वर्ड लेवल पर देख रहे हैं। और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल। थिंकिंग में जब तक
1: कोई नहीं
0: क्लैरिटी नहीं
1: करता।
0: आएगी, थिंकिंग में जब तक फोकस नहीं आएगा, थिंकिंग पर जब तक अटेंशन नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इट विल नॉट हैपन। वो होगा भी अगर आप ट्रेन करके उसको करेंगे भी, इट्स आर्टिफिशियल, क्योंकि वाइब्रेशन तो फिर भी कुछ और ही है। लेकिन अगर उसको रूट लेवल पर, थॉट लेवल पर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, फोकस कर देंगे, यू नो, क्लियर कर लेंगे और स्लो डाउन कर देंगे थोड़ा।
1: एक्चुअली यू नो, जहाँ हमारा थिंकिंग पे अवेयरनेस भी आ जाती है, हम कभी भी कुछ नहीं ऐसा बोल रहे होते जो हम नहीं बोलना चाहते।
0: एब्सोल्युटली,
1: हमारा ये कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर।
0: दैट्स व्हाई वी सेड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिकेशन। सी, ऑल थ्री आर फॉलिंग इनटू प्लेस। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं सकती अब, क्योंकि एक तो आप थॉट्स, अभी क्या हुआ था, वो कबर्ड बंद था, बहुत सारी थॉट्स वहां पे थी। वो कब खुल जाता था और बाहर निकल जाता था हमें ही नहीं पता चलता था, लेकिन अब वो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट ही नहीं होने वाले हैं, तो बाहर निकलने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ तक कि भी अगर आपको किसी को डिसिप्लिन करना है, बच्चों को करना है, ऑफिस में अपने स्टाफ को करना है, क्योंकि एक टीम है, तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको करेक्टिव मेजर्स तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन सोच समझ कर अगर बोला गया होगा एक एक शब्द, और बिना रिएक्ट किए बोला गया होगा, देन इट्स गोइंग विद द राइट एनर्जी। हम जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को आपकी ये पर्टिकुलर बात नहीं ठीक लग रही है, इट कैन बी ट्रू, बट आई हैव टू डू इट व्हेन आई एम स्टेबल एंड व्हेन आल्सो यू आर स्टेबल।
1: यस, यू नो, एंड इट हैज हैपेंड। यू नो, मैंने इसको पूरा ट्राई करके देखा कि डेफर कर दो। मैंने एक घंटा, आधा घंटा डेफर किया, उस आधे घंटे में मैं कूल ऑफ हो गई, आई कुड सी द सिचुएशन।
0: एब्सोल्युटली सिंपल है। आप देखो, अगर मैं यहाँ से चलकर आ रही हूँ और मुझे चलते चलते यहाँ चोट लग जाए और मेरा पैर को दर्द होने लगे, अब आप क्या करेंगे तुरंत?
1: हाँ, मैं आपको सहलाऊंगी।
0: पहले आप मुझे उठाएंगे, फिर आप यहाँ ठीक करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, दर्द करूंगी, फिर आप मुझे समझाएंगे। आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि जब मुझे यहाँ चोट लगे है,
1: बोलती जाऊंगी आपको,
0: ऐसे थोड़ी चलना चाहिए था, ये कोई चलने का तरीका है? उससे क्या होगा, अगर आप मुझे बेस्ट मैसेज भी दे रहे हैं मेरे लिए, मेरे फायदे की भी बात कर रहे हैं, मैं सुनने की हालत में कहूँ, मैं तो दर्द को देख रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है कि कोई मुझे उठाए, उस समय आप बोलो चलने का तरीका ये था, आई हैव नॉट हर्ड यू। एंड मोस्टली क्या होता, जब सामने वाला दर्द में है, तब हम उसको सारा मैसेज दे रहे होते हैं कि राइट तरीका क्या है, उस टाइम उसने शायद सुना ही नहीं।
1: इट गोज ऑन द डेफ इयर्स एक्चुअली।
0: एंड जब वो ठीक हो जाता है, तब नहीं बताते हैं।
1: और तब क्या है, तब तक हम भी तो दर्द में ही होते हैं। जब हमारा कोई नुकसान हुआ, तो तब हम जब समझा रहे होते हैं, बेसिकली हम खुद दर्द में होते हैं।
0: यस, सो व्हाट विल हैपन, तो अब उसमें क्या हुआ, मैं गिरी तो मैं दर्द में, आपको गुस्सा आया मुझे ऐसे देखकर तो आप दर्द में, और इस दर्द में, मुझे दर्द में आप समझाते हैं कि चलने का तरीका क्या है। इट वोंट वर्क। दिस हैपेंस इन द ऑफिस। अगर किसी से गलती हो जाती है, आप टीम लीडर हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम लीडर कि सामने वाला ऑलरेडी दर्द में है, उसको पता है कि गलती हो गई है, गिल्ट है, ऑलरेडी स्केर्ड, फियर, एवरीथिंग उसमें हम, और उस समय उसको सारा डांटते हैं। लीडर, राइट कम्युनिकेशन स्किल, उस समय आप उसको एम्पावर करें, उसके कॉन्फिडेंस को जो बिल्कुल उस समय क्रैश हो गया है, फिर से उधर लेकर आए, एंड देन व्हेन बोथ आर स्टेबल, देन टॉक। पेरेंट एंड चाइल्ड, दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन। आज बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, या शायद वो फेल हो गया है, उस दिन डांटना जस्ट डजंट वर्क। वो तो ऑलरेडी इतने दर्द में है, एक दर्द में व्यक्ति को और दर्द देना,
1: क्योंकि हम दर्द में आए ना, तो मैं किस पे निकालूं?
0: बट हाउ फेयर इज इट कि वो बच्चा अभी तो ऑलरेडी दर्द में है ना, उसने क्लास को फेस किया कि वो फेल हो गया, वो गिल्ट में है, वो हमें नहीं फेस कर पा रहा, वो तो अपने को भी नहीं फेस, उसमें उसको और डांटते हैं। जितने बच्चे आज दिन तक फेलियर के बाद सुसाइड करते हैं, वो क्यों करते हैं?
1: फियर
0: ऑफ फेसिंग द पेरेंट्स। हाउ मच फियर दिस इज, डीप रूटेड। क्यों? वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ स्टेट ऑफ पेन। सो वो कम्युनिकेशन कभी भी राइट रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगी। तो मेडिटेशन से, क्योंकि माइंड में अवेयरनेस आ गई, कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल सिर्फ मन पर नहीं आया, फिर सारी कर्म इंद्रियों पर आ गया। तो मन पर कंट्रोल आया तो मुख पर भी तो कंट्रोल आ
1: और
0: गया।
1: वो कंट्रोल नहीं हुआ ना, मतलब
0: इट्स
1: वो
0: अ नेचुरल थिंग
1: हाँ,
0: ना।
1: वो अपने आप ही हो गया वो।
0: जैसे आपने कहा कि मैं उसको डेफर कर सकती हूँ, अगर पहले रियलाइजेशन नहीं था तो कोई बोले कि अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद बोलो, तो नहीं।
1: ओ कैसे 1 घंटे तक, क्या मतलब क्या करेंगे फिर 1 घंटे तक?
0: और वो रियलाइजेशन भी नहीं होता था, हमें लगता था अभी ही बोलना है, लेकिन दिस इज अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस ही, दिस इज द जर्नी। अब अवेयरनेस है, हम कहते हैं मुझे पता है ये हो गया है, बट वील टॉक अबाउट इट लिटल लेटर। एंड वो जब फिर आप डायलॉग करोगे, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा, बिकॉज एनर्जी जो फ्लो कर रही होगी दैट विल बी पॉजिटिव।
1: एंड देन विल बी एक्चुअली लुकिंग फॉर रीजंस व्हाई
0: एब्सोल्युटली
1: दैट हैपेंड, यू नो,
0: वी
1: बिकॉज
0: विल
1: हम इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे होंगे उसे,
0: एब्सोल्युटली।
1: हम उस वक्त बरसर्क होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं।
0: तो लेट्स रिमेम्बर कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए, वेदर इट्स इन ऑफिस और एट होम, दैट्स नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट, लेट एवरीवन गेट ओके। उस समय नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, जस्ट लेट एवरीवन गेट ओके, वो भी जिनसे हो गया है एंड मैं भी जो हर्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हर्ट को ठीक करना है, फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने सेल्फ के साथ रिश्ते की बात की, रिलेशनशिप अपने साथ, और उसमें जहाँ जब हमने समझा तो मेडिटेशन एक्चुअली डजेंट लुक लाइक मेडिटेशन, यू नो, इट्स अ सेल्फ टॉक बेसिकली। और वो जो रिश्ता है, तो हम थोड़ा सा अनुभव क्यों ना अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें
0: डेफिनेटली
1: उसका।
0: सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ 1 मिनट्स अपने साथ इस तरह से हम बैठ सकते हैं, एंड जस्ट गिव द राइट काइंड ऑफ थॉट टू माई सेल्फ। ना परिस्थिति के बारे में सोचना है, ना लोगों के बारे में सोचना है, ना अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक, वो तो सारा दिन ही चलती रहती है, बट द राइट काइंड ऑफ थॉट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ। लेट्स ट्राई इट राइट नाउ। अपने आप को देखें, इन रोल्स, रिलेशनशिप्स, लेबल्स, इन सब से परे, इन सब को निभाने वाला मैं, आई द एनर्जी विच इज मास्टर ऑफ दिस बॉडी, चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि की मालिक, कर्म इंद्रियों के भी मालिक, आई टाइनी स्टार शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। अपने आप को विजुअलाइज करें कि यहाँ से बैठकर मैं इन कर्म इंद्रियों को और इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, मैं चलाने वाली शक्ति हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी thought and feeling, and today I choose happiness. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, मैं कैसे रहूंगी stable, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। I am a happy being. This is already my nature. अब मुझे आज सारा दिन में अपने संबंधों में इसे सिर्फ एक्सप्रेस करना है, इसे मांगना नहीं है, ढूंढना नहीं है, छीनना नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैं हूँ ही। आई एम अ हैप्पी बीइंग, वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस मुझ आत्मा से निकल कर चारों तरफ फैल रहे हैं। एंड टुडे आई जस्ट नीड टू टेक केयर कि इस स्थिति को रखते हुए मुझे हर संबंध और कर्म में आना है। ओम शांति,
1: ओम शांति। और जिस तरह से आज हमारे साथ के रिश्ते को ही आपने बताया, और कहीं ना कहीं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं, तो वो सब कुछ हमें करना नहीं होता जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करें। आई थिंक इट स्टार्ट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वी बिकम पावरफुल, वी स्टार्ट रियली बिकमिंग पावरफुल। थैंक यू सो मच सर शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए। हम चलते हैं, कोई बात कोई सवाल आपके पास है हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। जिन रिश्तों को हमने समझा देखा उसमें एक महत्वपूर्ण रिश्ता अभी और है, और वो है परमात्मा के साथ रिश्ता। उसको भी साथ मिलकर खंगालेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला
3: अहो काय आला
2: आला आला आवाज रेडियो चा

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
2: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट, देन नाउ वट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं, इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है, तो लगा कि इस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीखकर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं, यानी कि जो अन्न है, उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए सही खाना, डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहाँ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हो। ये जो मन की बात थी उसका, और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
1: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज़्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज़्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से ही प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
0: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम
1: बीमार भी होने लगे,
0: हम वो सफर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो वो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहाँ हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है, कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
1: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते हो, लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते, उसके कारण आंसू आने लगते। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं को दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वॉलेटाइल एसिड्स आँखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ। जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी, तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें यह देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे फ्रूट्स के, सब्जियों के, और आपको बेनिफिट्स होंगे। तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी।
0: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहाँ तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
1: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको।
0: अच्छा,
1: जो नर्व्स की बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक, वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं। बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ले इस पर।
2: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंग्जाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी।
1: हाँ, अल्टीमा भी ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है।
2: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर इतना 10% कम हुआ लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो वी आर स्टिल 10% अप ना। तो दैट वी हैव टू
1: ऑल्सो देखना, ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है। खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे।
0: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखें, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता। जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं, सी दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें।
2: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा। नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग, जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स। तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं, दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स वाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी। राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं they will be out, and उसके लिए थोड़ा सा और करना, the kitchen should be very clean, the environment should be very pure, आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा atmosphere उस तरह से create हो जाता है कि thoughts आपकी automatically फिर उसी तरफ चलती हैं। और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, don't go to cook, sit with yourself, resolve the issue and then go into the kitchen. Otherwise, गुस्से वाला खाना बनेगा।
1: जो शिवानी बन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ। इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर ही किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है।
0: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हैं हम, सारी चीज़ें ज्ञान समझने के बाद, सिस्टर शिवानी बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह
1: बनती है? तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को बोले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है। मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे। लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है। ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो। तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ। तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है। आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ। फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे। कहते बस थोड़े ही दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा।
0: दिस इज इवन माई एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन, हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील, जब मैं बात कर रही हूँ आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था द मोमेंट आई एक्चुअली। और अब मैंने रियलाइज़ किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है
2: बिकॉज़ अब औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे।
0: हाँ,
2: एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी।
0: आपको हर चीज पे एफर्ट था
2: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज 4-5 चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाइएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रही हूँ। ठीक है, दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें हैं ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं। सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं, कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता, दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं, सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं, तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन. 10 मिनट ही खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन. नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया. ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं.
1: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे.
0: नहीं तो कभी ज्यादा
1: करते हैं. हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा, डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी. तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है. केवल बात करनी है पहले ही कर लो या उसके बाद करो, बेस्ट है. तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट होगी.
0: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था. बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंड सेट. यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है. इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का. अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता. लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट. लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंग्जाइटी रहती है कि अब ये खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करूं, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ.
2: फियर की ना.
0: हाँ,
2: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन.
0: बना दूंगी, चला हाँ. ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाए, ओ वो चले ना जाए ये लोग, यू नो, सो दीज वाइब्रेशंस.
2: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, तब कैसे खिलाते हैं? कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं. कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
0: बच्चा रो रहा,
2: दूध चला जाए. पर बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाए, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितना इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है. कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए.
0: तो बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है, कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं. हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले.
1: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो. आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया. बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो. अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे. फिर भी जो एक दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है. फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज, जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई तरीके से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी.
0: एंड देन बिना, अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे. गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
2: ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है तो वो उसके मन के और तन के लिए दोनों के लिए बहुत असरदार है.
0: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे. पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड. या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं. फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं.
1: दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है. अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. जैसे खाने की बात, कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं. और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भले आत्मा ही कराती है परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए वह बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियाँ देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
0: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास यू नो वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं।
1: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में ही बहुत बड़ी कमी है।
0: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है, उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता, ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है।
1: या डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज के पेशेंट है पता है फिर भी खा रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई, पता है कि वे नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना और फिर टोटली मैं समाप्त कर दूं। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
2: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
0: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
1: वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई,
0: लेकिन वो भी हार्मफुल है,
1: एडिक्शन।
0: सी, हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
1: तो
0: वो
1: आदत हो गई। हाँ
0: हाँ, तो वो सही नहीं
1: सही
0: है,
1: बिल्कुल नहीं।
0: सर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए।
2: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। यू नो, मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ वॉट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे तो उनको कैसे समझा पाएंगे। द एनर्जी वॉन्ट वर्क देन दैट साइड। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। सी, इट्स अ लिटिल डीपर, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ का धन कैसे कमाया जाता है। बी वेरी केयरफुल।
1: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो, वो सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो। आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है। अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो, तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए।
0: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है। शिवानी डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हमने बहुत सी बातें समझी, इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहाँ से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, ज़रा सोचना शुरू करें, ज़रा देखना शुरू करें, ज़रा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे। ओम शांति।

तुम्हारी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

मैं हूं मंदार, एसीपी ठाणे मुंबई से। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग करियर ऑप्शन में करियर इन मेडिकल फील्ड में बात करेंगे, और आशा करूंगा कि आप सभी को कुछ नई और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं करियर इन मेडिकल फील्ड में, और देखा जा रहा है कि मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी जो है कमाई है, और साथ ही साथ एक अच्छा सम्मान भी मिल जाता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो है एक जो क्या कहते हैं लोगों के बीच में एक अच्छी छवि बनी रहती है। मेडिकल कोर्सेज भारत में सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में से आते हैं। हर साल लाखों छात्र भारत के पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जो हर साल नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते और फिर भी एमबीबीएस के अलावा मेडिकल कोर्स कर अपना करियर संवारते हैं। एम्स और जिपमार को नीट में शामिल कर दिया जाने के बाद से अब इस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रतिस्पर्धा का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जिम्मेवार नीट एग्ज़ाम के बिना किए जा सकने वाले मेडिकल कोर्सेस के विकल्पों की तलाश करते रहते हैं, और यहाँ तक कि नीट की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी उन मेडिकल कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं जिनका चुनाव करने के लिए नीट परीक्षा में सफल होने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ के बारे में बता दें, और मेडिकल फील्ड में काम करने के इच्छुक कई छात्र एमबीबीएस तथा बीडीएस जैसे प्रतिष्ठित कोर्सेज के अलावा 12वीं के बाद नीट के बिना उपलब्ध होने वाले मेडिकल कोर्सेज के विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं, और देश की एकमात्र सबसे बड़ी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल पाए बिना किए जा सकने वाले कोर्सेज का विकल्प चुनने के लिए उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि नीट के बिना किया जा सकने वाले मेडिकल कोर्सेज कौन से हैं। नीट के बिना मेडिकल कोर्सेज और इसके लिए पात्रता और तैयारी की पूरी जानकारी के लिए इस जगह पर हम लोग बात करेंगे, और चिकित्सा जगत से संबंधित बहुत सारे ऐसे विकल्पों के बारे में बात करेंगे, और आशा करूँगा कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और एक ऐसे विकल्प उपलब्ध है जहां मेडिकल कोर्स करने के इच्छुक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और बेहतर नीट रिजल्ट लाए बिना भी शानदार वेतन वाली जॉब कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो चिकित्सा के क्षेत्र में करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नीट 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, वो भी इनका चुनाव कर सकते हैं। नीट के बिना किए जाने वाले मेडिकल कोर्सेस का अध्ययन भी आकर्षक करियर अवसर प्रदान कर सकता है। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग बड़ी रुचि से आपको हर चीज़ बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप सुनाए हैं रिमोट 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए बात करते हैं करियर इन मेडिकल फील्ड के बारे में। नीट के बिना मेडिकल कोर्सेज को किया जा सकता है, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। कई बार नीट परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करना पड़ता है, उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं, और फिर अगर नहीं होता है तो फिर मन खट्टा हो जाता है। तो ऐसे में उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना या नीट के बिना भी अलग अलग मेडिकल कोर्सेज हैं जिसको जानकर आपको खुशी भी होगी, और इन्हें कर आप मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा जो है वेतन भी पा सकते हैं या खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आज हम लोग मेडिकल कोर्सेस जो है उसमें आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जी हाँ, पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशन, फिजिशियन असिस्टेंट आदि जैसे कोर्सेज शामिल हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें MBBS डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, हालांकि इस क्षेत्र में कुछ खास लाभ भी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में जहां पर आपको नीट वाला एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो इस पर आप ध्यान से सुने। 12वीं के बाद जो है लोकप्रिय कोर्सेज हैं, 10वीं के बाद भी लोकप्रिय कोर्सेज हैं। नीट के बिना मेडिकल कोर्स के लिए पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट। तो नीट एग्ज़ाम के बिना 12वीं कक्षा के बाद चिकित्सा पाठ्यक्रम का विकल्प चुनने के लिए चिकित्सक उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने इस योग्य हो सके, इसमें शामिल हो सके। सबसे पहले तो न्यूनतम

उम्मीदवारों को पाठ्यक्रमों के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है जिनके लिए वे नीट में प्राप्त किए बिना ही उम्मीदवारों को 12वीं के बाद विशेष पाठ्यक्रमों को करना ज़रूरी है। जैसे कि आप शुरू करते हैं उसमें से, जैसे आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं नर्सिंग करके। नर्सिंग एक जो है अच्छा कोर्स है, पाठ्यक्रम है, जिसमें उम्मीदवार को चिकित्सा के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए तैयार होना होता है और न केवल मानवता का इलाज करने के लिए बल्कि ज़रूरतमंदों के प्रति उम्मीदवारों में स्नेह, देखभाल और धैर्य के गुण भी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम विकसित करता है। और ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। नर्सिंग पाठ्यक्रम से डिग्री होने के बाद उम्मीदवार स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, नर्स शिक्षक, मेडिकल कोडर आदि के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। नर्सिंग के लिए वैसे तो नीट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब कई राज्यों में नीट स्कोर के माध्यम से बीएससी नर्सिंग एडमिशन होने लगे हैं। ये भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उन शीर्ष पाठ्यक्रम विकल्पों में से एक है जिसको बिना नीट के भी किया जा सकता है। और फार्मेसी, जिसके बारे में हमने विस्तार से बात किया था, फार्मेसी दवा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषयों जैसे कि ड्रग सेफ्टी, खोज, मेडिकल केमिस्ट्री, औद्योगिक फार्मेसी तथा कई अन्य अध्ययन के कोर्सेस हैं। जो फार्मेसी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वे 12वीं के बाद बीफार्म का विकल्प चुन सकते हैं और इसके लिए उम्मीदवार को नीट में उपलब्ध होना या फिर नीट से पास होने की अनिवार्यता नहीं है। बीफार्म एक डिग्री कार्यक्रम है जहां छात्रों को फार्मेसी की मूल बातें सिखाई जाती हैं। बीफार्म करने के लिए छात्रों के लिए करियर के कई अवसर हैं, सरकारी से लेकर निजी क्षेत्र तक, या फिर खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और उम्मीदवार केमिकल टेक्नीशियन, ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट आदि बनने के विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आइए, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो इन विकल्पों को चुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर इन मेडिकल फील्ड, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ करियर इन मेडिकल फील्ड की बातें हो रही हैं, और जैसे कि मैंने बातें की आपको, बिना नीट के आप जो हैं नर्सिंग में अपनी जो है अच्छी पकड़ बना सकते हैं, उसके बाद फार्मेसी में भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी उपचार के उस तरीके के अध्ययन से संबंधित है जिसमें भौतिक बलों जैसे कि उष्म, बिजली, यांत्रिक दबाव और यांत्रिक बलों के माध्यम से उपचार किया जाता है। फिजियोथेरेपी को नीट के बिना किए जा सकने वाला चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का संतोषजनक और लाभदायक करियर माना जाता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक डिग्री प्रोग्राम है जिसमें छात्र विकारों को शारीरिक गतिविधि के जरिए ठीक करना सीखते हैं। फिजियोथेरेपी या बीपीटी के स्नातक करने के बाद उम्मीदवार के पास कई करियर विकल्प होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य और फिटनेस क्लिनिक खोल सकते हैं, विशेष स्कूल, औद्योगिक या स्वास्थ्य के लिए उद्योग, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में सेवा देना भी शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा विकल्प है और डॉक्टर खुद इसके लिए रिकमेंड करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है फिजियोथेरेपी एक अच्छा विकल्प है जहाँ पर आप अपने विशेष कार्य को कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ में एक और करियर ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर मेडिकल फील्ड में सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पशु चिकित्सा विज्ञान। वेटनरी कोर्स 12वीं के बाद आप बिना नीट के भी कर सकते हैं। पशु चिकित्सक जो है ये एक ऐसा विज्ञान है जो जानवरों के रोगों के उपचार और डायग्नोस्टिक से संबंधित है, जिसे अंग्रेजी में वेटनेरियन कहते हैं। और पशु चिकित्सा के बारे में जानने या अध्ययन करने के इच्छुक उम्मीदवार कक्षा 12वीं के बाद बैचलर इन वेटनरी साइंस का विकल्प चुन सकते हैं। ये एक स्नातक की डिग्री प्रोग्राम है जो 5.5 सालों का होता है, जिसमें अंतिम 6 महीने जानवरों के उपचार से संबंधित चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनिवार्य इंटर्नशिप के होते हैं, और जिसमें आम तौर पर पशु चिकित्सा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। BVSC ग्रेजुएट डॉक्टर बनते हैं और पशु सर्जरी के क्षेत्र में सेवाएं दे सकते हैं, और पशु चिकित्सा सर्जन, सहायक पशु चिकित्सक, वेटनरी फार्माकोलॉजिस्ट, वेटनरी न्यूरोलॉजिस्ट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। इसके बाद एक और विकल्प भी है जो आपको बेहद खुशी प्रदान करेगा, वो है मनोविज्ञान। जी हाँ, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का विज्ञान अध्ययन है। इस कोर्स में मानव विकास, खेल, स्वास्थ्य, दैनिक सामाजिक, व्यवहारिक और संज्ञात्मक प्रक्रिया जैसे कई उप क्षेत्र शामिल होते हैं। उम्मीदवार 12वीं के बाद बिना नीट के BA ऑनर्स साइकोलॉजी का विकल्प चुन सकते हैं। ये पूर्णकालीन 3 वर्षीय स्थानक डिग्री पाठ्यक्रम है, और इसे करने के बाद उम्मीदवार को निजी और सरकारी क्षेत्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है। उन्हें विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों, क्लिनिकों, स्कूलों और अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। मनोविज्ञान स्थानक व न केवल मनोवैज्ञानिक है बल्कि एक सलाहकार, सीमा बल अधिकारी, मध्यस्थ, न्यूरोसाइंटिस्ट आदि के रूप में नौकरी पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया आज, और विदेश में इसकी जो है बहुत जल्दी मांग है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे लोग जीवन शैली देख रहे हैं और जीवन शैली के साथ साथ जो मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है इसमें बड़ा काम करता है, क्योंकि लोगों का मन अशांत हो चुका है, डिप्रेशन, तनाव, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आए दिन जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हमारा मन ही विशेष रूप से उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मनोविज्ञानिक एक सहायक विकल्प बन जाता है लोगों की सेवा अर्थ। तो इस क्षेत्र में आप अच्छा जो है काम कर सकते हैं और बढ़िया
कमा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद और भी कुछ करियर ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, करियर इन मेडिकल फील्ड, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ बिंदु वागले। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे हम लोग करियर इन मेडिकल फील्ड में, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप नीट के बिना कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज के बारे में मैंने बातें की। और नीट यूज़ के बिना मेडिकल डिग्री का करियर स्कोप कितना अच्छा है और कितने ज़्यादा उसमें अलग अलग फील्ड है जिसके बारे में हम बात करें। इन व्यवसाय में कार्य और परिश्रम का दायरा अनुभव विशेषता और योग्यता में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। ये पेशेवर डॉक्टरों के साथ या स्वतंत्र सूटकर्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं या अपनी आज़ाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। नीट के बिना 12वीं के बाद बेस्ट मेडिकल कोर्सेस आपको इसकी जानकारी मिल रही है। तो जैसे कि मैंने ऑक्यूप्रेशर की बात, अब यहाँ पर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन फील्ड आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप ऑक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट, जो सभी उम्र के लोगों को बेहतर शारीरिक या फिर मानसिक बीमारी या चोट से उबरने में मदद करने, बेहतर और अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। रोगी की बीमारी का कारण चोट, दुर्घटना, लंबे समय से चली आ रही बीमारी, लकवा, स्ट्रोक, ऑटिज्म, वृद्धावस्था या किसी अन्य चीज हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दैनिक सेटिंग में गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के स्कूलों में ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। वे व्यायाम, कार्यात्मक परीक्षण, पर्यावरण पुनर्गठन आदि का उपयोग करते हैं। पुनर्वास उपकरणों के रूप में ये विशेष रूप से काम करता है। और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 4.5 वर्ष का डिप्लोमा और डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी 1 वर्ष का होता है। तो बैचलर डिग्री 4.5 वर्ष का होता है, तो आप इसमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। और जैव प्रौद्योगिकी विधि, यानी जीवन के समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित आविष्कार करने के लिए जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान को विश्लेषित करते हैं। इस सूक्ष्म जीवों आदि अनुवंशिक हेराफेर का अध्ययन शामिल हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कृषि, फार्मा, भोजन, जेनोमिक्स, केमिस्ट्री आदि क्षेत्र से जुड़े विस्तृत विषयों के शोध वातावरण में काम कर सकते हैं। और इसके साथ में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप, और ये बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 3 वर्ष का होता है। और इसके साथ में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की बात अगर मैं करूं, तो जहां जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकविदों ने प्रौद्योगिक के साथ प्राकृतिक विज्ञान की जुड़ाव वाले उत्पाद व्यापक दायरे में कार्य करते हैं, वहीं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बीमारियों के कारण आविष्कार, समाधान, चिकित्सा करने आदि के समझने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ले दवाइयों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस क्षेत्र में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक नया क्षेत्र है। बायोमेडिकल रिसर्च लैब के इंजीनियर मजबूत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान प्रणाली आदि के निर्माण में अपनी विशेषताओं का उपयोग करने के लिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के साथ जुड़ सकते हैं या उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फील्ड है बायोमेडिकल, और ये पूरी तरह से मेडिकल डॉक्टरों के सहयोगी के लिए विशेष रूप से काम करता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। तो आइए इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे विकल्पों के बारे में बात करूंगा मैं। आशा करते हैं आप सभी को पैरामेडिकल, मेडिकल की बातें, जो हम लोग जहाँ पर मेडिकल फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो बिना एंट्रेंस या बिना नीट के आप करने वाले कोर्सेज के बारे में, उन विकल्पों के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद और विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए करियर इन मेडिकल फील्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां पर नीट एग्ज़ाम के बिना भी आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं, ऐसे विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में हमने बातें की, अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में। नॉन क्लिनिकल और इसमें क्लिनिकल दोनों आता है, तो नॉन क्लिनिकल क्षेत्र में आप जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में सूक्ष्म जीव विज्ञानी हमारे आसपास विभिन्न सामग्रियों जैसे कि मिट्टी, पानी, भोजन, मनुष्य और पौधे में मौजूद सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो भोजन करते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं वो सुरक्षित हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च लैब फूड इंडस्ट्री, डिस्टिलरी और एग्रीकल्चर आदि सहित वातावरण में काम कर सकते हैं और वे सरकारी नौकरियों के लिए भी जा सकते हैं और इस संबंध विभागों के लिए सुरक्षा अधिकारियों के रूप में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप इन चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ में कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट भी आता है और माइक्रोलॉजिस्ट जो है 3 वर्ष का बीएससी इन माइक्रोलॉजी जो है 3 वर्ष का ये विशेष कोर्स है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट चिकित्सकों के दिल और रक्तवाहिनी रक्तवाहिका संबंधित बीमारियों के समय पर और सही निदान और उपचार में सहायक करते हैं। वे रोगियों पर परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और अन्य हृदय प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं, उनकी फाइलों की समीक्षा करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट जो है हॉस्पिटल और क्लिनिकों में काम कर सकते हैं। जहाँ चिकित्सक मौजूद हैं वे परीक्षण प्रयोगशाला में भी कार्यरत हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बीएससी कार्डियो और या कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट का एक पोस्ट ये करियर है जो टोटल 4 वर्ष का कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। इसके साथ एक और विकल्प आता है, वो है परफ्यूशनिस्ट। परफ्यूशनिस्ट ये एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल पेशा है जो जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में मशीनों को कैसे संचालित किया जाए और सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान मरीज को जीवित रखा जाए। उदाहरण के लिए ओपन हार्ट या लॉन्ग सर्जरी के दौरान जबकि डॉक्टर अंग किसी अंग पर काम करते हैं और परफ्यूशनिस्ट जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर में अंगों को जीवित रखने के लिए रक्त प्रवाहित होता रहे। और परफ्यूशनिस्ट विशेषज्ञ सर्जन और उन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ बातचीत करते हैं ताकि उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रियाओं में सीधे मदद मिल सके और हॉस्पिटल में दैनिक केंद्रों में काम कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ परफ्यूशन टेक्नोलॉजिस्ट या बीएससी कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 3 या 4 साल का ये कोर्स होता है जिसके ज़रिए आप मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा कमा सकते हैं और अच्छा खासा मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं। इसके साथ आता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ये जो थेरेपिस्ट होते हैं ये उन मरीजों की देखरेख करते हैं जिन्हें सांस लेने की समस्या होती है या पल्मोनरी सिस्टम में संबंधित समस्याएँ होती हैं। उनके मरीज विधिवत आयु समूहों से आते हैं और शिशुओं से लेकर वृद्ध लोग, वे इनको और ट्रोमा रोगियों को जीवन रक्षक देखभाल भी प्रदान करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट गंभीर देखभाल वाले हॉस्पिटल और क्लिनिकों में क्लिनिक में काम कर सकते हैं जैसे आपातकालीन देखभाल, आईसीयू, नवजात शिशु इकाई आदि। तो ये बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जिस 4 साल का ये कोर्स है, आप इसे भी कर सकते हैं। इसके साथ आता है पोषण विशेषज्ञ, न्यूट्रिशनिस्ट। ये भी एक जो है कोर्स है जो बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो है डाइटिशियन 3 वर्ष का ये कोर्स होता है या बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ये 3 वर्ष का ये भी होता है और बीएससी इन
ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये 3 वर्ष का कोर्स होता है। तो इसमें अलग अलग विकल्प हैं, जिसको भी आप चुन सकते हैं, बिल्कुल चुनें। और पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशन मरीजों को उनकी स्थिति, एलर्जी आदि को समझने के बाद स्वास्थ्य और भोजन के विकल्प पर सलाह देते हैं, जबकि आहार विशेषज्ञ भोजन चार्ट बनाने और रोगियों के खाने की आदतों का प्रबंधन करने के लिए विशेष ध्यान रखते हैं। पोषण विशेषज्ञ मुख्य रूप से स्वास्थ्य भोजन के माध्यम से एक स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के संबंधित कार्य करते हैं। एडवांस डिग्री और विशेषज्ञ के साथ पोषण विशेषज्ञ आहार विशेषज्ञों की भूमिका भी निभा सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ आज़ाद रूप से या हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि में भी विशेषता प्राप्त कर सकते हैं और फिर संबंधित उद्योग में शामिल भी हो सकते हैं और अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ एक और पेशा आता है जहाँ पर मनोवैज्ञानिक साइटोजेनेटिक्स लोगों को चिकित्सा विद्या, मनोविश्लेषण और परीक्षण के माध्यम से जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद करते हैं। दैनजिन विशेषज्ञ वाले मनोवैज्ञानिक भी रोगी के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त दवा का सुझाव दे सकते हैं और मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल आदि में काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। बैचलर इन साइकोलॉजी 3 वर्ष का ये कोर्स होता है। इसके साथ ही साइकोलॉजिस्ट गुणसूत्रों का अध्ययन, अनुवंशिक विचारों और रोगों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। ये रक्त, उच्च रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से अनुवंशिक रोगों का पता लगाने, विश्लेषण और व्याख्यान करने का काम करते हैं। ये माइक्रोस्कोपी, फोटोग्राफी, डीएनए तकनीक आदि का उपयोग करते हैं अनुवंशिक विसंगतियों का पता लगाने के लिए। और साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटलों, क्लिनिकों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। इनके कार्य में अजन्मे शिशुओं और अन्य रोगियों पर परीक्षण शामिल हैं। भारत में एक उभरता क्षेत्र है और साइटोजेनिस्ट में विशेषज्ञ मास्टर स्तर पर मिलती है डिग्री, और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक लोग डिग्री स्तर पर अनुवंशिक या जैव प्रौद्योगिकी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो बीएससी इन जेनेटिक्स 3 साल का होता है और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ये भी 3 वर्ष का होता है। तो साइटोजेनेटिक्स ये जो है विशेष रूप से इस कोर्स को कर सकते हैं, जिससे आप मेडिकल फील्ड में एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें जिसके बारे में हमने बताया। वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कभी मौका मिले तो हम विस्तार से आपको इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर इन मेडिकल फील्ड में हमने बातें की, और जो लोग बिना नीट के कौन कौन से मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, उस विषय पर हमने प्रकाश डाला। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मैसेज करके हमें बताइए 94 1415 1415 इस नंबर पर। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बार, कुछ नए ट्रेड के बारे में बातें करेंगे। अगर आप किसी ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं, ताकि अगली बार आपके विषय को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपना करियर अच्छा बनाएं और अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM।
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है शुभ भावना और शुभ कामना का जीवन में महत्व। आइए इस पर मैं आपसे अपना चिंतन साझा करता हूं। हमारे जीवन में विचारों और भावना का बहुत महत्व होता है। हमारी सोच और भावनाएं न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जीवन को खुशहाल और आनंदमयी बनाता है। आइए अब समझते हैं शुभ भावना का क्या अर्थ है। शुभ भावना का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, उनके लिए मंगल की कामना करना। जब हम किसी के प्रति स्नेह, आदर, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं तो यह शुभ भावना कहलाती है। यह भावना हमें न केवल मानसिक रूप से शुद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है। शुभ भावनाएं हमें नकारात्मकता से दूर रखती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। शुभ भावना का विस्तार केवल हमारे परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के प्रति हो सकती है। यदि हम हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं रखें तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा। शुभ कामना का अर्थ होता है किसी के सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करना। जब हम अपने प्रियजनों, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो इसे शुभ कामना कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शुभ कामनाओं का बहुत महत्व है। शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम सच्चे मन से किसी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है। आइए अब हम और विस्तार से शुभकामना और शुभ भावना का महत्व समझते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम किसी के लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं रखते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। इससे रिश्तों में मधुरता आती है। शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। यह प्रेम और अपनत्व को बढ़ाती है। यह आध्यात्मिक उन्नति में हमारे सहायक होती है। जो व्यक्ति सभी के प्रति शुभकामना और शुभ भावना रखता है वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। सामाजिक सद्भाव को भी इससे बढ़ावा मिलता है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति शुभकामनाएं रखे तो समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव बढ़ेगा। जब हम दूसरों के लिए शुभकामना करते हैं तो उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाने के तरीके क्या है? अगर हमें शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाना है तो हमें सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना है, दूसरों की सफलता और खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न होना है, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना नहीं रखना है, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करना है जिससे मन शुद्ध और सकारात्मक बना रहे, छोटे छोटे अवसरों पर अपने प्रियजनों और मित्रों को शुभकामनाएं हमेशा दें, अपने आसपास के लोगों की भलाई और कल्याण की हमेशा कामना करें। इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुभ भावना और शुभकामना जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से सभी के लिए शुभकामना करें और शुभ भावनाएं रखें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि संपूर्ण समाज भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगा। तो ये रहा आज का चिंतन, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें।
3: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ।
5: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
6: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग। बात आई, बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा? दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
5: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मत दुआ दे कि मैं बददुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

0: अहो ऐकलत का, हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: विथ ब्रह्मकुमारी। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। वो संस्कारों की बात चल रही थी और कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मैंने विजय भी पाई और फिर कहीं कहीं ये भी हुआ। संस्कार की जो आपने सॉल्यूशन की बात कही कि कैसे किसी को सोल पहले देखना है, मैंने ट्राई किया कि भाई ये भी सोल है और इस सोल के पास संस्कार है, प्रेजेंट संस्कार है और ये अपने संस्कारों के थ्रू ये बोलेगा। तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी से जो मैं हूं और जिस रास्ते पे पाथ से मैं क्यों हटूं। और इसको अभी थोड़ा सा ना जो वर्ड टॉलरेंट और टॉलरेंस वो थोड़ा मेरा कम हो गया। क्योंकि ये अभी इसमें टॉलरेंस क्या करना है?
2: See, पहले दिस इज द लाइन, इसमें टॉलरेट क्या करना है? वो जो सत्य है वो सत्य है, टॉलरेट क्या करना है? दिस सी द रियलाइजेशन।
1: अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मीनिंग ऑफ टॉलरेंस बदल गया है।
2: ब्यूटिफुल। अब मीनिंग ऑफ टॉलरेंस क्या है?
1: पहले टॉलरेंस एक बोझ था, एक मजबूरी थी। अब मेरे को टॉलरेट क्या करना है? जब एक कौवा काका कर रहा है तो तुम टॉलरेट कर रहे हो?
2: नाउ दिस विल मेक लाइफ सो सिंपल। एंड दूसरा व्यक्ति ऐसा है उसमें भी फीलिंग जो है, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव फीलिंग।
1: यहाँ थोड़ी दुआ देनी प्रॉब्लम आ रही है।
2: कोई बात नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप।
1: हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करने का मन करता है।
2: स्टेप बाय स्टेप जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, दिस कैन बी विद अ नेगेटिव फ्लेवर आल्सो।
1: या
2: ये व्यक्ति ऐसा है, नहीं फिर वाइब्रेशन कौन सी चली जाएगी?
1: नेगेटिव।
2: और यहाँ नेगेटिव थॉट वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, वहां भी चली जाएगी। माय एवरी थॉट हैज टू बी प्योर। ये व्यक्ति ऐसा है मीनिंग इस आत्मा ने कभी न कभी किसी न किसी कारणवश ये संस्कार क्रिएट किया है, नॉट नेगेटिव। राइट नाउ मे बी वी आर नॉट इवन बीइंग एबल टू मेक इट वेरी प्योर। यू नो कि आपने कहा दुआ नहीं दे पा रहे अभी,
1: एम्पथी भी नहीं आ रही ना,
2: एम्पथी नहीं आ रही ना, मतलब हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं अभी पहुंचे, बट दैट डजंट मैटर।
1: लेकिन सिंपथी करना इजी हो रहा है मुझे कि यार बेचारा देखो।
2: सिंपथी भी नहीं करनी है,
1: सिंपथी मींस मजबूर
2: नहीं
1: है।
2: देन वी आर सेइंग कि हाँ ये तो बेकार
1: आदमी है, वो आ रही बात।
2: देन दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। तो हम हर्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने एक नेगेटिव अंडरकरंट दे दिया उसको, हाँ ये तो है ही ऐसा। नो, बट दैट्स ऑल्सो ओके। फर्स्ट स्टेज है टॉलरेट नहीं कर रहे क्योंकि अंडरस्टैंड कर लिया ये ऐसा है, लेकिन अब उस अंडरस्टैंडिंग में नेगेटिव अंडरकरंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को हमें प्योरिटी की तरफ लेकर जाना है, ये भी तो करना है ना। वी आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये ऐसा है। सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कैन नॉट इवन थिंक कि कब क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये संस्कार बना होगा। वी डोंट नो, इट्स द जर्नी ऑफ दैट सोल। जैसे उस दिन आपके साथ शेयर किया, पानी में बच्चा नहीं जा रहा था तो कंपैशन नहीं हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं जा रहा। एक अगर अंडरस्टैंडिंग मिले कि उस आत्मा ने पानी की वजह से कहीं शरीर छोड़ा था तो उसको पानी से कितना डर लगेगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग कंपैशन क्रिएट करता है। लेकिन अब हर बार तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि किसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो संस्कार क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन था। आज अगर कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसने पता नहीं कब कहां कितना धोखा खाया होगा।
1: यू सो राइट। और मैं सोचता हूँ कि यार तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, कमाल आदमी।
2: सही,
1: देखो कितना डिफरेंस आ गया ये।
2: अब जैसे आपने कहा कि कोई अपनी पूरी बात नहीं बताता, है ना, उसको जो बताना चाहिए हमें कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो नहीं बताता। ये संस्कार उसका कोई अभी नहीं क्रिएट हुआ, पता नहीं कब कहां उसने किसी को अपनी पूरी बात बताई थी और वो बात बताने से उसका बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ था, उसको बहुत दर्द एक्सपीरियंस हुआ था उस क्षण, उस आत्मा ने, इस कॉस्ट्यूम में नहीं, नॉट नेसेसरी, पता नहीं कब ये डिसाइड किया आगे से मैंने बात नहीं बतानी किसी को। वो संस्कार चलता आ रहा है, जैसे आपने उस दिन कहा कि आपका ग्रैंडसन ताली बजे तो डर लगता है। अब देखने में वो चीज लगती है कि ताली बजाने से तो सबको अच्छा लगता है, डर क्यों लग सकता है? क्योंकि उस आत्मा की रिकॉर्डिंग अलग है, उस आत्मा का एक्सपीरियंस क्लैपिंग के साथ कुछ दर्द का है, तो वो दर्द अब फिर से आ रहा है। अब फिजिकल चीजों में तो ये दिख जाता है, तो वी आर एबल टू क्रिएट कंपैशन, यू आर क्रिएटिंग कंपैशन ना, कि कभी ना कभी कुछ हुआ है इसलिए उसको क्लैपिंग नहीं पसंद। ओके, इसी तरह अब सब आत्माओं पर ये लाइन करते जाते हैं, कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था इसलिए ये आत्मा पूरी बात नहीं बताती, कभी ना कभी इस आत्मा के साथ कुछ हुआ था इसलिए ये बातें छुपाते हैं, ये एक्सेप्टेंस। फिर हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं।
1: ये भी थॉट आता है ना कि लेकिन ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है।
2: अब जैसे
1: एक वो आदत पड़ गई है, हाँ, पुराना फोल्डर भरा पड़ा है जजमेंट का,
2: हाँ, तो देन वी आर वर्किंग ऑन आवर फोल्डर्स ना। जब आपके बच्चे को ताली बजाने पर डर लगता है या अच्छा नहीं लगता, आप क्या कहते हैं? ये अच्छा नहीं है,
1: नहीं बोलता कुछ।
2: क्या बोलते हैं? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग द संस्कार ऑफ द सोल। आप क्या कहेंगे?
1: बोलते हैं हम कि बेटा क्लैपिंग तो तब करते जब कोई अच्छी चीज होती है, हैप्पीनेस की निशानी है, आपको क्लैप की साउंड अच्छी नहीं लगती तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे।
2: हा?
1: तो कभी कभी वो बोलता है अच्छा क्लैप करो, आजकल वो बोलने लगा है धीरे धीरे।
2: तो मतलब बोलने लगा है धीरे धीरे धीरे धीरे, पुराना ग्रूव और नया ग्रूव क्रिएट होना शुरू हो रहा है। अगर हम ये थोड़ा सा पुरुषार्थ न करते और हम कहते कैसा बच्चा है, ताली पे डरता है,
1: एक थप्पड़ लगाया,
2: हाँ, दर्द में है वो आत्मा, उसको और दर्द देते हैं। इसी तरह किसी के बारे में जजमेंटल और क्रिटिकल होकर हम उसको जो वाइब्रेशन भेजते हैं वो दर्द में है, हम और दर्द देते हैं।
1: हाँ, कभी कभी बोलते हैं पेरेंट्स और लोग कि कितना वीक है, कितना इमोशनल है, पता नहीं किस पे गया, छोटी छोटी बात पे देखो रोना क्या है,
2: क्लैप
1: पे क्या रोना है।
2: यस, फिर उसके सामने क्या करते हैं ना, जोर से ताली बजाते हैं, देखो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाउ कैन द सोल टेक इट इमीडिएटली, कैसे लेगा? जैसे मैंने आपको शेयर किया उस दिन वो बहन ने उस बच्चे को पानी में डाल दिया स्विमिंग पूल में, हाउ कैन द सोल टेक दैट इमीडिएटली? तो ये हम क्या करते हैं, वूंड था, वूंड पे और वूंड क्रिएट करते हैं।
1: पार्टीशन के टाइम पे वहां ट्रेन्स में लोग ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के जाते थे, ट्रेन्स की आवाजें, ट्रेन चलती जाती थी इंडिया आने के लिए बहुत से लोग, और ट्रेनों की आवाज, ट्रेनों में घुसना, ट्रेनों में भागना, ट्रेन बहुत प्लेटफॉर्म पे बहुत देर। बचपन में मैं बहुत छोटा था तब रुका था, तो बचपन से मुझे इंजन की आवाज से, ट्रेन के इंजन से डर लगता था,
2: yeah,
1: और ट्रेन के इंजन की आवाज सुनते रोने लगता था मैं।
2: अब ये तो प्रेजेंट बर्थ का संस्कार है ना, प्रेजेंट बर्थ का इफेक्ट कि ट्रेन की आवाज,
1: इंजन देख के रोना, आवाज सुन के रोना,
2: एसोसिएटेड विद पेन दैट डे विल क्रिएट पेन आफ्टर दैट ऑल्सो।
1: इतना केओस था ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे, लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, घुस रहे हैं,
2: एनर्जी भी हेवी थी ना उस टाइम, वो भी तो आत्मा ने अनुभव किया। तो आत्मा ने ट्रेन की आवाज को दर्द के साथ एसोसिएट करके यहाँ रिकॉर्ड कर दिया।
1: तो धीरे धीरे मेरी मदर गार्डन में ले जाती थी जहाँ नजदीक में रेलवे प्लेटफॉर्म था, धीरे धीरे धीरे
2: धीरे धीरे धीरे एक नया ग्रूव क्रिएट किया। एंड इस केस में क्या किया, आत्मा का इंजन के साथ पेन का जो कनेक्शन था, उस दिन हमने देखा ना, न्यूरॉन्स विच फायर टूगेदर वायर टूगेदर, विच मीन्स जब पहले दो न्यूरॉन्स कट्ठे फायर हो रहे थे, वो दो क्या थे, इमेज ऑफ द ट्रेन, सेकेंड पेन, इमेज ऑफ द ट्रेन, पेन। अब बाद में क्या होने लगा, जैसे एक न्यूरॉन इमेज ऑफ ट्रेन, नॉइज ऑफ ट्रेन, वायरिंग हो चुकी थी, दर्द होने लगा, क्योंकि न्यूरॉन्स फायर टुगेदर वायर टुगेदर, अब वो वायरिंग हो गई है। अब हमने धीरे धीरे क्या किया कि जब ये न्यूरॉन आया ब्रेन में, इमेज ऑफ ट्रेन, साउंड ऑफ ट्रेन, हमने एक नया एक्सपीरियंस, एक नया फीलिंग रिकॉर्ड करना शुरू किया। किसी ने हमें सहयोग दिया वो करने के लिए कि नहीं ट्रेन है, लेकिन कितनी खुशी है, एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट हुई। फिर दिखाया, देखो ट्रेन है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर दिखाया, थोड़ी बार वो हो गया, अब इमेज ऑफ ट्रेन
1: बदल गया,
2: इमेज ऑफ ट्रेन के साथ का एक्सपीरियंस बदल गया।
1: हाँ, उसके बाद में कहाँ कहाँ पिकनिक्स पे, हॉलीडेज में,
2: अगर ये जो थोड़ी सी मेहनत की गई थी ये नहीं की जाती, देर आर पीपल हु कैन स्पेंड देयर एंटायर लाइफ अनकंफर्टेबल विद द ट्रेन जर्नी।
1: आज मेरी उम्र के लोग अभी भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं।
2: हाँ, क्योंकि वो कोई पास्ट का ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं। तो अब ये ट्रेन, प्लेन, ये सब चीजों में तो हमें इजी हो जाता है, वाटर, फायर, अंधेरा हम एसोसिएट कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा सूक्ष्म पे लेके जाते हैं ना, कि अगर कोई किसी की ऐसी नेचर है, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई श्रूड है, कोई ऐसे बोलता है, कोई ये भी कहीं ना कहीं कोई न्यूरॉन दो फायर हुए थे और वायर हो चुके हैं। सपोज अगर किसी के साथ कभी किसी ने किस पर विश्वास किया और उसको धोखा मिला, किसी ने किसी को अपनी सारी कोई बात बता दी और उसको रिटर्न में बिट्रेयल मिला, तो दोनों न्यूरॉन कौन से फायर हो गए इकट्ठे? बताया और दर्द हुआ, बिट्रेयल मिला, वायर हो गए, वायर हो गए। अब ये आत्मा चल रही है, ये आत्मा उस बिट्रेयल और दर्द को अनुभव नहीं करना चाहती, तो वो न्यूरॉन को फायर ही नहीं करेगी कि वो अपनी पूरी बात बताएगी।
1: मेरे एक फ्रेंड को लिफ्ट से डर है, आज भी लिफ्ट में नहीं चढ़ता। वो बोलता है मैं सीढ़ी से आता हूँ, आप लिफ्ट से चलो। वहाँ आई डोंट माइंड, लेकिन कोई मुझे डाउट करे उसके नेचर में, अगर ये है कि बिट्रेयल हुआ है, बोलते यार यू डाउटिंग मी, वहाँ आसान है।
2: हाँ।
1: तू प्ले भाई, इसको प्रॉब्लम है।
2: हाँ।
1: जा रहा है ये।
2: हाँ।
1: सीढ़ी चढ़ के।
2: हाँ।
1: तो सीढ़ी से चढ़ भी, 10 फ्लोर है, 15 फ्लोर है, तेरी मर्जी, मैं आराम से जाता। वहाँ क्यों नहीं कर सकते?
2: नेचर फिजिकल है ना,
1: वो इजी हो गया ना,
2: क्योंकि वो फिजिकल है ना, एंड वो मेरे ऊपर नहीं है। वहाँ आप ये नहीं कह रहे, आप मेरे साथ लिफ्ट में नहीं जा रहे, यू आर नॉट सेइंग दैट।
1: बट वहाँ वो भी नहीं बोलता ना मैं कितना डरपोक है का ये है वो,
2: क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इतना डरपोक है लिफ्ट में नहीं जा रहा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं अनकंफर्टेबल है, क्यों तंग करना है किसी को, दर्द होएगा उस आत्मा को उस लिफ्ट में अगर हम जबरदस्ती भेजेंगे तो। लेकिन उसमें आप ये नहीं कह रहे मैं हूं ना लिफ्ट में इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा, कि मेरे साथ नहीं जाना, यू आर नॉट पर्सनलाइजिंग इट। दैट्स व्हाई पीपल से डोंट टेक इट सो पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। उनको लिफ्ट से डर लगता है, उनको आपके साथ लिफ्ट में आने में प्रॉब्लम नहीं है।
1: एलिगेशन के टाइम पे तो पर्सनल एलिगेशन दे रहे हैं ना,
2: पर्सनल एलिगेशन भी जब कोई कर रहा है वो एलिगेशन कर रहा है क्योंकि उसका उसके साथ कोई दर्द एसोसिएटेड है, उसकी कोई इनसिक्योरिटी है, वो कुछ छुपा रहा है, वो दर्द से अपने को बचा रहा है। ईगो ये भी तो करता है, हर्ट होने से अपने बचाने के लिए दूसरों पर अटैक कर देता है, दूसरों को हिट करता है ताकि वो मुझे कुछ ना कहें, पहले मैं हिट कर दूं। अब अगर हम लिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम ये भी कर सकेंगे, सिर्फ उसको उस नजरिए से देखना, समझना कि यहाँ कुछ दर्द एसोसिएटेड है, तो धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे।
1: ये लिफ्ट वाला एक्सेप्ट करना इतना इजी भी नहीं था। उससे पहले जब कुछ जमाने पहले मैं कोई अगर अल्कोहल नहीं लेता टी टोटलर पे हंसते थे हम लोग, क्या ये घास फूस वाला टी टोटलर आ गया।
2: Then,
1: तो आज लिफ्ट तक तो पहुंचे,
2: ये हमारी जर्नी है ना, अब हम इसको आगे भी लेके जाएंगे।
1: इतने साल लग गए इसको यहाँ तक पहुँचने में,
2: कितने साल? विदाउट नॉलेज, विद नॉलेज फास्टर,
1: दैट्स अ गुड पॉइंट,
2: विद नॉलेज फास्टर,
1: वेरी एनकरेजिंग पॉइंट,
2: यस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। पहले आंसर ही नहीं पता था, पहले जो हम इतने साल लगे वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ, फिर हमने धीरे धीरे कहा नहीं ना इसके पास रीजन है ये करता है, धीरे धीरे धीरे
1: अब हमारे पास
2: इंस्टेंट नॉलेज है
1: जो हमको किसी ने बोला होगा,
2: कंडीशनिंग हमने वही सुना दी दूसरी जगह
1: तो हमारे मुख से निकल गए क्योंकि हमने सुनी हुई थी।
2: अब जैसे आपने कहा कि कोई लिफ्ट में चलने से डरता है, राइट, एक्चुअली ये संस्कार पास्ट कैरी फॉरवर्ड है। अगर उस बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता कि लिफ्ट में जाने से कुछ नहीं होता है, उसका वो संस्कार बदल जाता। लेकिन किसी ने अगर वो थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं किया और उस बच्चे ने भी खुद नहीं किया, वो जीवन भर लिफ्ट से डरेगा, विच मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। कि जैसे आपने कहा लंबी बड़ी बिल्डिंग है, इतना ऊपर जाना है, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ने वाला है, इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। इफ अभी अगर वो आत्मा वो संस्कार चेंज नहीं करती, वो फिर कैरी फॉरवर्ड करेगी
1: अगले जन्म में भी
2: नेचुरली। पिछले जन्म में उसके साथ लिफ्ट के साथ कुछ हुआ, ग्रूव बना, इस पूरे जन्म में वो लिफ्ट से डरा, तो लिफ्ट और डर एसोसिएटेड हो गया टुगेदर, तो अगले जन्म में बच्चा लिफ्ट में कैसे जाएगा? इसीलिए मेहनत करनी होती है संस्कार चेंज करने पे। अब अगर ये आत्मा है जो कोई अपनी बात नहीं बताती, अब लिफ्ट वगैरह इजी हो गया ना देखना, अब सूक्ष्म वाले पर कोई अपनी बात नहीं बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बताने से डरता है, कोई हेसिटेट कर रहा है, जो भी ये सारे संस्कार हैं, इफ दे आर पीपल हु आर क्लोज टू अस एंड इफ वी कैन शेयर विद देम, वी कैन ऑल्सो हेल्प देम टू क्रिएट अनदर संस्कार। ये भी रोल है।
1: शेयर विद देम व्हाट?
2: एक, पहले हम उनके संस्कार के प्रति क्रिटिकल नहीं हो रहे, जैसे आपकी मम्मी ने आपने कहा धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके गए ना, वो धीरे धीरे ट्रेन के पास लेके जाने के लिए आपका उनके साथ विश्वास था, बॉन्डिंग थी, नहीं होती आप नहीं जाएंगे ट्रेन के पास, ठीक है। वो तब हुआ, उन्होंने आपका ट्रेन को देखकर रोने की आदत को क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, रिस्पेक्ट किया विद अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये एसोसिएटेड विद पेन है, हम धीरे धीरे चेंज। तो पहले क्रिटिसिज्म नहीं मिली, एक्सेप्टेंस मिली। जब तक एक्सेप्टेंस ना मिलती, यू वुड नॉट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिलती उनसे।
1: उनकी अच्छी क्वालिटी थी हर चीज पे एनकरेज करना, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, बड़ा हो जाएगा आप पे, ठीक हो जाएगा।
2: सेम चीज हर एक के अलग अलग संस्कारों के साथ करना है, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा,
1: ठीक हो जाएगा,
2: दिस इज इट। ये एक लाइन क्या कर देती है? एक्सेप्टेंस देती है। ये एक्सेप्टेंस सामने वाली आत्मा को मिलती है, आत्मा का हमारे साथ का रिश्ता अच्छा होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो कर रही है। हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन क्रिटिसिज्म की एनर्जी फ्लो कर रही है, रिश्ता अच्छा कैसे होगा, बॉन्डिंग कैसे होगी? एनर्जी अच्छी नहीं है, विश्वास कैसे बनेगा? क्योंकि सारा दिन तो उनको हमारे से क्रिटिसिज्म की एनर्जी मिल रही है, थॉट्स में, वर्ड्स में भी नहीं।
1: नहीं, सोल तो बोल दिया, साथ में उसको फिर वो भी कर दिया, जजमेंट भी पास कर दिया।
2: तो अब सेकंड स्टेप है ना वो, कि जजमेंटल नहीं हो सकते, अब हम एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं इस आत्मा के साथ ये वाली चीज हुई है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट। नो जजमेंटल एनर्जी, नो नेगेटिव एनर्जी। ये एनर्जी काफी समय तक उनको भेजते रहे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। फिर अगर लगे कि कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं, कि ये आप जो ऐसे कर रहे हैं, बात नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, आधी बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्यों? लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स वर्क ऑन दिस। वो धीरे धीरे होगा, बट इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन।
1: मेंटली बोल सकते हैं ये बात?
2: मेंटली भी बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन वो टाइम पीरियड में हमें मेंटली क्या भेजना है?
1: लेकिन ऐसा भी तो कर सकते, मैं बोलना शुरू कर दूं, वो जोर से करवा,
2: तो
1: मैं करना शुरू कर दूं कि देखो मैं ऐसा यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ।
2: वो आप कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो आप कर रहे हैं तो वो सामने वाला भी करे, क्योंकि सामने वाले का न्यूरॉन कौन सा कनेक्टेड है ब्रेन में?
1: मैंने कुछ बोला तो नुकसान,
2: बताने से नुकसान होगा। वो वायरिंग को तोड़ने के लिए फेथ एस्टैब्लिश होने की जरूरत है। फेथ एस्टैब्लिश होने के लिए वहां से बहुत प्योर वाइब्रेशन चाहिए, इसलिए जजमेंटल। अगर आपने सिर्फ ये किया कि आपने बताना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ उनके लिए फिर भी क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट किए, फिर साथ साथ सोचा मैं तो बता रहा हूं फिर भी नहीं बता रही है, तो दर्द ही जा रहा है ना सामने वाले को। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द संस्कार विद अंडरस्टैंडिंग विल देन क्रिएट कंपैशन कि कोई बात नहीं, एज ऑफ नाउ इनके साथ ये चीज प्लेजेंट नहीं है इनके लिए ये बात।
1: बट एक सोल को लाइक करना पड़ता है ना ये सब करने के लिए। सोल टू सोल, सोल सोल बोलिए, बट यू डोंट लाइक एवरी सोल।
2: इट्स द अदर वे राउंड। ये सब करने के लिए लाइक नहीं करना पड़ता, ये सब करेंगे तो लाइक करना शुरू करेंगे।
1: अगर मैं किसी को सोल सोल सोल बोलूं तो लाइकिंग आ जाएगी?
2: अगर आप सोल बोले फिर सोल के संस्कार देखें और समझें फिर उसको एक्सेप्ट करें तो आपको वो संस्कार बुरे नहीं लगेंगे। जब आपको किसी का संस्कार बुरा नहीं लगेगा तो आपको वो व्यक्ति बुरा क्यों लगेगा? बुरा क्यों लगता है? कोई गलत क्यों लगता है? उसकी कोई बात गलत लगती है ना, उसका कोई संस्कार गलत लगता है। जब संस्कारों को एक्सेप्ट करना शुरू किया व्यक्ति क्यों बुरा लगेगा उसके बाद?
1: संस्कारों को जाना है, एक्सेप्ट कहाँ किया अभी तक?
2: एक्सेप्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना कि कभी ना कभी कुछ हुआ होगा।
1: अच्छा,
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए,
1: एक्सेप्टेंस आ जाएगा,
2: इस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लोग जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, दे विल गो एंड फाइंड आउट। एंड जैसे वो फाइंड आउट करते हैं,
1: रिपीट की बात बहुत अच्छी लगी आपकी, कि इस जन्म में जितने हो सकते हैं ना पैटर्न, जितने कट करते जाओ तो जैसे आपने कहा अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ खत्म करते जाना है मैक्सिमम, तब जाके मेरा वो जो गोल है कि सबको एक ही नजरिए से देखना है, सोल।
2: राइट, लेकिन पैटर्न करेंगे तो आत्मा देखेंगे नहीं, आत्मा को देखेंगे तो पैटर्न को चेंज करना इजियर हो जाएगा।
1: तो मेरे भी तो पैटर्न को काटता रहना पड़ेगा।
2: काटेंगे ना। एंड अब इसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाते हैं
1: जी।
2: फर्स्ट आत्मा देखा, सेकेंड उसके अक्वायर्ड संस्कार देखे, फिर अंडरस्टैंडिंग कि कभी ना कभी कुछ हुआ था इसलिए ये संस्कार है, कंपैशन कि इस समय इस आत्मा का इस संस्कार के साथ ये एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, सो लेट मी नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज इमीडिएट, ये सब अंडरस्टैंडिंग। लास्ट स्टेप, लेकिन ओरिजिनली तो ये आत्मा बहुत ब्यूटिफुल है।
1: बाप रे, इतना कौन सोचेगा?
2: सच है ना,
1: ओरिजिनली थी तो मैं
2: थी
1: अपने
2: नहीं
1: आप,
2: थी नहीं है,
1: ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूँ ना,
2: दिस इज इम्पोर्टेंट, ओरिजिनली तो मैं भी प्योर हूँ ना, क्योंकि जो चार फोल्डर हमने देखे संस्कारों के, पास्ट बर्थ फैमिली एनवायरमेंट विल पावर, ये चार फोल्डर अक्वायर्ड है इस जीवन की यात्रा में और अनेक जीवन की यात्रा में, बने बने बने बने, हर जीवन में फैमिली मिली संस्कार बने, हर जीवन में वातावरण मिला संस्कार बने, ये नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड किए तो पास्ट बर्थ का फोल्डर क्रिएट हुआ, ये सब संस्कार अक्वायर्ड हैं, लेकिन जिस फोल्डर के साथ आत्मा ने जर्नी शुरू की थी इट्स ओरिजिनल फोल्डर, इट्स ओरिजिनल संस्कार, वो एक फोल्डर है जो हर आत्मा पर सेम है। दिख रहा है? पांच कंप्यूटर, पांच हार्ड डिस्क
1: जी,
2: पांच फोल्डर हर एक पर, चार फोल्डर हर एक के डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट, तो चारों फोल्डर्स में जो फाइल्स हैं वो हर एक की डिफरेंट, पांचवा फोल्डर हर एक का सेम,
1: एक सिंगल फोल्डर है जो
2: ओरिजिनल, एक सिंगल फोल्डर है जिसमें सेवन फाइल्स हैं और वो हर एक की सेम।
1: जैसे नया कंप्यूटर लो, ओरिजिनल क्लीन, सब कुछ साफ
2: परफेक्ट,
1: फोल्डर्स भी सारे खाली पड़े हैं, अब
2: हर एक कंप्यूटर पर कुछ बेसिक फोल्डर्स आते हैं, विंडोज है, वर्ड है, बेसिक बेसिक पेंट ब्रश है, ये बेसिक है जो हर एक के कंप्यूटर पर आते हैं।
1: वाह, उनको यूज कर करके आपने क्या बनाया,
2: उसको यूज कर करके आगे आपने क्या क्रिएट किया और फाइल्स बनाई, वो फाइल्स हर एक की डिफरेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट पुरुषार्थ है वो है कि हर एक आत्मा की ओरिजिनल फाइल देखने का, अपनी भी ओरिजिनल फाइल देखने का, क्योंकि वेयर अटेंशन विल गो एनर्जी विल फ्लो। आप कौन से फोल्डर की तरफ अटेंशन दे रहे हैं वो फोल्डर खुल जाएगा, वो फोल्डर खुल जाएगा। हम जिस आत्मा के जिस संस्कार पर फोकस करेंगे तो हमारा अटेंशन जहां जाएगा तो हमारी एनर्जी उस संस्कार पर जाएगी।
1: और हम उसको फीड कर रहे हैं,
2: फीड नहीं कर रहे, एनर्जी देके उसको
1: नहीं, हम अपने आप की दूसरे की भी,
2: अपनी तो कर ही रहे हैं, दूसरे को नहीं भेज रहे।
1: किसी को मैं बोल दूं तो वीक है, वीक है,
2: इतना बोलने की जरूरत नहीं है।
1: सोचो भी तो,
2: वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है, सपोज आपके अंदर दो संस्कार है, एक आपके अंदर संस्कार है ऑनेस्टी का, तो बहुत ब्यूटीफुल संस्कार है। एक आपके अंदर संस्कार है सपोज गुस्सा करने का, अच्छा संस्कार नहीं है। लेकिन एक आपका ओरिजिनल संस्कार है, सपोज प्योरिटी हम लेते हैं, वो ओरिजिनल संस्कार है ना। आई एम अ फैमिली और अ फ्रेंड, जिसको सारा दिन आपके साथ रहना है, काम करना है। अब सारा दिन में कई बार वो गुस्सा दिख जाता है, सपोज इफ माय अटेंशन इज ऑलवेज गोइंग टू दैट संस्कार,
1: तो यू विल नॉट सी द ऑनेस्टी पार्ट।
2: सी तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन जहां मेरा अटेंशन जाएगा वहां मेरी एनर्जी जा रही है, वाइब्रेशन जा रही है,
1: ओके,
2: तो वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा,
1: स्ट्रॉन्गर। थैंक यू सो मच सिस्टर, लेट अस सी द गुड संस्कार इन पीपल ऑल्सो।
2: ऑल्सो नहीं,
1: नहीं, अपार्ट फ्रॉम सीइंग अ सोल,
2: लेट अस सी ओनली द ब्यूटिफुल संस्कार्स ऑफ एवरीबॉडी,
1: ओनली द ब्यूटिफुल संस्कार्स ऑफ एवरीबॉडी।
2: थैंक यू सो मच,
1: ओम शांति।
3: When we are aware that the soul on its journey of many lives and varied experiences has created different sanskars, then we understand the reason for their behavior towards us. Then we accept it as a fact that exists, rather than a problem which we have to tolerate. Acceptance means no negative thought and vibration about the other's sanskars. When we are judgmental, we create a negative feeling and record a negative experience in our subconscious, and also radiate a negative vibration to them, and they also record a negative experience. Once we accept the sanskar, we are stable, and then shift to empathy and compassion. The soul has gone through a painful experience in some life, because of which that sanskar was created. This empathy and compassion will radiate pure vibrations to them and help heal their pain. Gradually, help them record a pleasant experience. Once the soul starts recording a happy experience with the same stimulus where it had earlier experienced pain, it will help the soul to change the sanskar.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: नमस्कार, मी मोनाली सहवागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया वाटो।
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना व सम्मान। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि प्रकृति हमारे जीने का मूल आधार है। प्रकृति न हो तो मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। अगर प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हम एक पल भी इस धरा पे नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना ये तन प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृति की रक्षा करना, उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु आदि सब मानव जीवन एवं सृष्टि की संतुलित एवं सुखद बनाने के लिए आवश्यक है। जगत के सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान समय मनुष्यों की असंतुलित जीवन शैली जो है अमर्यादित आचरण, अशुद्ध भोजन और तामसिक प्रवृत्ति की दुखद अशांति एवं पीड़ा के कारण बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आवश्यक जो चीजें हैं उसे हम यूज तो करते हैं अपने जीवन में, उसे मूलाधार भी बनाते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी जो लगाव है, उसके प्रति जो सम्मान है, वो हम देखते हैं उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। तो अनावश्यक दोहन से प्राकृतिक जो है उसी के प्रकोप में आ जाती है, और स्वार्थ एवं लालच ने मानव को मूल्यों और मर्यादाओं के साथ साथ मर्यादाओं से विमुख कर दिया है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ वह सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति से दूर निराशा, बेचैनी, हताशा एवं मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा है। उसने प्रकृति का अनावश्यक दोहन कर उसे असंतुलित कर दिया है। इसी कारण हमें अनेक बार प्राकृतिक प्रकोप एवं वायरस जनित बीमारियों का दुखद सामना करना पड़ता है। इन सब के पीछे मानव के अपने कर्म ही उत्तरदायी हैं। अब हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अच्छा या बुरा जैसे भी कर्म करते हैं, उसका यथाफल हमें अवश्य ही मिलता है। इस अर्थ में हम प्रकृति के साथ ही इनके साथ भी जैसा बर्ताव करेंगे प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। अतः हम देखते हैं कि सभी की जिम्मेदारी है कि अपने श्रेष्ठ आचरण एवं सत्कर्मों के बल पर इस धराधाम एवं प्रकृति को पुनः उसके उच्चतम स्वरूप में पहुंचाए। मानव सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी जो है परमात्मा ने मानव को सृष्टि का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी प्राणी बनाया है। इस अर्थ में दूसरों का अधिकार और जीवन छीनने का नहीं, दूसरों को अधिकार दिलाने एवं जीवन की रक्षा करने का भार हमें सौंपा गया है। आज हम देखते हैं जाने अनजाने मानव से अनेकों भूल और दुखदायी कर्म होते रहते हैं। ऐसे में जरूरत है सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा एवं प्रकृति माँ से भूलों एवं गलत कर्मों के लिए क्षमा याचना कर उनके जो समीप जाने की परमपिता परमात्मा और प्रकृति माता से यदि हमें सच्चे दिल से अगर हम उनसे सच्चे दिल से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही वे हमें माफ कर देंगे, हमारे उज्जवल एवं सुखदायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। परमात्मा पिता तथा प्रकृति माता को हम क्या करेंगे, भावनाओं रूपी पुष्पार्पण करेंगे। हम पुष्पार्पण का मतलब क्या है, कहा भी गया है कि कहा जाता है यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो वे हमारा ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार यदि हम प्रकृति माता का भी ध्यान रखेंगे, उनका साथ देंगे, प्रकृति माता के प्रति दिल से स्नेह सत्कार एवं सहयोग की भावना जगाएंगे तो वह भी हमें क्या करेंगे, हमारा साथ और सहयोग देंगे। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस अर्थ में प्रकृति के प्रति सम्मान ही मानव जीवन को सुखदायी एवं संपन्न बना सकता है। तभी हम प्रकृति के विकराल रूप से मुक्त रहने में सफल होंगे। तो आइए कुछ देर परम शक्ति परमात्मा पिता तथा प्रकृति के सम्मुख खुद को समर्पित कर दिल की भावनाओं रूपी पुष्प अर्पित करें। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कुछ देर के लिए, अपने मन बुद्धि को अनेक बातों से मुक्त कर एकाग्रचित हो, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें, अनुभव करें कि मैं त्रिकोटि के मध्य विराजमान चैतन्य दिव्य सितारा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित मानव शरीर की चैतन्यता का आधार हूं, खुद को चैतन्य दिव्य सितारा समझते हुए अनुभव करें दिव्य प्रकाशपुंज परमात्मा एवं प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। अंतर्मन में यह भाव जागृत करें कि हे परमात्मा एवं जीवनदायिनी प्रकृति माँ, आज तक जाने अनजाने मुझसे जो कुछ भी भूल एवं गलत कर्म हुए हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मैंने अपने गलत आचरण से जो भी क्षति पहुँचाई है, आपको असंतुलित किया है, वह मेरी भूल थी, कृपया इन सभी भूलों के लिए क्षमा करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे हमें ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। तो यह क्षमा याचना मांगने की और परमात्मा की किरणों के नीचे बैठकर अपने आप को परमात्मा से दिव्य शक्तियों की कैसे धारणा हो हमें, इसका ये मूल आधार यही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है प्रकृति के प्रति क्षमा याचना एवं सम्मान। आज हम देखते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, माँ हमारा देख रेख करती है। तो प्रकृति माँ इस सृष्टि पर परमात्मा के बाद दूसरा स्थान आपका ही है, ऐसी भावना हमारे मन में हो। आपसे ही संपूर्ण सृष्टि को जीवन मिलता है, संपूर्ण चराचर की जीवन का आधार एवं मूल आप ही हो। आप ही मानव जगत की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो। संसार में विद्यमान

सुंदरता आपकी ही अनोखी अनोखी क्या है कृति है। अनेक सुंदर फल फूल एवं अन्न आदि प्रदान कर आपने ही इस सृष्टि पर जीवन को सुरक्षित एवं संचालित किया है। आप ही मानव जीवन की पालनहार हो, अतः श्रद्धा एवं सम्मानपूर्ण भावनाओं के साथ मैं आत्मा आप एवं परमात्मा से बार बार क्षमा याचना करती हूँ। मैं हमेशा यह ख्याल रखूंगी कि भविष्य में मेरे द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, बिगड़ने के निमित्त न बनूं और किसी प्रकार आपका अनावश्यक दोहन ना करूं। हम दोनों मिलकर आपसे स्नेह सहयोग एवं सामंजस्य से इस सुंदर सृष्टि को पुनः इसके सर्वोच्च एवं सुखदायी स्वरूप में स्थापित कर सके, जिससे यह जगत स्वर्णिम युग में बदल सके, संपूर्ण चराचर का जीवन खुशहाल हो सके, एक दूसरे से किसी को भय एवं तकलीफ न हो, सभी का जीवन खुशहाल एवं आनंदित हो, ऐसे सुखद भविष्य की कामना के साथ साथ मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा एवं प्रकृति, मुझे अपने दिव्य वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, ऐसी भावना हो। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ, इसी भावना के साथ प्रकृति को शुभ भावना दे और इन्हीं शुभ भावना और शुभकामनाओं के साथ उनसे क्षमा याचना भी मांगे, तो इससे क्या होगा, प्रकृति भी शांत होगी और उनसे आपको सुखदायी जीवन की प्राप्ति होगी। तो ऐसा हमेशा अनुभव करें कि परमात्मा की किरणें आप पे आ रही है और आपसे प्रकृति को प्राप्त हो रही है। तो इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन.
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम. उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे. ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं. जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं. सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा. तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में. कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे. जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी. जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा. हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी. तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए?

0: भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध हैं और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
0: बाल संसार में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और ख़ासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज़्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहाँ उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। उन्हें बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएँ तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वो आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेजी से वहाँ भाग जाए, लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्हें कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहाँ से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है। उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराज़गी व्यक्त नहीं करें, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए। उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहाँ नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूँ। और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहाँ उपस्थित भी करेगा और अंतर मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएँ जागृत हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़ा अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो ज़रूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें, और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए, और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप करा देते
1: हैं,
0: तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
1: जी जी।
0: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट है,
1: बिल्कुल,
0: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
1: जी
0: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज़्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
1: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
1: जी जी।
0: लेकिन वो समझने के लिए नहीं आया, शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
1: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
0: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पॉर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज़ मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल करो, पैसा सफल होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड होके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार, इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगता हो, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरुआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहाँ पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, जिसके बारे में हमने बातें की। तो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उठता आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आपके गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, तो इनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहां से भाग खड़ा होता है। अब यहां हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है बल्कि ये समझने की है। और मैंने माँ से, उनके बच्चे की माँ से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी माँ के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की माँ को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाय फोर्स नहीं कह सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मन स्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज़्यादा लगता है। अब कम और ज़्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब माँ ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उन्हें को फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग चीज़ों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक से समझें जाने। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे ख़ास मनोस्थिति के बारे में और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र संवेदनाओं की गरिमा को, तो यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में, साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज़ दिखाई दे। आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग हो सकता है कि वो चीज़ें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है। देखिए ट्रायल एंड एरर सारी ज़िंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मतलब हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज़ हमेशा काम करती हैं। भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सवाल, एक और भावनाएं जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो अजय जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
1: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहाँ चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेके होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्सरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है, बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति ये गहरी आस्था है और वो ये सोचता है कि ये तीन लोग मिलके हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहाँ परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों, उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएँ धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा, और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहाँ प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीजों को शेयर किया जा रहा है, ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, माँ समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है, तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफस्टाइल में उन चीज़ों का कहीं मायने बना, ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं, तो वहाँ सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है, तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज़ भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए, अपनी भावनाओं को समझे, अपनी भावनाओं को ठीक करे, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को, सम्मान से देखे सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लूटा।
1: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए राजस्थान के अलवर नगर में गए थे और लोगों के अनुरोध पर कई दिन ठहरे भी थे। हम लोगों ने उनके द्वारा लिखित पत्रों और दूसरे संस्मरणों से ये जाना कि वहां के महाराजा मंगल सिंह जी से उनकी भेंट हुई थी और कैसे पश्चिमी सभ्यता के कायल महाराजा ने स्वामी जी की संगत में असली भारतीय संस्कारों को पहचाना और उनके अनुयायी संस्कारों का विवरण हमें प्राप्त है। स्वामी जी से जुड़ी अनेकों कहानियां और घटनाएं आज भी अलवर वासियों से सुनी जा सकती हैं। अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी ने अलवर वासियों को बेहद प्रभावित किया था। उनके उदाहरणों, उपदेशों और जोशीले कथनों से वहां के लोगों ने एक नया आस्वाद पाया और वे उनके प्रति अधिक आकृष्ट हुए।
1: एक वृद्ध भी स्वामी जी के पास नित्य आते, प्रश्न पर प्रश्न करते रहते और स्वामी जी के आशीर्वाद की याचना करते। स्वामी जी ने भी उन्हें कुछ साधना प्रणाली सिखाई थी, किंतु वृद्ध उसका अभ्यास नहीं करते थे। अंत में स्वामी जी के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन उसे दूर से आते देखते ही मौन धारण कर लिया। उन्होंने उस वृद्ध के किसी प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, दूसरे बंधु बांधवों के अभिवादन आदि का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कोई भी यह सोच समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। इस प्रकार 1.5 घंटे बीत जाने पर भी स्वामी जी जब काष्ठ मूर्तिवत बैठे रहे, तब क्रुद्ध और क्षुब्ध हो वृद्ध अपने आप बड़बड़ाता हुआ चला गया। तभी स्वामी जी बच्चे की तरह हंसी से खिलखिला पड़े और अन्य लोग भी साथ ही हंसने लगे। अंत में एक युवक ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप उस बूढ़े के प्रति इतने कठोर क्यों हुए? तब स्वामी जी ने अत्यंत सरल और मृदु भाव से कहा,
2: देखो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे उपदेश का पालन करना चाहते हो और करने की सामर्थ्य भी है। किंतु देखा ना, ये बूढ़ा अपने जीवन के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इंद्रिय भोग में व्यतीत कर अब सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के अयोग्य होकर सोचता है कि चाहने मात्र से भगवान को पा जाएगा। सत्य की उपलब्धि के लिए पौरुष और उद्यम, जो उद्यम नहीं कर सकता उस पर भगवान की दया होगी कैसे? जिसमें पौरुष नहीं है वो तो तमोगुण से भरा है। अर्जुन अपने पौरुष का परित्याग कर रहे थे, इसी से तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वधर्म पालन का आदेश दिया था, जिससे वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर सत्व गुण, चित्त शुद्धि, कर्म त्याग एवं आत्मसमर्पण के योग्य हो सके। शक्तिमान हो, पौरुष युक्त बनो। मनुष्य यदि वीर्यवान और शक्तिवान हो सके तो उसके दुष्कर्म करने पर भी मैं उसके प्रति श्रद्धा करता हूं, क्योंकि उसका साहस और वीरत्व ही एक दिन उसे कुपथ त्याग की प्रेरणा देंगे और फिर वो कभी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करेगा और इस प्रकार अंततोगत्वा वो सत्य की उपलब्धि करने में समर्थ हो सकेगा।
0: स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण कर अलवर के कई युवकों ने संस्कृत सीखना चाहा। स्वामी जी उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वे कहा करते थे,
2: संस्कृत पढ़ो और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के विज्ञान का भी अनुशीलन करो और सभी वस्तुओं को समीचीन एवं यथार्थ रूप से देखना और बोलना सीखो। परिश्रम करो ताकि हम लोगों के इतिहास को विज्ञान सम्मत भित्ति पर नए रूप से प्रस्तुत कर सको। अभी तो हम लोगों के इतिहास का कोई सिर पैर ही नहीं, इसकी घटनाएं कालानुक्रम की यथार्थता और शुद्धता से रहित हैं। अंग्रेजी ने हम लोगों के देश का जो इतिहास लिखा है उससे हम लोगों के मन में दुर्बलता ही आएगी, क्योंकि वे केवल हमारे पतन और अवनति का ही उल्लेख करते हैं। जो विदेशी हम लोगों की रीति नीति तथा हम लोगों के धर्म और दर्शन से बहुत कम परिचित हैं, वे विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से भारत का इतिहास कैसे लिख सकते हैं? इसलिए स्वभावतः अनेक भ्रांत धारणाएं और गलत निष्कर्ष आ गए हैं। तथापि ये बात भी माननी होगी कि विदेशियों ने ही हमें ये मार्ग दिखाया है कि हम लोगों को अपने प्राचीन इतिहास के संबंध में किस प्रकार अन्वेषणा करनी होगी।
0: स्वामी जी देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे और ये भी जानते थे कि अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जाने बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वे कहते थे,
2: भारत का इतिहास भारतीयों को ही लिखना होगा, अतएव विस्मृति के सागर से अपना लुप्त और गुप्त राशि के उद्धार के लिए कमर कस लो। किसी के बच्चे के खो जाने पर कैसे वो जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन नहीं लेता, उसी तरह जब तक भारत के गौरवमयी अतीत को जन मन में पुनरुज्जीवित नहीं कर पाते हो तब तक विश्वास मत करो। वही होगी सच्ची और स्वाभाविक राष्ट्रीय शिक्षा, और इस शिक्षा की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठेगी।
0: एक दिन स्वामी जी ने पूछा, नजदीक में कोई साधु रहता है क्या? उत्तर में एक व्यक्ति ने बताया, थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं। स्वामी जी उसी समय उस व्यक्ति के साथ ब्रह्मचारी से मिलने चले। ब्रह्मचारी संभवतः वैष्णव और सन्यास विरोधी थे। गेरुआधारी सन्यासी को दूर से देखते ही उन्होंने क्रुद्ध स्वरों से गेरुआ की निंदा और सन्यासियों पर गालियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। स्वामी जी के इन सब पर ध्यान दिए बिना ब्रह्मचारी के सम्मुख उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ने अभद्र भाव से कहा,
3: तू गेरुआ क्यों पहनता है? मैं गेरुआधारी सन्यासी को फूटी आंखों भी देख नहीं सकता।
2: जी माफ कीजिए, मैं तो अपने गुरुजी के कहने पर गेरुआ वस्त्र पहनता हूँ। मुझे तो आपके जैसा उजला सफेद वस्त्र ही पसंद है।
3: ठीक है, बता क्यों आया है मेरे पास?
2: जी ईश्वर और धर्म के संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ।
3: तुझे क्या ये गंभीर विषय समझ में आएगा?
2: जी कोशिश करूंगा समझने की।
3: ठीक है, कुछ खाएगा? भूखा है?
2: जी नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ।
3: भीख में मिला ही क्या होगा जो खाने की बात कर रहा है? मैं तुझे अच्छा भोजन दूंगा।
2: जी मैं तो सन्यासी हूँ, जो रूखा सूखा मिल जाता है उसी में संतोष कर लेता हूँ।
3: अच्छा, हम अच्छा खाना खाते हैं जानकर तुझे जलन हो रही है? जा दूर हो जा, खाएगा नहीं तो दूर हो।
0: स्वामी जी प्रणाम करके वापस आ गए और बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे,
2: बच्चा तूने अच्छा साधु दिखाया, कितना तीखा मिजाज और कैसी गाली गलौज की चोट। अरे बाप, मैं तो उसकी भाव भंगिमा देखकर मन ही मन खूब आनंद ले रहा था।
0: वे ब्रह्मचारी की बातों और भंगिमाओं की नकल कर खूब हंसने लगे। साथियों ने भी मजा लिया। नकल करके वे बोलते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह भी बीत कर जब 7 सप्ताह पूरे हो गए तब स्वामी जी ने कहा, अब यहाँ और रहना ठीक नहीं होगा। सन्यासी के लिए एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहना ही अच्छा है। ये सुनकर एक शिष्य ने उन्हें अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने को निमंत्रित किया। स्वामी जी जब उक्त शिष्य के घर पहुंचे उस समय वो शिष्य शरीर पर तेल मल रहा था।
4: स्वामी जी तेल मलने से क्या कोई फायदा होता है?
2: हाँ बेटा, होता क्यों नहीं, एक छटाक तेल मलने पर एक पाव घी खाने जैसा लाभ मिलता है।
0: शिष्य झेप गया और तेल मलना बंद करके जल्दी से नहाने चला गया।
1: भोजन के बाद शिष्य ने बातचीत शुरू की। उसने कहा,
4: स्वामी जी आप सत्यनिष्ठा, साहस, उद्यम, निष्काम कर्म इत्यादि उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करते हैं, अतः हम इसे निस्वार्थ सेवा कैसे कह सकते हैं? नौकरी करना तो अनंत दासत्व है। इसके अतिरिक्त इन दिनों व्यवसायी जीवन ऐसा हो गया है कि एक व्यापारी के लिए सत्य और सरलता का निर्वाह करना एक प्रकार से असंभव हो गया है। स्वामी जी अगर हमें इस संसार में कार्य करना है तो अपनी नैतिकता का दृढ़ता से पालन करना संभव नहीं है।
2: देखो इस विषय पर मैंने भी बहुत चिंतन किया है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने चरित्र की रक्षा करते हुए कोई भी सचमुच अर्थोपार्जन करना नहीं चाहता है। यहां तक कि कोई भी इस विषय में विचार तक नहीं करता है और न कोई इसे समस्या के रूप में अनुभव ही करता है। ये हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष है।
4: फिर हमें क्या करना चाहिए? जीने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। नैतिकता की रक्षा करते हुए धन कमाना क्या संभव है?
2: मुश्किल की बात क्या है जानते हो? लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब है नौकरी करना। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूँ कि यदि कोई शिक्षित युवा कृषि कार्य को अपना पेशा या व्यवसाय बना लेता है तो इसमें कोई क्षति नहीं है, मगर यदि तुम किसी को ऐसा करने की सलाह दो तो वो मुंह तोड़ जवाब देता है, तब मैंने इतनी शिक्षा क्यों अर्जित की? क्या देश में प्रत्येक के लिए किसान बनना आवश्यक है? हमारा देश पहले से ही किसानों से भरा पड़ा है, इसी से इसका विनाश हुआ है।
4: हाँ, ये बात तो है, पढ़ लिख कर आदमी हल क्यों चलाएगा?
2: राजर्षि जनक ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से वेद का अध्ययन किया। हमारे प्राचीन ऋषिगण कृषक थे। इतना ही नहीं, देखो अमेरिका ने कृषि का विकास कर कितनी प्रगति की है। मेरा ये तात्पर्य नहीं कि हमें इस पेशे को उस प्रकार अपनाना चाहिए जिस प्रकार अपने देश के अशिक्षित करते हैं। हमें इसके विज्ञान को जानना चाहिए और अपने कृषि के विकास में उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक ज्ञान अर्जित कर हमें बुद्धिमान व्यक्तियों की भांति कार्य करना चाहिए। किंतु इन दिनों ज्यों ही गांव के लड़के अंग्रेजी की एक दो किताब पढ़ लेते हैं त्यों ही वे शहर की ओर भागते हैं। वे नगरीय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और नौकरी शुरू करते हैं। इसी से अन्य देशों की भांति भारतीयों ने प्रगति नहीं की है।
4: पर हमारे देश में किसानों की तो बहुत दुर्दशा है स्वामी जी।
2: इन सब का मुख्य कारण ये है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ग्रामवासियों की नगरों में जाने की प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य है। एक किसान का बेटा थोड़ी सी शिक्षा पा लेने के बाद अपनी पैतृक वृत्ति छोड़कर शहर में जाता है और गोरे लोगों के अधीन नौकरी करता है। यदि शिक्षित लोग गांव में रहने जाएं तो छोटे गांव भी विकसित हो जाएंगे और यदि कृषि कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो तो उपज भी अधिक होगी। इस प्रकार कृषक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, वे अधिक और बेहतर चीजें खरीद सकेंगे और इस तरह हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप भी समाप्त हो जाएगा।
4: अभिशाप? वो क्या है स्वामी जी?
2: हमारी जात पात की प्रथा, ऊंच नीच की भावना, दूसरों को नीचा और हीन समझना। भाईचारे की भावना तो समाज में है ही नहीं। यदि तुम्हारी तरह के शिक्षित लोग गांव में जाएं, कृषि कार्य करें, ग्रामीणों से मिलें जुलें और उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करें, घृणा ना करें, तो तुम देखोगे कि वे इतने अभिभूत हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देंगे। और हम लोगों के लिए आज अत्यावश्यक है जन साधारण को शिक्षा देना, अशिक्षित लोगों को धर्म के ऊंचे ऊंचे भाव बताना और पारस्परिक सहानुभूति तथा प्रेम का होना। और ये होगा।
4: वो कैसे होगा स्वामी जी?
2: क्यों, क्या तुम नहीं देखते हो? यदि कोई ग्रामवासियों से घुलता मिलता है तो शिक्षित व्यक्ति की संगति के लिए वे कितने उत्सुक रहते हैं। ज्ञान पिपासा प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। इसी से जब वे शिक्षित व्यक्ति का सहचर्य पाते हैं तो वे उसे घेर कर बैठ जाते हैं और वो जो कुछ भी कहता है उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं। यदि शिक्षित लोग ग्रामवासियों की इस मनोवृत्ति का लाभ उठावें, हर शाम उनकी एक टोली को अपने घर बुलाकर कहानियों और नीति कथाओं के द्वारा उन्हें शिक्षा दें, तो राजनैतिक आंदोलन कर हजारों वर्षों में जो हम नहीं कर सकेंगे उससे 100 गुना अधिक फल ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग 10 वर्षों में ही प्राप्त कर लेंगे।
1: दूसरे दिन 28 मार्च को स्वामी जी ने अलवर के भक्तों से विदा ली। अलवर में स्वामी जी के आचार्य भाव का विकास हुआ था। उन दिनों वे ज्ञान, भक्ति और भाव का निसंकोच भाव से मुक्त वितरण करते थे।
0: अलवर से निकलकर स्वामी जी वहां से 18 मील दूर पांडुपोल की तरफ चले। उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, पर तीखी धूप होने से मित्रों ने मना किया और कहा, रथ नामक एक तरह की ढकी हुई बैलगाड़ी से चढ़कर जाना उचित है। तब वे उन लोगों की बातों को टाल नहीं सके। केवल यही नहीं, अलवर के समस्त अनुरागी

0: कहला में नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर के बगल में उन लोगों ने रात्र भर वास किया। विश्राम काल में स्वामी जी ने उन लोगों को समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, विष की उत्पत्ति, विषपान कर महादेव का मृत्युंजय नाम धारण करना आदि विषयों की एक नवीन व्याख्या की।
1: समुद्र का तात्पर्य है माया रूपी समुद्र। ये रूप रस गंधादिमय माया रचित ये विचित्र संसार, यहां इंद्रियों के भोगने योग्य अनेक वस्तुएं हैं। इन सब का जितना भोग किया जाए उस भोग के फल स्वरूप उससे उतना ही विष उत्पन्न होता है। ये विष आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। अतएव सर्व त्यागी सन्यासी के निकट वो विष व्यर्थ एवं निस्तेज होता है। सन्यासी माया के इंद्रजाल में नहीं फंसते। माया का नाश कर मृत्यु के ग्रास से संसार की रक्षा करते हैं और सबको दिखा देते हैं कि माया जयी पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं।
2: ये कहकर स्वामी जी मृत्युंजय महादेव के सम्मुख ध्यान मग्न हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यात्रा शुरू हुई और 18 मील दूरवर्ती नारायणी नामक एक देवी स्थान में समाप्त हुई। नारायणी में हर वर्ष एक खास दिन को विशाल मेला लगता है और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से अनगिनत नरनारी एकत्रित होते हैं। यहाँ रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और एकाकी 16 मील रास्ता पार कर बसवा नामक रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए। वहां से उन्होंने जयपुर की यात्रा की। थोड़ी दूर पर बंदीकुई नामक स्टेशन पर अलवर का उनका एक पूर्व परिचित भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी के साथ जयपुर जाने के लिए वे भी उसी ट्रेन पे सवार हुए। जयपुर पहुंचने पर वो व्यक्ति स्वामी जी का एक चित्र खींचने के लिए बारंबार आग्रह करने लगा। अनिच्छा पूर्वक ही स्वामी जी को राजी होना पड़ा। परिवारजक रूप में स्वामी जी का यही प्रथम चित्र है।
0: इतने ज्ञानी होने के बावजूद स्वामी जी के मन में हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। मौका पाते ही वे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर लेते थे। कोई विद्या सीखने के लिए उन्होंने कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। जहाँ भी जो भी मिले गुरु मानकर कुछ सीख लिया। जयपुर में स्वामी जी मात्र 2 सप्ताह ठहरे थे। इस अवधि में एक सुपंडित व्याकरण विद से परिचय होने पर उन्होंने उनसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ना शुरू किया। किंतु इस शास्त्र में विलक्षण पांडित्य होने पर भी पंडित जी की अध्यापन प्रणाली सहित प्रथम सूत्र की व्याख्या किए जाने पर जब उन्होंने देखा कि उनका तात्पर्य स्वामी जी को बोधगम्य नहीं हुआ, तब चौथे दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे लगता है कि जब 3 दिनों में भी मैं आपको प्रथम सूत्र का ही अर्थ नहीं समझा सका, तब मुझसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं।

0: होगा।
1: इस प्रकार की बात से स्वभावतः विशेष लज्जित हो स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जैसे हो अपने ही प्रयास से वे उक्त भाष्य का अर्थ समझेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे अन्य किसी और मन नहीं लगाएंगे। संकल्प कर एकांत स्थान में उसे गंभीर मनोयोग के प्रभाव से पंडित जी के द्वारा जो 3 दिन में नहीं हो सका उसे अपनी चेष्टा से स्वामी जी ने 3 घंटों में प्राप्त कर लिया। कुछ ही देर बाद वे पंडित जी के समक्ष उपस्थित हो उस भाष्य की व्याख्या करने पर प्रवृत्त हुए। तब उनकी सुचिंतित सरल एवं गूढ़ तर्कपूर्ण व्याख्या सुनकर पंडित जी स्तंभित हो गए। स्वामी जी बिना प्रयास के ही सूत्र पर सूत्र अध्याय पर अध्याय पढ़ने लगे। इस घटना का उल्लेख कर वे बाद में कहा करते,
2: मन में यदि प्रबल आग्रह हो तो सब कुछ संभव हो जाता है, यहां तक कि पर्वत भी चूर चूर होकर धूलीकरण में बदला जा सकता है।
0: जयपुर में स्वामी जी संसार चंद्र सेन नामक एक सज्जन के घर पर 3-4 दिन ठहरे थे। वहां प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता था। स्वामी जी भी बिना थके देर रात तक उन्हें भजन कीर्तन आदि सुनाया करते थे।

सेन महाशय की पत्नी ज्योतिर्मयी देवी अत्यंत धर्म परायणा महिला थी। स्वामी जी के चरणों में बैठकर वे अपने को धन्य मानती थी। स्वामी जी ने जाते समय उन्हें गीतों की एक पुस्तक दी थी, जिसमें स्वरचित एवं स्वहस्त लिखित कई गीत थे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है। आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाने मन, दिल ना दुखाओ है जाने मन।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, हम सब के जीवन का मोल क्या है, कितना है, ये कैसे नापा जाता है? इसको हम नापते हैं कि हमने हमारे पूरे जीवन काल में कितनी चीजों को बेशकीमती बनाया है, उनकी साधारणता को असाधारणता में परिवर्तित किया है। ऐसे लोग जो कोई भी साधारण सी चीज को अमूल्य बना देते हैं, इनको ही हम कहते हैं सोनार, जो एक पत्थर को तराश करके हीरा बना देते हैं। आज हमारे बीच में यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसे ही व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं, जिन्होंने साधारण सी पड़ी जमीन को तराश करके, उस पे मेहनत करके, उसे उपजाऊ बना करके उस धरती माँ का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। साथियों, मैं आपके बीच में आज लेकर के आया हूँ ओडिशा से साबरमती जी को, जिन्हें प्यार से सब साबरमती आपा कहते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। क्यों, क्या, कैसे, ये सब अभी हम उनसे ही सुनेंगे। सबसे पहले साबरमती जी, आपका हमारे स्टूडियो में, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में 90.4 एफएम को आपने जो समय दिया आज के हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत धन्यवाद आपको, नमस्ते।
2: साबरमती जी, सबसे पहले तो आपके नाम से ही ऐसा लगता है कि आपने पूरे भारत को जोड़ा हुआ है। रहते आप ओडिशा में हैं, नाम आपका साबरमती है जो कि गुजरात में है, साबरमती रिवर के ऊपर नदी का नाम है, एक जगह का नाम है, गांधी जी से जुड़ा हुआ यह नाम है। सबसे पहले मेरी उत्सुकता इस बात में है कि ये बड़ा ही सुंदर सा नाम आपको कैसे मिला, इसके पीछे की कहानी क्या है?
3: कहानी क्या है पता तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने नाम रखा था साबरमती, और जब नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2018 में मार्च में, तो उस समय हमारा जो प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, उन्होंने मजाक से ऐसे बोला कि साबरमती पश्चिम से पूर्व कैसे आ गया। पिताजी ने नाम रखा था श्रद्धा से।
2: तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पिता के द्वारा ईश्वर ने एक बहुत सुंदर खेल रचा, जहां पर भारत को जोड़ने का काम करने वाली एक सुंदर सी स्टोरी उन्होंने वीव कर दी, कहानी सुंदर सी बना दी। तो साबरमती जी, थोड़ा हम और पीछे चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं, जब आपको क्या लगता है आपके जीवन में कौन सा वो समय था, कौन सा वो टाइम या पहलू था जब आपका जो जीवन है उसका ये आपने एक लक्ष्य लिया कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है, मुझे इस बंजर जमीन को, इस वेस्टलैंड को कुछ एक नया रूप देना है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको वो इंस्पिरेशन पॉइंट आपके लाइफ में कौन सा महसूस होता है?
3: प्रकृति के प्रति श्रद्धा, मुझे लग रहा है कि मैं पैदा होने से ही था मेरा अंदर, जैसे कुछ भी पेड़ पौधा दिखना, पहाड़ नदी तितलियां या फल फूल ये सब दिखना मुझे हमेशा पसंद आता था। ऐसे नहीं कि कहीं बाहर से श्रद्धा करना प्रकृति को ये मिला मुझे, ये अंदर ही था। लेकिन मैं इसके ऊपर जो काम कर रही हूँ, कैसे शुरू हुआ कि पिताजी प्रोफेसर राधा मोहन, वो भी पद्मश्री अवार्डी है, उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही काम किया, अलग अलग क्षेत्र में भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब क्षेत्र में भी काम किया था। तो वो सोच रहे थे, उनको लगा कि 40 साल पहले कि हम जिस दिशा में जा रहे, जैसे हमारा खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय होता है यदि हम उसका मैंने रास्ता बदल ना दे। तो ये जो खोज था उनका कि हम कुछ करके दिखाएंगे, वो तो बोलते थे मैंने बहुत सारे काम किया, जिसे जंगल की सुरक्षा के ऊपर बहुत सारा काम किया उन्होंने राज्य में, तो आज भी लोग उनका अवदान याद रखते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे कि हमको ऐसे मैंने करके दिखाना चाहिए जी, पूरा जैविक उपाय में। उस समय तो, आज तो लोग विश्वास नहीं करते थे, करते हैं, फिर उस समय तो छोड़ो, मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि जैविक उपाय में कुछ संभव हो सकता है कि करके। तो वो सोच रहे थे हम जैविक उपाय में हम यदि दिखाएंगे लोगों को कि ये संभव हो सकता है, हम कोई भी जहरीला चीज इस्तेमाल ना करके हम खेती कर सकते हैं, और उससे जो खाद्यान्न पैदा होगा ना प्रकृति का विनष्ट करता है ना मनुष्य का शरीर के लिए कुछ बीमारी पैदा करता है। तो इसे हमको अमृत गुण वाला खाद्यान्न चाहिए एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। तो ये खोज से हमारा जो चिंता था कि कुछ करके दिखाएंगे, तो उन्होंने अभी जो जगह में हमने संस्था संभव करके संस्था बनाया, वो जगह के बारे में उनको जानने के लिए मिला। तो मुझे भी लग रहा था कि हम भी कुछ करें। तो श्री अरविंद आश्रम का ग्लोरिया लैंड फार्म करके था, वहां मेरा 19 साल में ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेनिंग हुआ था। उस समय मुझे कुछ बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। मैं श्रद्धा से पेड़ पौधा में पानी देती थी, माँ के साथ ये सब काम करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंटली खेती करने का काम नहीं किया था। उस समय तक पढ़ाई कर रही थी, फिर उसके बाद नौकरी भी किया ब्रीफ टाइम के लिए, थोड़ी समय के लिए। ये जगह के बारे में पिताजी को पता चला। उससे पहले ढेंकनाल करके डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां बहुत काम किया था उन्होंने। एक अच्छा नदी के किनारे लोगों ने बहुत अच्छा जमीन 150 एकड़ का मुफ्त में दे रहे थे। उन्होंने बोला कि सर आप जो करना चाहते हैं इधर कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर बोला अच्छा लोग है, अच्छा मिट्टी है, पानी भी अच्छा है, तो सब चीज तो अच्छा है, हम सीखेंगे क्या इससे। तो वो एक आशाहीन, जिससे मैंने जिसे हम आशा होपलेस लैंड कहते हैं, जो मैंने कुछ होगा नहीं, लोगों का विश्वास नहीं होगा तो इधर कुछ हो सकता है, इसी जगह को ढूंढ रहे थे। तो ये जगह के बारे में उनको पता चला, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ काम शुरू करेंगे। पास का गांव में एक मीटिंग हो रहा था, 20-25 गांव का लोग आए थे इकट्ठा, और कुछ सरकारी ऑफिसर लोग थे, पिताजी थे, हम लोग भी थे। और उनका जो पूरा बातचीत जो डिस्कशन था कि दो चीज, एनवायरमेंटल इश्यूज और जेंडर इश्यूज, उनके बारे में पूरा उनका डिस्कशन था। तो मीटिंग के पूरा बाद मैंने खत्म होने के बाद गांव का एक व्यक्ति, उन्होंने खड़ा होकर बोला आप लोग सब शहर से हैं, जो बोले अच्छा सुनाई देता है लेकिन ये असंभव बात है। तो इसलिए पिताजी ने बोला कि ठीक है हम संभव करके दिखाएंगे, ये नाम उससे आया। और मैं उस समय से सोच रही थी कि मैं भी पूरा समय इधर दूंगी, लेकिन खत्म नहीं हुआ था, पढ़ाई खत्म किया और 2 साल के लिए थोड़ा टाइम के लिए नौकरी किया और छोड़ के 93 में आ गई। और ये संस्था रजिस्ट्रेशन हुआ था 80, मैं तब से पेन एंड पेपर में थी और मेंबर थी और आना जाना करती रहती थी, लेकिन रहना शुरू 93 से। और तब से संकल्प लिया कि मैं इधर ही रहूंगी और जो भी करूंगी प्रकृति के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए करूंगी, मेरे से जितना हो पाएगा उतना ही करूंगी।
2: सुनते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आ, आ, सिनेमा की कहानी सुन रहा हूँ, या मैं कोई एक ऐसी कहानी सुन रहा हूँ जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिसने इस कहानी को जिया है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी आपके इस कहानी में ही मुझे कुछ सवाल ऐसे लगते हैं जिनके थ्रू हम थोड़ी और गहराई में जा सकेंगे। पहली चीज तो ये साबरमती जी की, मतलब ये जो धरोहर है, जो प्रकृति के प्रति श्रद्धा है, जो आपने, मैंने बहुत सुंदर ये शब्द आपको यूज करते हुए सुना, श्रद्धा। जनरली ये श्रद्धा लोग केवल मंदिरों में, मस्जिदों में या भक्ति भावना के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल मैंने बहुत कम लोगों को करते सुना। आपके लिए श्रद्धा और ये प्रकृति का कनेक्शन क्या है?
3: जहाँ श्रद्धा होता है तहाँ वहाँ अनेक संत होता है, संपर्क तो हो जाता है, संपर्क होने से ही श्रद्धा उत्पन्न होता है। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रकृति के अंदर में इतना छोटा सा बिंदु है, और पूरा प्रकृति मेरे अंदर है और मैं प्रकृति के अंदर हूँ। एक दूसरे को जब तक ऐसे नहीं देखते तब तक ये श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होता है। जैसे लोग भगवान को, जो जो धर्म में भी हो, भगवान को जब विश्वास करते तब तो ऐसे भावना पैदा होता है कि श्रद्धा करना। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक सुंदर भावना है, और मैंने हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ये होता है, लेकिन कोई एक्सप्रेस करते करते नहीं है। कुछ लोग जैसे बच्चे तितली के पीछे दौड़ते हैं, कोई फूल को देख के खुशी होते हैं, कोई नदियां, पानी, समंदर, पहाड़ चढ़ने में खुशी जो होता है, तो वो श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है। ये लंबा समय तक जब खुशी बना रहता है, तो आपके अंदर प्रकृति और प्रकृति के अंदर आप, ये जब भावना पैदा होता है तब श्रद्धा बन जाता है।
2: इतनी खूबसूरती के साथ आपने जो ये बात कही कि प्रकृति का हम एक अभिन्न हिस्सा है, प्रकृति हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, जब इस बात का एहसास हो जाता है तब श्रद्धा स्वाभाविक हो जाता है और वो खुशी लंबे समय तक जीवन में बने रहे, इसके लिए वो श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जो भी आज आप सुन रहे हैं साबरमती जी को, मुझे लगता है इतने छोटे से जवाब में उन्होंने आपको आपके जीवन का वो बाल्यकाल याद दिला दिया, जहां पर आप तितली के पीछे दौड़ रहे थे, या जहां पर पहाड़ों को देख करके आपको आश्चर्य महसूस हुआ कि कितना बड़ा ये पहाड़ है। हर वो एक्सपीरियंस आपके सामने रिपीट हो गया होगा जब साबरमती जी कह रहे थे, मेरे सामने तो हो ही गया। लेकिन जो बात मुझे इनके इस उत्तर से बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो याद रखने लायक बात कि जहां कनेक्शन है वहां तो श्रद्धा होगा ही। और ये जो इनका मानना है कि हर एक के अंदर वो श्रद्धा होती है किसी न किसी चीज के प्रति, उस श्रद्धा को एक बड़ा आकार देना वो प्रकृति के सानिध्य में आने से सहज हो जाता है। तो प्रकृति का सानिध्य साबरमती जी आपके साथ था ही, आपने बताया कि आप अपने माता पिता के साथ मिलकर के प्रकृति के साथ प्रकृति की देखभाल करते थे। जब युवा अवस्था में लोग होते हैं तो उनका ध्यान वो धन संपदा ऐशो आराम इसकी तरफ होता है, स्टेबिलिटी की तरफ लोग ज्यादा सोचते हैं। तो आपने एक हार्ड रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता चुना जहां पर शायद पैसा भी कम है ना, स्टेबिलिटी भी कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है। तो आपके मन में क्या बात चल रही थी, कैसे आपने इस रास्ते को चुन लिया?
3: हाँ, थोड़ी दिन के लिए तो नौकरी किया था, पैसा भी कमाया था मैंने, लेकिन उस रास्ते में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया तो रिजाइन कर दिया नौकरी से। 92 एंड में, 93 में इधर आके रह गया। बीच में थोड़ा दिन वॉलंटियरिंग किया था दंगा पीड़ित लोग जो थे भोपाल में उनके लिए, और बाद में फिर इधर आगे रहने के लिए संभव में। तो काम को कभी हार्ड वर्क नहीं समझा, चैलेंजेस आते रहते। और मैं जिस समय के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा समय में जब युवा अवस्था में, तो बहुत जल्दी शादी वादी का बात, मैंने लड़कियों का बहुत जल्दी शादी हो जाता था, बैचलर्स मास्टर्स इसके बाद बहुत जल्दी शादी कर लेते थे। और कुछ मैंने अच्छा जगह में रहना, पैसा कमाना, ये सब सपना बहुत ही कॉमन था, लेकिन वो कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाया ये कॉमन चीज। और मैं हमेशा ऐसे, आई कैन कंपेयर माई सेल्फ विथ ए बटरफ्लाई अगेन, तितली जैसे घूमना, देखना, सब ये सब बहुत पसंद करती थी, और चैलेंजेस लेना पसंद करती थी। मेरा जीवन इतना साहस भी नहीं था, बहुत चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन यहाँ जो आई काम करने के लिए, मैं कभी हार्ड वर्क नहीं सोचा। काम करते करते वो चला गया, कैसे समय पता भी नहीं चला। और कभी जो नौकरी से रिजाइन किया 92 में, उसके बाद कभी सोचा नहीं था पैसा रोजगार करने के लिए कुछ और दूसरा नौकरी करूं। अभी भी संस्था में मैं नौकरी ही नहीं कर रही हूँ, वॉलंटियरिंग कर रही हूँ तब से। और आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मेरा माँ बाबा और मेरी बहन, ये सब लोग मुझे सपोर्ट किया, और संस्था भी सपोर्ट किया। तो इसके लिए मैं आज काम कर पा रही हूँ। और मेरा जो पहले ट्रेनिंग था पुडुचेरी में ग्लोरिया फार्म में, वहां का जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बहुत श्रद्धा कर रहे थे, वो बताया था मुझे कि किताब पढ़ के कहीं जाके मत बोलना कि मैं खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ, जब तक एड़िया फटा नहीं और ब्लिस्टर्स नहीं आया हाथ में, स्किन काला नहीं हो जाता, चमड़ी काला नहीं हो जाता, आंखों के नीचे काला नहीं हो जाता, तब तक नहीं जाके किसी को बोलना कि मैं खेती कर रहा हूँ. सो दैट वॉज द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, यू नो, कि आई वॉज अवेयर दैट वेन यू वर्क इन दिस फील्ड लाइफ इज नॉट इजी, माने इतना सहज नहीं, जीवन इतना सरल नहीं है. लेकिन काम करते करते कैसे समय गया मुझे पता नहीं चला कि कभी हार्ड वर्क किया था करके. लेकिन जैसे कभी कभी दुख होता, जैसे बहुत गर्मी हो रहा है, पेड़ पौधा के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तूफान से पेड़ टूट रहा है, ये सब देख के थोड़ा दुख होता है.
2: मुझे आपका ये जवाब सुनते हुए बहुत सारा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था कि जब आपने कहा कि मैं एक तितली की तरह हूँ जो कि हर अलग अलग डाल में जाना, फ्री रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में जब कोई व्यक्ति बहुत फ्री स्पिरिटेड होता है, बहुत उन्मुक्त होते हैं, उनको कहीं पर भी बंधे रहना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आपका तो सेवा ही ऐसा है कि जो आपको एक जगह पे बहुत लंबे समय तक डेडिकेटेडली रहना पड़ता है, तो वो तितली वाली साबरमती और ये जो डेडिकेटेड साबरमती है, इसके बीच में आपको सच में बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है।
3: कभी कभी बंदर भगाने में जब दिक्कत होता है तब चिढ़ जाती हूँ कि इतना काम करना पड़ता है बंदर. अदरवाइज आई एंजॉय माई वर्क.
2: वाह, तो ये जो आपने बात कही कि आपको बंदर भगाने में बहुत मेहनत लगता है, ये हमारे जो श्रोता साथी सुन रहे हैं आबू में, उनको तो इस चीज का बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि माउंट आबू में भी और आबू में भी बहुत बंदर होते हैं। कई बार वो थोड़े फ्रेंडली होते तो बात सुन लेते हैं, नहीं तो उनको भगाने में हमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक और बात जो मैंने आपकी इस चर्चा से, आपके इस जवाब से अनुभव किया कि आप वास्तव में प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जहां बहुत प्यार होता है वहां ही समर्पण की भावना होती है, वहां ही डेडिकेशन भी होता है, वहां ही दिल जान और पूरी शिद्दत से व्यक्ति कोशिश करता है कि जिसको वो प्यार करता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है। तो ये जो प्रकृति के प्रति आपका प्यार है, ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो आपने कहा कि आपके टीचर ने इतनी अच्छी बात आपको बताई कि किसी को जाके ये नहीं कहना कि किताबें पढ़ करके मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग आई है, खेत में उतर के मेहनत करके जब तक एड़िया ना फट जाए तब तक, मतलब कहने का भाव ये है कि एक तपस्या जो है वो कर्म करने से ही उसका लाभ मिलता है, केवल बातें करने से नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी जो भी आज आप सुन रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन का ये टाइम है। साबरमती जी के जीवन से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आइए एक दूसरे को हम ये सवाल पूछें कि जो भी अच्छी बातें हमने सुनी हैं, समझी हैं, उसको जीवन में प्रैक्टिकल में कितना उतारा है। और जैसे उन्होंने कहा कि मेहनत नहीं मोहब्बत है, इस वजह से मेहनत मेहनत नहीं लगती, तो क्या मैं मेरे पेशे से, मेरे काम से, जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं गृहिणी हूँ, घर का देखभाल करती हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, या मैं एक रोजगारी कामकाजी व्यक्ति हूँ, मैं अपने पेशे से कितना प्यार करता हूँ? साथियों, ये सवाल आपके लिए है, लेकिन वापस आते हैं साबरमती जी के पास एक और सवाल लेकर के। साबरमती जी, जैसे आपने बताया कि आप एक तितली हैं और प्रकृति के बीच में रहना आपको पसंद है और लोग आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, साबरमती से साबरमती आपा बनने का सफर क्या है? लोगों ने आपको आपा बोलना क्यों शुरू किया?
3: हाँ, अप्पा हमारे भाषा में, इधर अप्पा का मतलब एल्डर सिस्टर होता है, बड़ी बहन. तो एक्चुअली मैं जब इधर आई थी और मेरे साथ जो काम कर रहे थे लड़कियां, वो सब बहुत कम थी, तो गांव में जब जाते थे तो थोड़ा दिक्कत होता था लोगों के साथ, जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो कैसे एड्रेस करेंगे. पर मैं सबको, मुझे लगा कि पता नहीं कैसे ये भावना आ गया मन में, जैसे एक मदरली फीलिंग होता है, मैं सबको अपना बच्चा जैसे ऐसे बोलती थी कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे महिलाएं हैं, सबको अपना बच्चा जैसे ऐसे बोल

0: आप साबरमती के नाम से गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत साबरमती मिलेंगे, लेकिन अगर आप साबरमती आपा टाइप करेंगे तो आपको केवल हमारी साबरमती आपा ही मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है जी, जो लोगों ने आपको ये आपा का टाइटल दिया, मतलब बड़ी दीदी का टाइटल दिया, हम भी देखते हैं कि बड़ी दीदी का जो रोल होता है वो बहन का रोल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ एक माँ का रोल भी होता है। बड़ी दीदी जो है बहन की तरह दोस्त भी होती है, लेकिन माँ की तरह पालना देने का ताकत रखती है। तो ये जो आपने रोल निभाया है, एक दोस्त का, एक माँ के रीति बच्चों को संभालने का, लोगों को समझाने का कि माँ प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, इस रोल के लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये रोल हमेशा ऐसे ही यूं ही चलाते रहे और यूं ही अच्छे से लोगों के बीच में जाकर के लोगों को प्रकृति के बीच में लाने का प्रयास जो आप कर रहे हैं वो ताउम्र आप करते रहे, ये हमारी शुभकामना है। एक और सवाल यहाँ मेरे मन में आता है कि आपने एक बंजर जमीन को एज अ केस स्टडी लिया, मतलब अगर मुझे कहा जाए कि भाई आपको कुछ करना है तो मैं तो शायद बोलूंगा हाँ ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है, ये फिजिबल लगता है ये संभव है तो इसमें ही जाना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है वो संभव कितना है वो उसके आधार पर उसको चुनता है, बट आपके पिताजी ने या आपने जो असंभव है उसको संभव करने का चुना। लोग अच्छा जमीन ढूंढते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, आपने ढूंढा तो ढूंढा बंजर जमीन ढूंढा, तो इतना हिम्मत कैसे आया?
1: इसके बारे में हम सोच रहे थे, जो मैंने खाद्यान्न में विष मैंने जहर डालने का जो व्यवस्था, केमिकल एग्रीकल्चर का जो व्यवस्था, उसके बारे में, और एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में सोच रहे थे। वो सोच बहुत ही स्ट्रांग था। जो चीज खराब हो गया उसको हम फिर एक बार ठीक से फिर कर पाए तो लोगों और हमको के लिए मिलेगा। अच्छा जमीन में तो अच्छा होगा ही, इससे मैंने डाउट ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस जगह में होगा नहीं लोग सोच रहे वहां हम कर पाएंगे तो कहीं हो लोग प्रयास करेंगे तो वो फिर संभव हो पाएगा। और यहाँ हम बहुत अलग अलग किस्म का पेड़ पौधा लगाया, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने भी प्रयास किया बंजर जमीन में कुछ लगाने के लिए, ऐसे नहीं कि हम पहली बार कर रहे। जैसे महाभारत में भी उसका इंद्रप्रस्थ का जो उदाहरण है वो तब से है, तो ये पहली बार हम नहीं कर रहे। लेकिन अब यदि इस टाइप का जमीन में कर पाएंगे कि जो लोकल लोग बोल रहे कि असंभव है, इसका मतलब है कि आप कहीं भी जाएंगे इस टाइप का जमीन मिलेगा आपको, तो आपको आशा होगा कि नहीं ये हो सकता है, इसमें फिर जीवन वापस आ सकता है।
0: आई थिंक ये जो आपने बात कही कि अच्छे के साथ अच्छा होना, ये तो साधारण बात है, कोई साधारण सी चीज को असाधारण बना देना इसमें मेहनत लगती है। और जैसे कि आपने किया कि एक बंजर जमीन को आपने बेशकीमती जमीन बना दिया, उसमें जो आशा लोग खो चुके थे उस आशा को आपने वापस लाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली जो आपने बात कही कि होप को नहीं छोड़ना चाहिए, आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपको मदद करती है आगे बढ़ने में। थोड़ा सा हम टेक्निकल सवाल करते हैं, जैसे आपने बताया कि बंजर जमीन थी उसमें आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, तो आपने चूंकि पढ़ाई की हुई है, आपने ट्रेनिंग ली हुई है, साथ में आपका प्यार भी है, क्या कोई श्रोता आज जो हमारे साथ सुन रहे हैं उनके आसपास में अगर उनको एक छोटा सा जमीन दिखता है या उनकी खुद की भी जमीन होगी और उसमें अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना चाहिए उन्हें?
1: पहला मैसेज ये होगा कि मैं करना चाहता हूँ, ये स्टेप पहला चीज होता है। जो करना चाहता हूँ ये मन में ये संकल्प आ जाए तो कर सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं कि कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, अपना जो सपना है मन में, अपना जो एक इच्छा है कि मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो संकल्प से फिर आपका आगे आप काम कर सकते हैं। ज्ञान के लिए किसी को मैंने वेट करने का नहीं चाहिए कि मैंने भी पढ़ाई नहीं किया एग्रीकल्चर साइंस में, पिताजी ने

0: पढ़ाई नहीं किया एग्रीकल्चर साइंस में, तो ये पढ़ाई करके एग्रीकल्चर करेंगे, इसके लिए कोई वेट करने का जरूरत नहीं है। पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं करना चाहता हूँ ये संकल्प, फिर उसके बाद आप आसपास का गांव का लोगों का मदद ले सकते हैं, किताब का मदद ले सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे चीज मिलता है, देख सकते, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, करने का तरीका आ जाएगा।
1: तो दोस्तों आपने सुना, कोई भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी नहीं है, जरूरी है अंदरूनी साहस, हौसला, उमंग, उत्साह, और जो साबरमती जी ने बोला संकल्प। पहले तो ये संकल्प होना जरूरी है कि मुझे ये करना है, और फिर जैसे कि उन्होंने कहा आप शुरू कीजिए, फिर आपको YouTube का हेल्प मिलेगा, आपके आसपास के पड़ोसियों का हेल्प मिलेगा, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जो आपके पास होंगे, जो आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे होंगे, बस शुरुआत करने की देर है। और मुझे लगता है साबरमती जी भी आपको मदद जरूर करेंगी, क्योंकि साबरमती जी का अनुभव जो है हमारे लिए बहुत बेशकीमती है। साबरमती जी, एक और सवाल अभी यहाँ मुझे पूछने का मन करता है कि आप 92 से 2022, 23, एक बहुत लंबा अरसा है, आपने एक जमीन को ऑलमोस्ट एक जंगल का रूप दे दिया है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस इतने बड़े समय में कोई एक घटना, कोई एक किस्सा, एक कहानी ऐसी आपके जहन में आती हो जो आप हमारे श्रोता साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो एक मेमोरेबल इवेंट हो, वो कौन सा इवेंट होगा?
0: एक बार एक प्रोफेसर आए थे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो सब घूम के देखने के बाद फिर मुझे पूछा कि क्वेश्चन पूछा, डोंट यू फील इंटेलेक्चुअली बैरन, हाउ डू यू स्पेंड टाइम हियर। उस समय हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, रनिंग वाटर नहीं, टॉयलेट नहीं, से कुछ नहीं था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आप जब प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं, ये प्रश्न मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि इंटेलेक्चुअली बैरन कैसे एक व्यक्ति फील कर सकता है, इतना सीखने के लिए है। दूसरा था कि बहुत सारे ऐसे अनुभव है, जब 99 में सुपर साइक्लोन हुआ था, तब इतना सारा पेड़ पौधा गिर पड़ा था, तो देख के बहुत रोना आया मुझे, मैं सहन नहीं कर पाया, कभी कभी लोग आग भी लगा दिया था इधर, ये सारे छोटे छोटे घटनाएं बहुत आघात दिया मन में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, ये नेचर का पार्ट है, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली।
1: ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे भी हैरानी हुई जब आपने ये एक्सपीरियंस शेयर की कि इंटेलेक्चुअली बैरन, मतलब साधारण शब्दों में दोस्तों इंटेलेक्चुअली बैरन मतलब कोई भी चीज से ऊब जाना, आपकी बुद्धि जो है, आप अपनी बुद्धि को सतत न्यूट्रिशन या भोजन नहीं दे रहे हैं जिससे बुद्धि एक्टिव रहे। और साबरमती जी का वही कहना था कि प्रकृति में इतना कुछ है सीखने को कि आप खाली कैसे बैठ सकते हैं, आप ऊब कैसे सकते हैं, बोर कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो कि मुझे भी और मैं समझता हूँ मेरे सभी श्रोताओं को ये महसूस कराएगा कि सीखने को बहुत कुछ है, बस प्रकृति में जाने की बात है, देखने की बात है, गौर करने की बात है। साबरमती जी, जब आपको सबसे पहले तो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, फिर पद्मश्री पुरस्कार, तो ये जब पुरस्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब आपको ऐसा लगा कि आपके कार्य को लोग समझ रहे हैं या आपको लोग ज्यादा समझ रहे हैं, और आपके सामने जो परीक्षाएं आ रही हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस फील हुआ आपको?
0: मैं थोड़ा बचपन के टाइम के बारे में भी ये संदर्भ में बोलना चाहती हूँ। जब छोटे थे, स्कूल में थे, तब बहुत इच्छा था कि हमको फर्स्ट प्राइज मिले डिबेट में, एसे में, पेंटिंग में, ये सब। जब सेकंड हो जाती थी तो तब मन दुख होता था, जब प्राइज लेके आते थे फर्स्ट सेकंड जो भी हो स्टेज से, तब बहुत खुशी लगता था। लेकिन अब भी जो नारी शक्ति हो या पद्मश्री, हमको आज तक भी पता नहीं किसने हमारा नाम रेकमेंड किया, क्योंकि एज ए पॉलिसी, एज ए प्रिंसिपल, ना संस्था ना व्यक्तिगत रूप से हम कोई भी अप्लाई नहीं कर कोई पुरस्कार के लिए। तो जब आया तो मुझे लगा कि ये फेक कॉल था, विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे क्यों कोई ये पुरस्कार देगा, क्योंकि कभी अप्लाई नहीं किया था, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं था कि बायोडाटा दो ये वो करके। लेकिन बचपन में जो जो भावना होता था पुरस्कार मिलने के टाइम में, वो भावना अभी नहीं था मेरे मन में. टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी काम इन साइड मी, बहुत ही पूरा शांत थी अपने अंदर. लेकिन ये लगा कि एक मेरे ऊपर जो आशा था लोगों का वो बढ़ गया है, मुझे और भी ज्यादा कुछ करना चाहिए. हमारा कोई अपना अकेला तो कुछ अचीवमेंट नहीं है ये.
1: ये आपने इतना खूबसूरत बात बताया कि अभी ऐसा लगता है जैसे उत्तरदायित्व बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, जिम्मेवारी बढ़ गई है। और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि लोगों की उम्मीद भी आपसे बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप में लोगों को एक आशा की किरण नजर आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुद अपने अंदर में एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत आशावादी व्यक्तित्व है। लेकिन जैसा आपने बताया कि बचपन में आपको पुरस्कार पाने का बहुत खुशी होता था, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं, इतने उत्सुक नहीं होते, और किसी और ने आपका नाम रिकमेंड कर दिया और आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे काम पे लोगों की नजर जरूर होती है और कोई ना कोई इसकी तालीम रखता है और कोई ना कोई इसके बारे में किसी ना किसी को जरूर बता रहा है। तो दोस्तों, अच्छा काम करते समय सिर्फ ये याद रखिए, समबडी इज वॉचिंग, कोई ना कोई देख जरूर रहा है। ये मत सोचिए कि ये मुझे किसी पुरस्कार या किसी श्रेष्ठ पद पदवी के लिए करना है, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि ये मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। यही मैसेज शायद साबरमती जी आज हमें दे रही हैं। साबरमती जी, आपके संभव के जंगल में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत सारे विविधीकरण किया है आपने खेती में भी। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा फेवरेट पौधा आपका कौन सा है, तो कौन से पौधे का नाम लेंगे आप?
0: जी तो कोई एक भी ऐसे नहीं दिख रहा है, मैं सब सब पेड़ पौधा के साथ बात करती हूँ, मुझे सब पेड़ पौधा अच्छा लगते हैं.
1: और अगर फसलों की बात करें तो कोई एक विशेष फसल जो आपको बहुत अच्छा लगता है?
0: नहीं, सब पेड़ पौधा तो अच्छा लगता है, मैं कोई एक का नाम नहीं ले सकती.
1: तो वास्तव में मैं समझ रहा हूं कि आप बेहद प्यार करती हैं प्रकृति से, इसलिए उसमें डिफरेंस नहीं कर सकती हैं, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आज की जनरेशन को आप एक मैसेज देना चाहें, स्पेशली जो युवा वर्ग है उनको एक मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप?
0: युवा वर्ग को एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि प्रकृति का ध्वंस करके, मैंने पेड़ पौधा, प्राणियों, नदी, मिट्टी, ये सब का हम ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, और हम मनुष्य जाति अकेला ही राज करेंगे पृथ्वी के ऊपर, ये संभव नहीं है. ये हमको समझना पड़ेगा. हम सबके साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते. तो यदि हम पर्यावरण का सुरक्षा ना करते हैं, तब हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा. पर्यावरण के ऊपर हम बोझा नहीं बनना चाहिए. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता में देना चाहती हूँ. हम अकेला राज नहीं कर सकते पृथ्वी के ऊपर, ये मुश्किल है. दूसरा चीज है खाद्यान्न के बारे में. मैं आपके साथ थोड़ा मैंने प्रश्न के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहती हूँ. हम जितने भी धनी है, मानी है, ज्ञानी है, गुणी है, बहुत ही क्षमताशाली है, फिर भी सुबह सुबह हम जब भी उठते हैं, हमको 3 बार तो खाना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि सुबह उठ के नाश्ते में हम लोग हमारा ज्वेलरी नहीं खा सकते, दोपहर को बैंक बैलेंस में जितना पैसा है खा नहीं सकते.
1: ये आपने बहुत अच्छा बोला कि सुबह को आप ज्वेलरी और दोपहर को बैंक बैलेंस, इट्स अ वेरी
0: रात
1: इंटरेस्टिंग।
0: को महंगा गाड़ी खा नहीं सकते, हमको खाना ही खाना चाहिए. हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा एक बात करना चाहती हूँ. जो 3 बहुत ही प्रमुख चीज हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए, वायु, जल और खाद्यान्न. वायु, जल हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, प्रकृति ने हमको अपने आप दिया है ये सारे उपहार जिंदा रहने के लिए. और खाद्यान्न
1: जी
0: हम पुरस्कार संग्रह करते हैं, जैसे नदी से मछली, जंगल से कुछ फल, इसे संग्रह करते हैं और उगाते भी
1: जी
0: हैं। तो जो कम से कम हम तो 3 बार खाते, सुबह,
1: जी
0: दोपहर को, रात को। साधारण लोगों के बारे में बोल रही हूँ, मैं कोई सन्यासी योगी के बारे में नहीं बोल रही हूँ।
1: जी
0: तो 3 बार जो खाते, साल में कितना दिन होता है?
1: 365 दिन
0: 365 दिन गुना 3, बताएंगे
1: जी
0: कितना आया?
1: 365 और 3 बार अगर हम भोजन करें तो 1095, मतलब
0: हाँ
1: 1095 टाइम्स।
0: हाँ 1095 था। आपका उम्र अभी क्या होगा?
1: मैं 34 ईयर्स का हूँ, 34 साल।
0: जिंदगी में, हाँ जिंदगी में पहला साल ज्यादा चीज हम बाहर से नहीं खाते, तो 33 साल हम लेंगे,
1: जी
0: तो 33 गुना 1095 कितना आया?
1: ये आता है 36,135, मतलब थर्टी
0: अच्छा,
1: सिक्स थाउजेंड हंड्रेड
0: छत्तीस
1: एंड 35। वाओ
0: 36 हजार 36 हजार से ज्यादा टाइम आपने खाया। मैं 6 हजार से ज्यादा जो है उसको मैंने कट कर देती हूँ। कभी गुस्सा होके नहीं खाया होगा, कभी तबीयत खराब है नहीं खाया होगा, कभी खाने के लिए नहीं मिला होगा,
1: जी
0: मीटिंग में व्यस्त है,
1: जी
0: तो बहुत सारे कारण होता है। तो बाकी रहा 33,000।
1: जी
0: 33,000 टाइम आपने जो खाया जिंदगी में, आप मान लीजिए भोजन में हर टाइम में जहर हम खाते रहेंगे तो क्या हालत होगा? अभी जो हम जहरीला चीज खा खा के हर घर में, आप मैं जो बीमारियां बोल रही हूँ, कम से कम एक तो मिलता है जरूर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक,
1: जी
0: ये और किडनी फेलियर, ये 7 जो शत्रु है हमारा, हर घर में किसी को कम से कम एक ना एक तो होता रहता है। तो हम जहर खाएंगे कि खाद्यान्न खाएंगे उसका विचार करना है, और कितना दिन तक ये चलता रहेगा। तो यूथ जो है, यूथ एक ऐसे स्टेज पर, युवा वर्ग ऐसे स्टेज पर होते जिनको मैंने समझ में आ सकता है कि उनका भविष्य क्या है। वो बहुत छोटे बच्चे नहीं है, उनको समझ में आ सकता है। यदि ये बात ये समझ जाएंगे, 33,000 बार मैं खा रहा हूँ तो अच्छा चीज खाना चाहिए, और जो अच्छा चीज खा रहा हूँ उसको उगाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल्फ लाइफ के लिए केमिकल डालते रहूंगा तो पर्यावरण का भी नुकसान होगा और मेरा खुद का भी नुकसान होगा। तो ये करने नहीं देंगे हम, जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे, ये संकल्प मन में आएगा ना, तो ताकि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और अमृतमय खाना होने से अपना जीवन भी अमृतमय बना सकते, बीमारी से कम तो मुक्ति मिल सकता है।
1: वाह, मतलब मैं तो हैरान हो चुका हूं कि ये इतना अहम चीज, मतलब मुझे भी समझ है कि भाई हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, ऑर्गेनिक भोजन में हमारे लिए ज्यादा बेहतर पोषक तत्व हैं, लेकिन इस पहलू को मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं ऑर्गेनिक भोजन या जैविक भोजन नहीं कर रहा हूँ या शुद्ध भोजन नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने अंदर जहर की मात्रा को धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, और ये कहाँ तक जीवन के लिए सुखदाई है। दोस्तों, ये जो छोटा सा एक एक्टिविटी था मेरे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक एक्टिविटी कहूंगा मैं ये मेरे लिए, आप भी करके देख सकते हैं कि आपकी आयु जितनी भी है उसको आप 3 बार भोजन अगर आप कर रहे हैं तो आपने कितना भोजन, अच्छे क्वालिटी का भोजन ग्रहण किया है, ये सोचने का विषय है। और अगर सोचने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को बदलना है, इस नैरेटिव को बदलना है, इस ये जो कहानी चली आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ही क्या, इसको मैं और आप ही बदल सकते हैं, जब हमारे साथ साबरमती आपा जैसे लोग हैं तो क्यों नहीं हम इस कहानी को बदले, एक नया अंजाम दे, एक ऐसा अंजाम दे जिस अंजाम में मैं भी खुश हूं, मेरा स्वास्थ्य भी खुश है, मेरे परिवारजन भी खुश हैं, और मेरा सबसे बड़ी बात, मेरा समाज, मेरा धरती, मेरी प्रकृति, ये भी सेहतमंद है। इस पे सोचने की बात है। और साबरमती जी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे युवा साथियों के लिए, स्पेशली उनके लिए, लेकिन हर एक के लिए एक बहुत अच्छा एक्टिविटी कराया कि जरा सोचिए क्या हम कर सकते हैं अगर हम समझ लें क्या हम कर रहे हैं। तो साथियों, ये चर्चा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है, जहां पर साबरमती जी ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से कुछ सवाल पूछा। साबरमती जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यहाँ पर आप
0: जी
1: अपने कारोबार के लिए कई बार देश का चक्कर लगाती हैं, देश के अलग अलग तमाम जगहों पे जाती हैं, या आपके पास भी सीखने के लिए संभव में बहुत सारे लोग आते हैं। जहां तक मैंने स्टडी किया, मुझे समझ में आया कि लगभग साल में 2,000 लोग आते हैं संभव के दर्शन करने के लिए। कि क्या संभव में आपने करामात किया है? जब आप इतने लोगों से मिलते हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और जब आप खुद देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कौन सी वो एक बात है जो आपको लगती है कि पूरे भारत में एक जैसी है या भारत को जोड़ती है?
0: एक चीज है कि इसका विविधता, एक दूसरे का विविधता को देखना, प्रशंसा करना, समझना, ये एक चीज मुझे अच्छा लगता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही
0: मैंने
1: कि
0: जो
1: विविधता, और
0: जैसे है
1: विविधता
0: उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना।
1: जी, और जैसे विविधता की आपने बात बताई, मैं समझता हूँ प्रकृति में भी ये विविधता का जो नियम है ये बहुत स्ट्रोंग है।
0: जी
1: आपको क्या लगता है भारत को यशस्वी क्या बनाती है, उसकी विविधता या उसकी एकता?
0: विविधता में तो एकता बनाता है, नहीं तो इतना पुराना जो है आज कैसे मैंने खड़ा है, आज तक भी सर ऊंचा करके कैसे खड़ा है। आप
1: बीच में
0: देखिए पूरा
1: जी
0: मान लीजिए गुलाब का फूल बहुत लोगों को पसंद है, या रजनीगंधा का फूल पसंद है उसका खुशबू के लिए, तो पूरा गार्डन में सिर्फ गुलाब ही होगा और पूरा पृथ्वी में गुलाब ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो मुश्किल बात हो जाएगा। सब चीज का जरूरत है, तो इस हिसाब से लोगों का संस्कृति भी अलग अलग अलग अलग होता है। अच्छा चल रहा है फिर भी सब एक साथ चल रहे चीजों से, लेकिन फिर भी ये सभ्य
1: तो मजा आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ समय दे और हम आपके साथ एक और दोबारा से ये उमंग उत्साह भर दे कि कुछ एक अच्छा संकल्प, एक शुभ संकल्प लेकर आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा, जहां पर मैं आपसे उसका जवाब देना होगा। क्या आप रेडी हैं? ओके, थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: बिना सोच के कि मैंने वो लोग बोले, सामने वाले जो भी है प्राणी व्यक्ति या पेड़ पौधा जो भी है, वो बोले बिना आप उनको समझ के उनका जो चाहत है उसका पूरा करते, तो मुझे लगता है कि वो सेवा है।
1: बहुत सुंदर। मतलब किसी के कहने के पूर्व अगर उसकी जरूरत का निदान हम कर सकें तो वो सेवा है। बहुत सुंदर। शांति क्या है?
0: जो आपको विचलित नहीं करता है, जो चीज वो
1: है
0: अपने अंदर ही ज्यादा होता है।
1: जी, शांति अंदर ही होती है और आपको विचलित नहीं होने देता, एक ताकत है। प्रेम क्या है?
0: प्रेम होता है बिना कुछ आशा रख के दूसरे से, आप जो श्रद्धा देते हैं उसको प्रेम कहते हैं। कुछ आशा नहीं रखते कि मैं इतना प्रेम करूं तो मुझे इतना मिलेगा।
1: श्रद्धा क्या है आपके लिए?
0: पूरा समर्पण जो होते हैं, खुशी होते हैं उससे जो करके, वही श्रद्धा होते हैं।
1: प्रकृति क्या है आपके लिए?
0: चारों तरफ प्रकृति है, प्रकृति हमारा हिस्सा है, हम प्रकृति का हिस्सा है, कुछ अलग से नहीं देख पाती उसको। मिट्टी से लेकर आकाश तक सब हमारे लिए प्रकृति है।
1: बहुत सुंदर। संभव क्या है?
0: जो कर पाएंगे उसके लिए आशा रख के करने का इच्छा रख के करना शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो संभव है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कोई जो मर गए उनको फिर जिंदा वापस लाएंगे, ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने जो कर सकते हैं करने के लिए प्रयास करते हैं उसको संभव बोलते हैं।
1: और संभव जो आपकी संस्था है वो क्या है, अगर एक शब्द में या एक वाक्य में कहना चाहेंगे?
0: इट्स लाइक कल्टिवेटिंग होप खेती।
1: मतलब आशा का संचार करना, खेती करना, आशा की खेती करना। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल।
0: भारत
1: भारत क्या है?
0: भारत एक ऐसे नाम है जो

0: माने मुझे तो लग रहा है पर्टिकुलरली हम भारतीय लोगों का जो धड़कन है उसको मैं भारत कहूंगी।
1: इतना सुंदर आंसर मैंने आज तक नहीं सुना कि हर दिल की धड़कन भारत है। वाह, बहुत सुंदर साबरमती जी। आखिरी और सबसे सहज सवाल, साबरमती आपा कौन है?
0: साबरमती आपा मैं हूँ।
1: लेकिन एक शब्द में
0: आप
1: अगर कहना
0: सबकी
1: चाहे
0: आपा
1: कौन है?
0: हूँ, सबकी आपा।
1: वाह, थैंक यू सो मच आपा। सबकी
0: बिल्कुल
1: आपा है आप साबरमती जी। मतलब जो ये आपका अपनापन है, ये जो आपकी करुणा, दया, ममता और ये जो श्रद्धा आपने हर एक के लिए रखी है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत सात्विक है, बहुत पावरफुल है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही सेवा में, प्रकृति की और लोगों की सेवा में अपने को उन्नति और सेहतमंद रीति से खुद का भी ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। ये रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथियों की तरफ से मेरी आपके साथ ये गुड विश कहें, शुभकामना, शुभ भावना कहें, ये आपके प्रति रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आज आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मुश्किलों के बीच में, क्योंकि मुझे पता है आप जहां पर है वहां इंटरनेट की व्यवस्था बहुत कम होती है, बट फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमको समय दिया। आप बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि आप खेती से, जमीन से जुड़ी हुई व्यक्तित्व हैं, इसमें से आपने हमें समय निकाल करके दिया, इसके लिए पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बिल्कुल। साथियों, अगर आप साबरमती आपा जी को सुन रहे हैं और सुनते हुए आपको अपने अंदर में ऐसा एक छोटा सा एक आइडिया आ रहा है, जैसे मुझे आ रहा है कि काश मैं उड़ीसा में होता, काश मैं आपा से मिल पाता, काश मैं संभव में जाकर के आशा की खेती देख पाता, तो मुझे लगता है साबरमती जी आपको हमें इनवाइट करना चाहिए। कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या आप बता सकते हैं?
0: मुझे फोन कॉल कर दीजिए, मैं बता दूंगी रास्ता कैसे आना है, कहाँ से आना है। भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर दूरी होता है, भुवनेश्वर बस स्टैंड से। आप कभी भी कोई भी आना चाहते हैं तो सबको सादर निमंत्रण है, और फोन कर सकते हैं। आपके पास तो मेरा फोन नंबर है, तो कोई भी फोन कर सकते हैं और फिर मैं तय कर दूंगी, मदद करूंगी कैसे आने के लिए।
1: जी साबरमती जी, आप सच में आपा ही हैं, क्योंकि लोग जनरली फोन नंबर देना नहीं पसंद करते, लेकिन आप सच में एक दीदी हैं, इसलिए आप देने में बिल्कुल नहीं कतराती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका एक न्योता ओडिशा की तरफ से आया है, आप कभी ओडिशा जा रहे हैं, भुवनेश्वर की तरफ आपका रुख हो रहा है, तो वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पे संभव जैसे एक सुंदर से जंगल में, जहां पर आप प्रकृति और मनुष्य का आपसी प्रेम देख सकते हैं, वो जरूर देखिएगा।
0: या सॉरी, फोन नंबर नोट करना चाहते तो मैं बोल देती हूँ अभी।
1: जी
0: 6370689785।
1: तो दोस्तों, आपने नंबर नोट कर लिया होगा और एक प्लान भी बना लिया होगा। जब कभी भी भविष्य में आप उड़ीसा की तरफ जाएं, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे जरूर जाएं, लेकिन एक ऐसी जगह पे भी जाएं जिस जगह का पहले मानचित्र में अस्तित्व तो था लेकिन कोई नाम नहीं था, आज उस जगह का नाम है। तो साबरमती जी के साथ आज हमने काफी समय बिताया और हमने बहुत सारी चीजें सीखी दोस्तों आज उनसे। जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी आज उनसे बात करते हुए, ये कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा ये करने की बात नहीं है, ये जीवन को सुधारने की का एक रास्ता है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा हमारा जीवन का तरीका होना चाहिए और यही श्रद्धा हमारे जीवन को बहुमूल्य बनाएगी, हमारे हर कर्तव्य को बहुमूल्य बनाएगी। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में साबरमती आपा के साथ आया था। साबरमती आपा जिन्हें भारत सरकार ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, आज वो हमारे साथ हमारे बीच स्टूडियो में थी। अगले एपिसोड में मैं आपके बीच में एक और ऐसी महान हस्ती के साथ पहुंचूंगा जो कि भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम को सुनते हुए आप भी भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, एक सभ्य सुसंस्कारित नागरिक बन करके। तो रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ जैसे आपने कहा, दिल में प्रकृति के लिए श्रद्धा बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: चतुरा घोड़ा ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात।

पास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करने का जब पूरा तरीका हमने समझा, उसमें जब रिश्तों को देखा, तो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब रिश्तों की बात होती है तो उसमें दो लोग तीन लोग शामिल होते हैं और उन पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब अध्यात्म या अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी, उसको समझते हुए, खुद को समझते हुए रिश्तों को देखा, तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई और पावर हमारे हाथ में आ गई कि हम हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और तलाशते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को देखते हैं, कुछ कड़ियों में देखें, रिश्तों को हमने एक नई नज़र से देखा है कि अब हर चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा नाम आते ही मुझे लगता था मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन जब हर चीज़ को ठीक करने की पावर मेरे पास आ गई तो फिर मैं कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ।
1: एब्सोल्युटली। और उसके लिए हमने देखा कुछ एक बातों पर जिस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉज कि रिलेशनशिप को हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहले क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे को हम किस दृष्टिकोण से अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि नो वन एल्स कैन हर्ट मी।
0: I hurt myself.
1: You can say what you want, but I use what you say to hurt myself. No one can hurt me. I hurt myself. तो हम खुद ही अपने दर्द को क्रिएट करते हैं। कोई और मुझे दर्द नहीं देता है, कोई और धोखा दे सकता है, लेकिन दर्द फिर भी मेरी क्रिएशन है। तो जैसे ही मुझे वो रियलाइज होता तो उसको फिनिश करना आसान हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि सारा दिन में जो हम लेबल्स लोगों को लगा देते हैं, तो लेबल्स लगाकर फिर हम उसमें बहुत सारे बैगेजेस भरते जाते हैं कि वो ऐसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं, तो उससे हमारे मन में गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, यू नो, ये सारे बैगेजेस भरते जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल हेल्थ और फिर अगर जल्दी नहीं फिनिश किया गया तो फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के या कम से कम रात को तो ज़रूर एक बार अपने सारे बैगेज को हल्का करें, तो नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे,
0: क्लीन हम होंगे। या फिर मैंने क्रिएट किया हुआ होगा। हमने कहा था कि घंटी बजे उससे पहले ही हम एक इमेज क्रिएट कर चुके होंगे कि जैसी इमेज मैं चाहता हूँ, हाउ आई वॉन्ट टू परसीव हिम एक्चुअली।
1: एब्सोल्युटली। एंड उसमें सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो जो है जैसे हैं उनको अगर राइट परसीव करना है तो वो तो एक आत्मा है। अगर लेबल्स के आधार से परसीव करना है तो वो भी सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो एक आत्मा है एंड अ प्योर सोल। सो इफ आई वॉन्ट टू हैव द ट्रू परस्पेक्टिव देन इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और एक बार सोल कॉन्शियसनेस के आधार पर रिश्ता बना तो फिर उसमें तो कोई दर्द की मारचनी नहीं। लेकिन ये सारे जो हमारे औरों के साथ रिश्ते हैं, इनको निभाना, इनको स्मूथ करना, इसमें एनर्जी फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रिश्ता किसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा? अपने आप के साथ। आई विद माई सेल्फ। आज मेरा सारा अटेंशन इन रिश्तों पर है, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, सब कुछ इज़ फॉर समवन एल्स, बट डू आई लव माई सेल्फ? क्या मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो रिश्ता मेरे से नहीं जुड़ा तो औरों के साथ जुड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अपने आप से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, अगेन यू नो, अपने आप से रिश्ता इन द सेंस, अगर मैं कॉन्शियसनेस पे भी जाती हूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आई द सोल क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद आई द बॉडी?
1: नो, दिस इज नॉट आई द बॉडी।
0: हाँ,
1: दिस इज तो माई बॉडी।
0: सो आई द सोल, आई वो चैतन्य शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति किसके साथ रिश्ता क्रिएट कर, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ?
1: नहीं, रोल के साथ भी नहीं रिश्ता। रिश्ता तो अपने आप के साथ, रिश्ता रोल के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, रिश्ता अपने आप के साथ। वो मतलब क्या? आप देखो, आत्मा के अंदर ये एक ताकत है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्फ। हमने पहले भी देखा कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू आई क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू, वेयर हियर। सिमिलरली व्हेन आई थिंक अबाउट माई सेल्फ
0: I create an image of myself. Okay.
1: I will create a relationship with myself. Self हम यहाँ बोल रहे हैं वो चैतन्य शक्ति को. तो when I the self reflect on myself, I am a pure soul. This is giving vibrations of purity to myself. You are a pure soul. This is giving vibrations of purity to you. I love you is giving vibrations of love to you. I am a loveful soul. Is giving vibrations of love to myself. तो इसलिए जब तक मैंने अपने आप को वो एनर्जी नहीं दी तो वो एनर्जी मैं औरों को दे पाऊँ वो पॉसिबल नहीं
0: होगा. तो अच्छा ये जो मनन करना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया
1: कुछ भी अपने बारे में कि ये जो दर्द हुआ ये क्यों हुआ ये दर्द के जिम्मेवार कौन था ये सारा जो अपने आप के साथ जो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ कि आपको दर्द हुआ क्यों हुआ आपके दर्द का कारण कौन चलो कोई बात नहीं ये करने से ये ठीक हो जाएगा सो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन विद यू तो जब अपने आप से रिश्ता जुड़ेगा फिर औरों के रिश्ते तो बहुत ईजी हो जाएंगे क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना इज मेडिटेशन. What is meditation? Meditation, first stage क्या है? Self-awareness. Meditation सबसे पहले, क्योंकि हम meditation ये शब्द बार-बार कहते आए हैं, और हमने बार-बार कहा कि हर एक घंटे के बाद meditation, रोज सुबह उठकर meditation, या रात को सोने से पहले meditation, तो meditation का first result जो मुझे मिलेगा, वो होगा self-awareness. और self-awareness ये, कि मेरी कौन सी thoughts and feelings wrong हैं, कौन सी राइट है
0: मेरे लिए
1: या वेरी इम्पोर्टेंट कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है लेकिन उनके लिए देखना तो पड़ेगा ना. इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस मुझे ये रियलाइजेशन दिलाती है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट भी कौन कर रहा था.
0: मैं कर रही थी
1: आज दिन तक क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ. तो अपने आप से रिश्ता क्या था मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं खुद ही यहाँ बैठ कर क्या क्या क्रिएट कर रहा
0: है. इनफैक्ट मुझे अभी तक यही पता था अपने साथ ये रिश्ता मुझे ये चाहिए मुझे ये तकलीफ दे रहा है मुझे वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं
1: क्योंकि मेरा रिश्ता उन सब के साथ था. तो मैं उनको देख सकती थी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या क्या दे रहे हैं मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो मुझे अपने तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा. द सेल्फ अवेयरनेस मतलब यू नो गोइंग थ्रू द डे विद दिस अवेयरनेस कि ये सारी जो थॉट्स और फीलिंग्स है ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. ऑफिस में बहुत बड़ा केओस हो जाए काम नहीं हो रहा आई एम अवेयर कि प्रोजेक्ट खराब हो रहा है लोग ठीक से काम नहीं कर रहे मेरा भी कंप्यूटर क्रैश हो गया आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस आई एम आई अवेयर कि ये सारी सिचुएशन में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है ये ध्यान रखना. मुझे ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर को क्या हो गया मुझे ये अवेयरनेस है कि लोगों को क्या हो गया मुझे ये अवेयरनेस है कि यहाँ क्या हो रहा है. तो बेसिकली उस पर ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है. सो जब सारा दिन यहाँ देखना शुरू कर देंगे तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी. एंड फिर उनमें से कौन सी थॉट्स और फीलिंग्स मेरे लिए हेल्दी हैं और कौन सी मेरे लिए ही डैमेजिंग है क्योंकि हमने कितनी बार देखा कि अपना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं थी तो क्रिएट करते ही जा रहे थे. लेकिन जब अब ये जागृता आ जाएगी कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ फिर फिनिश करने का प्रोसेस अपने आप आ जाएगा. अवेयरनेस होती है तब हमें रियलाइज होता है कि मैं लेबल्स नहीं हूँ मैं रोल्स भी नहीं हूँ मैं रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ मैं हूँ कौन.
0: मैं वो चैतन्य शक्ति
1: मैं वो चैतन्य शक्ति
0: और जहाँ मैं पावरफुल सोल कहता हूँ ना समवेयर इट एक्चुअली एम्पावर्स यू
1: एब्सोल्युटली
0: यू नो लाइक इट्स एंड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ रियलिटी
1: एब्सोल्युटली
0: व्हेन यू सी इट हैपनिंग एक एक चीज को जब आप जीतना शुरू करते हैं इट गिव्स यू दैट रियल इमेंस हैप्पीनेस.
1: लेकिन जीतने वाले को ये पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे पास शक्ति कौन सी है. See, the whole process is not going like this, लेकिन it's going like this. तो मुझे स्मृति आई आई एम अ पावरफुल सोल मुझे स्मृति आई कि हर थॉट हर फीलिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ. देन मैं सारा दिन कल ऑफिस में उस अवेयरनेस से साथ रहा मुझे स्मृति आई कि भले आप कुछ भी कहें मेरा दर्द मैं क्रिएट कर रहा हूँ. अब मैं उस अवेयरनेस में चल रही हूँ सारा दिन ऑफिस में. सो वॉट विल हैपन टू द रिलेशनशिप्स वो तो अपने आप ठीक होते जाएंगे क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि सारी एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है. तो मुझे ध्यान किसका रखना है अपना रखना है. तो मेडिटेशन में जो सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता है ये कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक यू नो इनर कनेक्शन, जो हम आज दिन तक सुनते आए थे कि अपने आप को देखना, अपने आप को खोजना, लेकिन आई डोंट थिंक वी वर वेरी श्योर व्हाट वी वर लुकिंग फॉर.
0: लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी गोइंग इन मींस लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड.
1: देखना मतलब सिर्फ धीरे धीरे ये संकल्पों को देखना, फीलिंग्स को देखना और इस स्मृति से देखना कि हम क्रिएट कर रहे हैं. शुरू में कई बार ये हो सकता है कि हम सोचे नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं है. अभी सिर्फ देखते जाए, सिचुएशन आने दो, सिचुएशन आएगी, आप अपने रिस्पॉन्स को देखो और फिर देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था रिस्पॉन्स. इट स्टार्टेड विद अ थॉट. प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपसेट हो रहे हैं, आस्क योर सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्स. अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो आस्क योर सेल्फ ये किसने क्रिएट किया. दिस इज अवेयरनेस. फिर धीरे धीरे रियलाइज होगा मैं ही तो डिस्टर्ब हुई थी, नेक्स्ट टाइम लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. थर्ड टाइम फोर्थ टाइम करते करते मुझे रियलाइज हो जाएगा कि कंट्रोल का स्विच कहाँ है, यहाँ है, बाहर नहीं है. पहले हम वेट कर रहे थे बाहर ठीक हो
0: तो मैं ठीक हो जाऊंगी,
1: मैं ठीक हो जाऊंगा.
0: वेरी ट्रू. ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा.
1: अगर कोई बहुत डिस्टर्ब होता है ना ऐसे वायुमंडल में, बच्चे मान नहीं रहे या काम ठीक से नहीं ऑफिस में हो रहा, उनको आप बोलो अच्छा दो मिनट आप तो बैठो सब ठीक हो जाएगा. बोले पहले सब ठीक तो हो जाने दो
0: तभी मैं बैठे.
1: फिर मैं बैठ जाऊँ. सो वी आर लुकिंग एट इट ऑलवेज द अदर वे अराउंड. तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन. मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, परिस्थिति अपने आप हो जाएगी. तो मेडिटेशन का ये सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता. एंड सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें बेनिफिट मिलता दैट इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल,
0: यस, यू नो अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा.
1: देखो आज दिन तक कंट्रोल शब्द जैसे ही हम सुनते थे द इमेज दैट कम्स इज लाइक यू नो होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ओवर पावरिंग समथिंग या किसी चीज़ को बड़ा टाइट पकड़ कर रखना. लेकिन जहाँ अंदर की बात आती है, इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती, वहाँ कंट्रोल मतलब एक्चुअली क्या, टू लेट गो. टू लेट गो. इफ आई वांट कि मेरे मन की स्थिति इन कंट्रोल चले
0: तो जाने देना.
1: तो जितने डैमेजिंग थॉट्स हैं, हर्ट वाली थॉट्स हैं, लेट देम गो. थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं. और जैसे ही हम इस अवेयरनेस से चलते हैं कि आई हैव टू लेट गो, ये थॉट ये बैगेज मैंने पकड़ा है, लेट गो लेट गो, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता जाता है. तीसरी बात जो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट करती है वो होता है कम्युनिकेशन पर. हमारे जो कम्युनिकेशन है, आज दिन तक हम समझते थे कम्युनिकेशन इज एट वर्ड लेवल, कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक दूसरे के लिए करते हैं वो कम्युनिकेशन है. अब हमें समझ में आता कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के आधार से होता है कि मैं एनर्जी जो आपको ट्रांसमिट करती हूँ. अब मुझे अपने वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. पहले क्या
0: कहना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू.
1: कई बार क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बोलते कुछ और हैं तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है. सपोज आई डोंट लाइक वॉट यू आर वेयरिंग राइट नाउ बाई चांस, बट आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वट एम आई ट्राइंग टू डू. कि मेरी थॉट कुछ और है, अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रही हूँ.
0: और फिर उसमें डर रहता है कि कहीं निकल ही ना जाए कि अच्छा ये रंग जो है ना कभी भी निकल सकती है वो.
1: अब कम्युनिकेशन पर कैसा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तनाव क्रिएट होता है क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है. अब इसी में अगर कभी गुस्सा आ गया मुझे गलती से तो वो कन्वर्टर काम करना
0: बंद कर देगा और मैं कहूँगी आप तो गंदे लग रहे थे, मैंने फिर भी कहा कि आप अच्छे लग रहे थे,
1: तो वो सारा ऐसे का ऐसे बाहर निकलने लगता है और फिर हम कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुँह से निकल गया. क्यों? क्योंकि मेरा कन्वर्टर बीच का काम करना बंद हो गया था. तो कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. वी आर सेइंग के लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हम कहते मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ. व्हाई, वेयर इज द प्रॉब्लम? यहाँ क्लैरिटी नहीं है. यहाँ

0: भी लग रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं लेकिन अच्छा है, बोलना चाहते हैं बहुत बहुत अच्छा है, तो बाहर रिजल्ट क्या निकल कर आएगा?
1: कंफ्यूजन,
0: यस। एंड फिर सामने वाले को आप भले बहुत बहुत अच्छा बोलो, लेकिन उनको फिर भी वाइब्रेशंस कौन से आ जाएंगे? नहीं, समथिंग इज़ नॉट कम्फर्टेबल। और फिर हम कहेंगे मैंने इतना अच्छी तरह से बोला, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो तो मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन कौन से ट्रांसमिट की। तो मेडिटेशन, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पर हमें वर्क करने में मदद करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बार भाई बहने जब ब्रह्मा कुमारीज में आश्रम में आते हैं या माउंट आबू में आते हैं, तो कहते हैं यहाँ सारे भाई बहने ऐसे ही बात करते हैं क्या? दे आर ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेरी स्लो एंड यू नो हाउ कम दे डू इट? दे नीड टू नो दैट नो वन हैज़ बीन ट्रेन्ड हाउ टू डू इट। मैनी पीपल ऑल्सो आस्क मी, आपको ट्रेनिंग मिला ऐसे कैसे बोलना है, इतना धीरे आप लोग सब बहने कैसे बोलते हो? नो, नो वन हियर हैज़ वर्कड एट द लेवल ऑफ द वर्ड्स, लेकिन एवरी वन इज़ वर्किंग एट द लेवल ऑफ द थॉट्स। वो वर्ड्स तो अपने आप हो जाते हैं। आजकल बहुत एम्फेसिस है कम्युनिकेशन स्किल्स पर, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, आपकी जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस में, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम सब उसको वर्ड लेवल पर देख रहे हैं। और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल, थिंकिंग में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, थिंकिंग में जब तक फोकस नहीं आएगा, थिंकिंग पर जब तक अटेंशन नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इट विल नॉट हैपन। वो होगा भी अगर आप ट्रेन करके उसको करेंगे भी, इट्स आर्टिफिशियल, क्योंकि वाइब्रेशन तो फिर भी कुछ और ही है। लेकिन अगर उसको रूट लेवल पर, थॉट लेवल पर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, फोकस कर देंगे, यू नो क्लियर कर लेंगे और स्लो डाउन कर देंगे
1: थोड़ा। एक्चुअली यू नो जहाँ हमारा थिंकिंग पे अवेयरनेस भी आ जाती है, हम कभी भी कुछ नहीं ऐसा बोल रहे होते जो हम नहीं बोलना चाहते।
0: एब्सोल्युटली,
1: हमारा ये कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर।
0: दैट्स व्हाई वी सेड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, कम्युनिकेशन। सी, ऑल थ्री आर फॉलिंग इनटू प्लेस। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं सकती अब, क्योंकि एक तो आप थॉट्स, अभी क्या हुआ था, वो कबर्ड बंद था, बहुत सारी थॉट्स वहां पे थी, वो कब खुल जाता था और बाहर निकल जाता था हमें ही नहीं पता चलता था, लेकिन अब वो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट ही नहीं होने वाले हैं, तो बाहर निकलने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ तक कि भी अगर आपको किसी को डिसिप्लिन करना है, बच्चों को करना है, ऑफिस में अपने स्टाफ को करना है, क्योंकि एक टीम है, तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको करेक्टिव मेजर्स तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन सोच समझ कर अगर बोला गया होगा एक एक शब्द, और बिना रिएक्ट किए बोला गया होगा, देन इट्स गोइंग विद द राइट एनर्जी। हम जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को आपकी ये पर्टिकुलर बात नहीं ठीक लग रही है, इट कैन बी ट्रू, बट आई हैव टू डू इट व्हेन आई एम स्टेबल एंड व्हेन आल्सो यू आर स्टेबल।
1: यस, यू नो, एंड इट हैज हैपेंड, यू नो, मैंने इसको पूरा ट्राई करके देखा कि डेफर कर दो। मैंने एक घंटा, आधा घंटा डेफर किया, उस आधे घंटे में मैं कूल ऑफ हो गई, आई कुड सी द सिचुएशन।
0: एब्सोल्युटली सिंपल है। आप देखो, अगर मैं यहाँ से चलकर आ रही हूँ और मुझे चलते चलते यहाँ चोट लग जाए और मेरा पैर को दर्द होने लगे, अब आप क्या करेंगे तुरंत?
1: हाँ, मैं आपको सहलाऊंगी।
0: पहले आप मुझे उठाएंगे, फिर आप यहाँ ठीक करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, दर्द करूंगी, फिर आप मुझे समझाएंगे। आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि जब मुझे यहाँ चोट लगे है, ऐसे थोड़ी चलना चाहिए था, ये कोई चलने का तरीका है? उससे क्या होगा, अगर आप मुझे बेस्ट मैसेज भी दे रहे हैं मेरे लिए, मेरे फायदे की भी बात कर रहे हैं, मैं सुनने की हालत में कहूँ, मैं तो दर्द को देख रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है कि कोई मुझे उठाए, उस समय आप बोलो चलने का तरीका ये था, आई हैव नॉट हर्ड यू। एंड मोस्टली क्या होता, जब सामने वाला दर्द में है, तब हम उसको सारा मैसेज दे रहे होते हैं कि राइट तरीका क्या है, उस टाइम उसने शायद सुना ही नहीं।
1: इट गोज ऑन द डेफ इयर्स एक्चुअली।
0: एंड जब वो ठीक हो जाता है, तब नहीं बताते हैं।
1: और तब क्या है, तब तक हम भी तो दर्द में ही होते हैं। जब हमारा कोई नुकसान हुआ, तो तब हम जब समझा रहे होते हैं, बेसिकली हम खुद दर्द में होते हैं।
0: यस, सो व्हाट विल हैपन, तो अब उसमें क्या हुआ, मैं गिरी तो मैं दर्द में, आपको गुस्सा आया मुझे ऐसे देखकर, तो आप दर्द में, और इस दर्द में, मुझे दर्द में आप समझाते हैं कि चलने का तरीका क्या है। इट वोंट वर्क। दिस हैपेंस इन द ऑफिस। अगर किसी से गलती हो जाती है, आप टीम लीडर हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम लीडर कि सामने वाला ऑलरेडी दर्द में है, उसको पता है कि

0: गलती हो गई है, गिल्ट है, ऑलरेडी स्केर्ड, फियर, एवरीथिंग, उसमें हम और उस समय उसको सारा डांटते हैं. लीडर, राइट कम्युनिकेशन स्किल, उस समय आप उसको एम्पावर करें, उसके कॉन्फिडेंस को जो बिल्कुल उस समय क्रैश हो गया है फिर से उधर लेकर आए, एंड देन व्हेन बोथ आर स्टेबल देन टॉक. पेरेंट एंड चाइल्ड, दिस इज हाउ इट हैज टू हैपन. आज बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं या शायद वो फेल हो गया है, उस दिन डांटना जस्ट डजंट वर्क. वो तो ऑलरेडी इतने दर्द में है, एक दर्द में व्यक्ति को और दर्द देना,
1: क्योंकि हम दर्द में आए ना तो मैं किस पे निकालूं.
0: बट हाउ फेयर इज इट कि वो बच्चा अभी तो ऑलरेडी दर्द में है ना, उसने क्लास को फेस किया कि वो फेल हो गया, वो गिल्ट में है, वो हमें नहीं फेस कर पा रहा, वो तो अपने को भी नहीं फेस, उसमें उसको और डांटते हैं. जितने बच्चे आज दिन तक फेलियर के बाद सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं?
1: फियर
0: ऑफ फेसिंग द पेरेंट्स. हाउ मच फियर दिस इज डीप रूटेड. क्यों? वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ स्टेट ऑफ पेन. सो वो कम्युनिकेशन कभी भी राइट रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगी. तो मेडिटेशन से, क्योंकि माइंड में अवेयरनेस आ गई, कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल सिर्फ मन पर नहीं आया, फिर सारी कर्म इंद्रियों पर आ गया. तो मन पर कंट्रोल आया तो मुख पर भी तो कंट्रोल आ
1: और
0: गया.
1: वो कंट्रोल नहीं हुआ ना, मतलब
0: इट्स अ नेचुरल थिंग ना,
1: वो अपने आप ही हो गया वो.
0: जैसे आपने कहा कि मैं उसको डेफर कर सकती हूँ, अगर पहले रियलाइजेशन नहीं था तो कोई बोले कि अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद बोलो, तो नहीं.
1: ओ, कैसे 1 घंटे तक, क्या मतलब क्या करेंगे फिर 1 घंटे तक?
0: और वो रियलाइजेशन भी नहीं होता था, हमें लगता था अभी ही बोलना है, लेकिन दिस इज अवेयरनेस ही, दिस इज द जर्नी. अब अवेयरनेस है, हम कहते हैं मुझे पता है ये हो गया है, बट वील टॉक अबाउट इट लिटल लेटर. एंड वो जब फिर आप डायलॉग करोगे, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा, बिकॉज एनर्जी जो फ्लो कर रही होगी दैट विल बी पॉजिटिव.
1: एंड देन विल बी एक्चुअली लुकिंग फॉर रीजंस.
0: एब्सोल्युटली.
1: व्हाई दैट हैपेंड, यू नो, बिकॉज हम इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहे होंगे.
0: एब्सोल्युटली.
1: हम उस वक्त बर्सर्क होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं.
0: तो लेट्स रिमेम्बर कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए, वेदर इट्स इन ऑफिस और एट होम, दैट्स नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट. लेट एवरीवन गेट ओके. उस समय नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. जस्ट लेट एवरीवन गेट ओके, वो भी जिनसे हो गया है, एंड मैं भी जो हर्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हर्ट को ठीक करना है, फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा.
1: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने सेल्फ के साथ रिश्ते के बाद की रिलेशनशिप अपने साथ, और उसमें जहाँ जब हमने समझा तो मेडिटेशन एक्चुअली डजंट लुक लाइक मेडिटेशन, यू नो, इट्स अ सेल्फ टॉक बेसिकली. और वो जो रिश्ता है, तो हम थोड़ा सा अनुभव क्यों ना अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें उसका.
0: सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ एक मिनट्स अपने साथ इस तरह से हम बैठ सकते हैं, एंड जस्ट गिव द राइट काइंड ऑफ थॉट टू माई सेल्फ. ना परिस्थिति के बारे में सोचना है, ना लोगों के बारे में सोचना है, ना अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक, वो तो सारा दिन ही चलती रहती है, बट द राइट काइंड ऑफ थॉट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ. लेट्स ट्राई इट राइट नाउ. अपने आप को देखें इन रोल्स, रिलेशनशिप्स, लेबल्स, इन सब से परे, इन सब को निभाने वाला मैं, आई द एनर्जी विच इज मास्टर ऑफ दिस बॉडी, चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि की मालिक, कर्म इंद्रियों की भी मालिक, आई टाइनी स्टार शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. अपने आप को विजुलाइज करें कि यहाँ से बैठकर मैं इन कर्म इंद्रियों को और इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, मैं चलाने वाली शक्ति हूँ. आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, एंड टुडे आई चूज हैप्पीनेस. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, मैं कैसे रहूंगी स्टेबल, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम अ हैप्पी बींग, दिस इज ऑलरेडी माई नेचर. अब मुझे आज सारा दिन में अपने संबंधों में इसे सिर्फ एक्सप्रेस करना है, इसे मांगना नहीं है, ढूंढना नहीं है, छीनना नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैं हूँ ही। आई एम अ हैप्पी बींग, वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस मुझ आत्मा से निकल कर चारों तरफ फैल रहे हैं। एंड टुडे आई जस्ट नीड टू टेक केयर कि इस स्थिति को रखते हुए मुझे हर संबंध और कर्म में आना है। ओम शांति,
1: ओम शांति। और जिस तरह से आज हमारे साथ के रिश्ते को ही आपने बताया, और कहीं ना कहीं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं, तो वो सब कुछ हमें करना नहीं होता जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है जीवन जीने का सही तरीका ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करें। आई थिंक इट स्टार्ट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली, वी बिकम पावरफुल, वी स्टार्ट रियली बिकमिंग पावरफुल। थैंक यू सो मच सर शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए। हम शेरते हैं, कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। जिन रिश्तों को हमने समझा देखा उसमें एक महत्वपूर्ण रिश्ता अभी और है, और वो है परमात्मा के साथ रिश्ता। उसको भी साथ मिलकर खंगालेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, सन 1909 उन दिनों नवाब राय के नाम से उर्दू में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, सोजे वतन, अर्थात देश का दर्द। 5 कहानियों का ये संग्रह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उन दिनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशभक्ति की बात करना जुर्म था। इस संग्रह की एक कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन का आखिरी वाक्य था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ऐसे वाक्य लिखने वाले को अंग्रेज सरकार कहां बर्दाश्त कर सकती थी। खुफिया पुलिस ने खोज करना शुरू किया और पता लगाया कि नवाब राय नामक किसी लेखक ने ये पुस्तक लिखी है। लेखक की खोज हुई और नवाब राय को हमीरपुर के कलेक्टर ने तहसील कुलपहाड़ बुलवाया और कहा, खैर मनाओ कि अंग्रेजी अमलदारी में हो, मुगल साम्राज्य का जमाना होता तो हाथ काट लिए जाते। नवाब राय उर्फ मुंशी जी खून के आंसू पीकर रह गए। सरकार ने किताब की सारी प्रतियां बुलवा ली और उन्हें आग के हवाले कर दिया। दुखी मुंशी जी ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया, वही नाम जिससे वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मानव मन के अप्रतिम चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के पास लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप को खोने वाले प्रेमचंद 15-16 साल की आयु से ही गृहस्थी की उलझनों में फंस गए। 2 सौतेले भाई, सौतेली माँ और अपनी पत्नी के परिवार को पालना उनके लिए कठिन कार्य हो गया था। वे गांव में रहते, ट्यूशन करते और शहर पढ़ने जाते। 5 मील वापस आकर रात को कुप्पी जलाकर फिर पढ़ने बैठते। कॉलेज में भर्ती होने के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वे बनारस शहर में रहने लगे। 5 रुपए की ट्यूशन की और एक वकील के यहाँ अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहने लगे। उनकी दिनचर्या थी खुद खाना पकाना और दिन भर उपन्यास पढ़ना। ये उपन्यास प्रेमचंद के दुखी जीवन के साक्षी थे। वे मुसीबतों में उन्हें ढाढ़स बंधाते थे। कुछ देर के लिए जीवन की कठिनाइयों को वो भूल जाते थे। ये 19वीं सदी का आखिरी साल था। इस बीच उनकी मुलाकात एक मामूली स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसने उन्हें 18 रुपए महीने पर अपने यहाँ मास्टर रख लिया। ये प्रेमचंद का 20वीं सदी और अपने नए जीवन में प्रवेश था।

अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमचंद ने गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि कई जगह पर रहकर अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान उन्हें पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के दुख दर्द का गहरा अनुभव हुआ। महोबा में वे 6 साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से रहे। इस दौरान स्कूलों का दौरा करते हुए वे अपने उपन्यास और कहानियों के पात्रों को अपनी स्मृति में सहेजते रहे। उनका एक उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। प्रेमचंद जी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियों का अनुवाद भी किया और फिर सन 1907 में कहानी लिखना आरंभ किया। तब तक पहले विश्व युद्ध का वातावरण बनने लगा था। प्रेमचंद समझ गए थे कि इस युद्ध की तैयारियों का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युद्धकाल में ही उन्होंने अपना महान उपन्यास सेवा सदन लिखा। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी तरह तमाम पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। ये उपन्यास उन्होंने पहले उर्दू में लिखा था, बाद में इसे हिंदी में छपवाया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने प्रेमाश्रम पूरा किया, जिसके बारे में आलोचकों ने लिखा कि प्रेमचंद का हृदय संकुचित राष्ट्रवाद से ऊपर था। वो जानते थे कि इंसाफ और नई जिंदगी के लिए आम जनता जो लड़ाई लड़ रही है, हिंदुस्तान का स्वाधीनता आंदोलन उसी का हिस्सा है। वो हिंदुस्तान के लोगों में एक नया भाव पैदा होते हुए देख रहे थे। दुनिया के तमाम मेहनत करने वाले लोग भाई भाई हैं। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद हमें ठेठ किसानों के बीच ले जाते हैं। उनके अलाव, उनके खेत और ताल, उनके अखाड़े और लावणी ख्याल, उनके अंधविश्वास और नए जीवन के कसमसाते हुए भावांकुर, प्रेमाश्रम में ये सब कुछ सजीव है। ये उपन्यास असहयोग आंदोलन के बाद छपा, किंतु फिर भी इसमें प्रेमचंद का गंभीर चिंतन, उनके ऊंचे विचार, एक नई मनुष्यता, एक नई नैतिकता का चित्रण दिखाई देता है, जो हिंदुस्तान के किसानों में किरण की तरह फूट रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे अध्यापन के साथ पत्र पत्रिका में संपादक के रूप में काम करने लगे। इस समय सन 1929-30 में वे माधुरी का संपादन करते थे, जिसने हिंदी की अपूर्व सेवा की। किंतु राष्ट्रीय आंदोलन का साथ देने वाले नए जनवादी विचारों की समर्थक पत्रिका की खोज में उन्होंने सन 1930 में हंस का प्रकाशन आरंभ किया। हंस पत्रिका का जन्म स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति के साथ हुआ, इसलिए अंग्रेज हुकूमत की कोप दृष्टि इस पर पड़ी, क्योंकि प्रेमचंद ने इसे स्वाधीनता संग्राम का सबल सैनिक बना दिया था।

प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और उनकी कहानियों में आम आदमी का दर्द साफ देखा जा सकता है। उनके पात्र समाज के मध्यम वर्ग, गरीब तबके के संघर्षशील पात्र हैं और वो राष्ट्रवाद में अपना भविष्य देखते हैं। उनकी कहानी समर यात्रा में एक बूढ़ी महिला नोहरी स्वाधीनता सेनानियों के स्वागत में उल्लास प्रकट करती है। अलौकिक आनंद की रेले में वो अपना सारा दुख संताप भूल जाती है। लोग उसे रोकते हैं पर नोहरी कहती है, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा दुख दर्द हरने के लिए ही तो इन्होंने ये परंठाना है, इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है। अब तो जोर जुलुम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें तो पेट की आग ने जलाया है। क्या किसी ने 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? धन है महात्मा और उनके चेले भी कि दीनों का दुख समझते हैं और उनके उद्धार का जतन करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गाकर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कार्य की आवश्यकता नहीं थी। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते हैं। भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृष्टि की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास रंगभूमि में दिखलाया कि जनता अब भी लड़ रही है, वो हारी नहीं है, वो जीतेगी। गोदान उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों और किसानों की एकता की तरफ संकेत किया और किसानों के महाजनी शोषण का चित्र खींचा। जबकि कर्मभूमि में खेत मजदूरों की भूमि समस्या पर उन्होंने अपनी लेखनी केंद्रित की और लगानबंदी की लड़ाई को मुख्य लड़ाई बताया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जो संघर्ष स्वाधीनता आंदोलन के रूप में दिखाए वो सब हमारे सामने आए। अपने लाहौर के भाषण में बुद्धिजीवियों से उन्होंने कहा, इंटेलिजेंसिया में जो कुछ भी शक्ति और प्रभाव है वो जनता से ही आता है। जनता से साहित्यकार ताकत पाता है, इसलिए अपनी ताकत पहचान कर उसे जातीय पुनर्जीवन के काम में आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, उसके आगे आगे चलने वाला एडवांस गार्ड है। वो उस विद्रोह का नाम है जो मनुष्य के हृदय में अन्याय, अनीति और कुरीति से होता है। राष्ट्र का बल वो अपनी राष्ट्रभाषा में ही देखते थे, इसीलिए वे निडर होकर जनता के पक्ष का समर्थन करते थे। जीवन का यथार्थ उनके चित्रण का मूल मंत्र है। वे हमेशा कहते रहे कि साहित्य का

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन का
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं, इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फर्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये देखा कि यही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है, तो लगा कि इस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीखकर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं, यानी कि जो अन्न है, उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए सही खाना, डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहाँ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हैं। ये जो मन की बात थी उसका, और खासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो लाभ है हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं।
1: जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे, तो उस पर भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भल ज़्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, उल्टा ज़्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से ही प्रोटीन की आवश्यकता है, और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत
0: कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम
1: बीमार भी होने लगे,
0: हम वो सफर करें। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेम्बर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहाँ हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है, कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूजफुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है?
1: कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं, तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है, जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते और लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है, तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करते और उसके कारण आंसू आने लगते। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं वो दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वॉलेटाइल एसिड्स आँखों में गए और इतना स्टिम्युलेशन हुआ। जब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी, 10 times more। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिम्युलेट करेंगे, तो वह स्टिम्युलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी, तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें यह देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे फ्रूट्स के, सब्जियों के, और आपको बेनिफिट्स होंगे। तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी।
0: डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहाँ तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच
1: पर आल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको।
0: अच्छा,
1: जो नर्व्स की बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक, वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं। बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ले इस पर।
2: लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी।
1: हाँ, अल्टीमा भी ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है।
2: कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर इतना 10% कम हुआ लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो वी आर स्टिल 10% अप ना। तो दैट वी हैव टू
1: आल्सो देखना, ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे।
0: हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखें, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता। जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं, सी दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें।
2: जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा। नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग, जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स। तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होके परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं, दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स वाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी। राजयोग मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें जब भोजन बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं they will be out, and उसके लिए थोड़ा सा और करना, the kitchen should be very clean, the environment should be very pure, आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा atmosphere उस तरह से create हो जाता है कि thoughts आपकी automatically फिर उसी तरफ चलती हैं। और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, don't go to cook, sit with yourself, resolve the issue and then go into the kitchen. Otherwise, गुस्से वाला खाना बनेगा।
1: जो शिवानी बन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ। इससे पहले होता था ना स्नान आदि करके फिर ही किचन में जाते थे, तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है फिर ही खाना बनाना है।
0: अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हैं हम, सारी चीज़ें ज्ञान समझने के बाद, सिस्टर शिवानी बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती
1: है? तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को बोले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है। मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे। लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है। ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो। तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे, तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ। तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है। आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ। फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए। और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे। कहते बस थोड़े ही दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा।
0: दिस इज इवन माई एक्सपीरियंसेस, मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन, हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील जब मैं बात कर रही हूँ, आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था। द मोमेंट आई एक्चुअली, और अब मैंने रियलाइज़ किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था, लेकिन व्हेन आई चेंज दैट एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है।
2: बिकॉज़ अब औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे।
0: हाँ, शायद
2: सी एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी।
0: आपको हर चीज पे एफर्ट था
2: क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज जो बनी है, सपोज 4-5 चीजें बनी है, तो हर चीज में से थोड़ी थोड़ी थोड़ी एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं, फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज योर हाइएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीजों में डाल रही हूँ। ठीक है, दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो दो चीजें हैं ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं। सपोज दो लोग किचन में बना रहे हैं, कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देता, दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न। सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं, सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं, सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं, एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं, तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन. 10 मिनट ही खाना खाना है, वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन. नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया. ये छोटी छोटी छोटी छोटी बातें हैं.
1: राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे.
0: नहीं तो कभी ज्यादा
1: करते हैं. हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा, डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी. तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है, केवल बात करनी है पहले ही कर लो या उसके बाद करो, बेस्ट है. तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट होगी.
0: एक और चीज मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था. बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंड सेट. यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी निकलना है, तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है. इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फर्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का. अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता. लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट. लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंग्जाइटी रहती है कि अब ये खा ले सही, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करूं, ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ.
2: फियर की ना.
0: हाँ,
2: फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन.
0: बना दूंगी चला. हाँ. ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाए, ओहो चले ना जाए ये लोग, सो दीज वाइब्रेशंस.
2: और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, तब कैसे खिलाते हैं? कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं. कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा, क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए,
0: बच्चा रो रहा,
2: दूध चला जाए. पर बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाए, ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितना इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है. तो कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर मार पीट करके खाना नहीं खिलाना
0: तो चाहिए. बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं. हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले.
1: उसकी मन की स्थिति को ठीक करो. आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया. बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो. अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे. फिर भी जो दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है. फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज, जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, वो कोई तरीके से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी.
0: एंड देन बिना, अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे. गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे
2: ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है वो उसके मन के और तन के लिए दोनों के लिए बहुत असरदार है.
0: दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे. पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड. या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं, कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं. फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस इफेक्ट करते हैं.
1: दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है. अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. जैसे खाने की बात, कि मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं. और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भले आत्मा ही कराती है परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए वह बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियाँ देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए।
0: ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं?
1: हाँ, तो मेन कारण तो यही है, सभी को ये पता है कि टोबेको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने एक दो बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में ही बहुत बड़ी कमी है।
0: तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितने कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाते, निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज है, उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है?
1: या डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है, या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज के पेशेंट है पता है फिर भी खा रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई, पता है कि भाई नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना और फिर टोटली मैं समाप्त कर दूं, और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके होता है, शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ कि जब आप खाली पेट हो, तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा।
2: हम में से कितने ये खा रहे हैं?
0: और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं,
1: वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई,
0: लेकिन वो भी हार्मफुल
1: है।
0: हम कितने अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन
1: तो वो आदत हो गई। हाँ
0: हाँ, तो वो सही नहीं,
1: सही
0: है,
1: बिल्कुल नहीं।
0: सिस्टर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए।
2: मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरी इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे, मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ वॉट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे तो उनको कैसे समझा पाएंगे। द एनर्जी वॉन्ट वर्क देन दैट साइड। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। सी इट्स अ लिटिल डीपर, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ का धन कैसे कमाया जाता है। बी वेरी केयरफुल।
1: आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो, वो सत्य भी है कि जब आपको जरूरत होती, कहीं बार मीठे की जरूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है उसकी जरूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो। आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में हैं, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है। अगर आप सही रूप से थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो, तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए।
0: एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज़ आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता, आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हमने बहुत सी बातें समझी, इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहाँ से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, ज़रा सोचना शुरू करें, ज़रा देखना शुरू करें, ज़रा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे। ओम शांति।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

माँ किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बाटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू
3: सिस्टर। बीइंग डिवाइन का के एपिसोड में सबसे अच्छी बात ये लगी कि पहले सबसे अपने आप को बॉडी छोड़ के सोल समझना है, जो कि मैं हूँ। और ओरिजिनली मैं हूँ ही प्योर,
4: राइट।
3: और सेम थिंग अगले को समझना है,
4: राइट।
3: ये बात डिस्कशन में और अंडरस्टैंडिंग में तो आ रही है, लेकिन लिविंग में, व्यवहार में थोड़ा सा
4: हम हर चीज को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम उसको इमिजिएटली होता हुआ देखना चाहते हैं कि अभी कोई बात आई और हमें इमिजिएटली ये याद हो। नहीं होगा इमिजिएटली, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
3: जिन चीजों को लगे जन्म जन्म मैल को जमने में, तो उसको साफ करने में,
4: कोई अगर जमीन पर भी दाग है, कई दिनों का है, कई सालों का है, तो ऐसे थोड़ी होगा अभी दवा डाली और अभी हट जाएगा। लेकिन जैसे ही दवा डाली और थोड़ा सा उसको स्क्रब करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़े दिन में वो दाग थोड़ा फीका होगा, फिर और तब ओरिजिनल निकल कर आएगा। सो व्हेन वी वांट इमीडिएट रिजल्ट्स ना, दैट ब्लॉक्स द जर्नी एक्चुअली, क्योंकि हम ये फिर रीअफर्म कर देते हैं, लिविंग में नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा, ये बात पढ़ने में ठीक है, सुनने में ठीक है, सारे दिन में कैसे याद रहेगा। कोई बच्चा पहले फर्स्ट आता था, क्लास में बहुत अच्छे नंबर आते थे उसके, अब वो फेल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों पॉइंट ऑफ नॉलेज है कि वो फर्स्ट भी आता था ये भी पता है, और वो अभी फेल हुआ वो भी पता है, ठीक है। अब अगर हम पहले सिर्फ उसके फेल होने पर फोकस कर रहे हैं, हम कहते ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, किसी ने धीरे से आकर कहा पहले फर्स्ट आया था, तो हम उसको मुड़कर देखते हैं और कहते हैं हाँ पहले फर्स्ट आया था, लेकिन अभी तो फेल हो गया ना। फिर हम फिर फेल पर फोकस करते हैं, फिर सामने वाला फिर धीरे से सुनाता है याद करो पहले फर्स्ट आया था,
3: उसमें फर्स्ट आने की कैपेबिलिटी
4: है, थी नहीं
3: है,
4: है उसका वो पोटेंशियल है। धीरे धीरे हम कहेंगे हाँ बात तो राइट है, पहले फर्स्ट आया था, अभी भी आ सकता है। इट विल नॉट हैपन इन द फर्स्ट थॉट ना, वी आर शिफ्टिंग आवर कॉन्शियसनेस। अब ये सेम एक्सरसाइज हमें अपने साथ पहले करनी है, दूसरों के साथ नहीं करनी है।
3: okay.
4: मैं कौन, मेरे ओरिजिनल संस्कार, फोर सेट ऑफ संस्कार तो हमने देख लिए, लेकिन फिफ्थ सेट ऑफ संस्कार विच इज ओरिजिनल एंड मोस्ट पावरफुल बट राइट नाउ मे बी लेसर यूज्ड। ओरिजिनल बहुत पावरफुल, लेकिन शायद अभी कम यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो संस्कार है, वो फोल्डर है, वो फाइल्स हैं कंप्यूटर पर। कई बार कोई फाइल्स कंप्यूटर पर हैं और हम भूल गए, तो हमने सोचा मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे वो फाइल चाहिए, चाहिए नहीं वो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें परमात्मा सिखाते हैं, जो राजयोग जिसका फाउंडेशन है, वो है तुम आत्मा की ओरिजिनल फाइल्स क्या हैं, ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, जो हम इस जन्म नहीं अनेक जन्म से भूले हुए थे। तो जो चीज भूली हुई है उसको यूज कैसे करेंगे, परमात्मा आकर क्या कर रहे हैं, आत्मा को याद दिला रहे हैं, फिर बताते हैं तुम कौन हो, तुम ओरिजिनली प्योर ब्यूटीफुल आत्मा हो। परमात्मा आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज बताते हैं, और वो ओरिजिनल क्वालिटीज एक या दो आत्माओं की नहीं, संत महात्माओं की नहीं, हर आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट.
3: बट एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं संत तो नहीं, मुझसे नहीं होता, अब इस उम्र में क्या करेंगे.
4: संत आत्मा किसको कह रहे हैं? हर आत्मा के पास 5 फोल्डर हैं. ठीक है, 5 फोल्डर हैं. पास्ट बर्थ, फैमिली संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, विल पावर से बने संस्कार, ओरिजिनल संस्कार. राइट. संत आत्मा हम किसको कहते हैं? और संत आत्मा हम किसी को भी कह सकते हैं. सारा दिन में किसी के अंदर भी जब हमें वो ओरिजिनल प्योरिटी दिखाई देती है, तो संत आत्मा है. बिल्कुल. संत आत्मा सिर्फ उसको नहीं कहते हम जो उस तरह के रोल में है, हम किसी को भी कह सकते हैं.
3: छोटे बच्चों को भी बोलते हैं.
4: तो संत आत्मा हमने किसको कहा जो अपनी उस 5th फोल्डर की फाइल्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं?
3: ओके.
4: उस आत्मा को हमने टाइटल दिया संत आत्मा. ये सिंपल है. अब उस 5th फोल्डर में फाइल्स कौन सी पड़ी हुई हैं? कौन सी पड़ी हैं? तो परमात्मा ने कहा हर आत्मा के अंदर 7 ओरिजिनल संस्कार हैं. मतलब हर आत्मा के 1 फोल्डर है जिसमें 7 फाइल्स हैं. वो 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से? हर आत्मा के पास प्योरिटी का संस्कार है. हर आत्मा ओरिजिनली पवित्र है, प्योर है. इफ वी जस्ट क्रिएट दिस थॉट, वी हैवंट येट यूज्ड द संस्कार, बट वी आर क्रिएटिंग दिस थॉट, मैं आत्मा प्योर आत्मा हूँ.
3: लेकिन इस वक्त तो नहीं है ना अगली प्योर आत्मा. प्योर मैं होली खेल के आया, इस पे सारे रंग लग गए, तो इस वक्त तो मेरी वाइट नहीं है ना, तो मैं कैसे पहचान लूँ उसको?
4: अभी आप होली खेल के आए, इसके ऊपर लाल, पीला, नीला, काला सब रंग है. और मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हूँ, आपके कुर्ते का कलर क्या है?
3: मैं बोलूंगा कलर व्हाइट था, लेकिन अभी
4: आप कहेंगे इस कुर्ते का कलर व्हाइट था?
3: ओरिजिनली तो व्हाइट ही था. बोलूंगा
4: आप कहेंगे इस कुर्ते का कलर व्हाइट है, अभी दाग लगे हुए हैं. आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपके कुर्ते का कलर क्या है?
3: व्हाइट.
4: व्हाइट बिकॉज यू हैव नॉलेज कि ये व्हाइट है, एंड यू ऑल्सो हैव नॉलेज कि ये जो कलर अभी लगे हैं ये अक्वायर्ड है. एंड तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज है, ये कलर हटेंगे और ये वापस व्हाइट हो जाएगा. तो आप कहेंगे ये कुर्ता व्हाइट है.
3: तब ऐसे भी मन करता है ना, जब व्हाइट कलर हटेंगे तब देखेंगे, अभी तो मैला है.
4: अगर आप सोचेंगे कि जब कलर हटेंगे तब देखेंगे, तो आप कलर हटाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे. कलर अपने आप
3: मैं
4: तो हटेगा.
3: दूसरे की बात कर
4: हम पहले अपनी बात कर रहे हैं. हमें अपने कलर हटाने हैं, ओरिजिनल कलर वापस लाना है. जब हम अपने ओरिजिनल कलर वापस लाएंगे,
3: तब मेरे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा.
4: तब हमारे चश्मे का कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संस्कार जिसके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे,
3: नजरिया बदल जाता
4: है. नजरिया बदल जाएगा. अब जैसे ही सपोज आपने ये किया कि आपके चश्मे का रंग बदला, इन द सेंस आपका संस्कार चेंज हुआ. सपोज आपके अंदर पहले डाउट करने का संस्कार है, सपोज, तो आप मुझे किस नजरिए से देखेंगे? डाउट करेंगे तो मेरे पास वाइब्रेशन कौन सी आएगी? डाउट की आएगी. जैसे ही मेरे पास डाउट की वाइब्रेशन आएगी, मेरा कोई ना कोई अक्वायर्ड संस्कार ही ट्रिगर होगा. अब आपने अपने रंग को हटाया, अपनी प्योरिटी के संस्कार को इमर्ज किया. प्योरिटी का संस्कार मतलब हर आत्मा के, फिर आप कैसे देखेंगे? आपको वो दिखेगी प्योर, क्योंकि प्योरिटी का संस्कार मतलब इम्प्योर थॉट क्रिएट नहीं कर सकता. प्योरिटी का संस्कार, प्योरिटी का संस्कार दूसरे के अवगुण नहीं देखेगा, विशेषताएं देखेगा. प्योरिटी का संस्कार किसी के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल हो नहीं सकता. प्योरिटी मतलब जहां कोई मिक्सचेरिटी नहीं, अडल्ट्रेशन नहीं, थोड़ी भी मैल नहीं, वो प्योरिटी का संस्कार.
3: एक दो महीने का बच्चा कैसे देखता है, सबके साथ स्माइल करता है, कुछ नहीं देखता है। नौकर है, मेड है, माँ है, भाई है, बहन है, दोस्त है, वही स्माइल देता है, वैसे प्यार से बात करता है,
4: क्योंकि वो आत्मा
3: अगली विद्युत ऐसे पकड़ लेते, सबके साथ वही करते हैं,
4: क्योंकि वो आत्मा अभी अपनी ओरिजिनलिटी में है ना। उसके पास भी अक्वायर्ड संस्कार है बच्चे के पास। दिस वी हैव टू रिमेम्बर कि बच्चे के पास पास्ट बर्थ के, पेरेंट्स के, ये सब अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन बच्चा अभी ईगो नहीं क्रिएट की है, क्योंकि अभी उसका अटैचमेंट लेबल्स के साथ, रोल्स के साथ, पोजिशन के साथ, प्रॉपर्टी के साथ अभी नहीं हुआ है। उसको हम धीरे धीरे वो अटैचमेंट करना सिखाते हैं। अगर वो बच्चा किसी स्टाफ से या किसी से बहुत प्यार से हग करके बात करे तो कोई उसको आके बोल देगा, ऐसे नहीं, वो तुम्हारा स्टाफ है, ये सिखाया जाता है, उनको नहीं पता होता ये है, उसके साथ नहीं ऐसे बात करनी है। उसका तो प्यार दोनों सबके लिए सेम था, कोई उसको कंडीशन करके सिखा देता है।
3: दो साल का भी नहीं हुआ मेरा, वो था, हुआ था जब मेरा ग्रैंड चाइल्ड, वो मुझसे पूछ रहा था कि ये भैया, मैं बोला ये भैया है आपका, ये भी भैया है, ये माँ, तो फिर स्टाफ, तो ये हमारी फैमिली नहीं है। ऐसे ये कहाँ से शब्द ढूंढ के लाता है,
4: right.
3: ये भी तो हमारा भाई है ना, ही वाज टेलिंग मी, मतलब उसके पूर्व संस्कार में भाई, मतलब देखो सोल टू सोल वो देख रहा है,
4: क्योंकि वो आत्मा वो संस्कार लेकर आई है।
3: स्टाफ जिसके साथ रुके तो ये भी भाई है,
4: हाँ।
3: नहीं बेटा वो स्टाफ है,
4: हाँ।
3: स्टाफ फैमिली नहीं होता,
4: हाँ।
3: कैसे कैसे सवाल पूछते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाता है बच्चों।
4: आप अगर पूछा स्टाफ फैमिली नहीं होता, अगर अब किसी ने सिखाया नहीं स्टाफ फैमिली नहीं होता, फैमिली ये होता है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये फैमिली होता है, ये स्टाफ है, दिस इज द लर्निंग, दिस इज द बिगिनिंग, कि वो आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल, उसके ऊपर लेयर डाल दी कि ये है, फिर ये है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा अपनी प्योरिटी,
3: अपनी वो इनसेंस, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी बच्चों से सीखने को मिल रही है,
4: डेफिनेटली सोल कॉन्शियस के सामने बैठेंगे तो अपनी सोल कॉन्शियस इमर्ज होने शुरू होगी, होगी। अब पहला फाइल आत्मा का प्योरिटी, दिस में साउंड वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव राइट नाउ बिकॉज वी आर लिटिल अवे फ्रॉम इट, यू नो, पीस लव हैप्पीनेस हम फिर भी सारा दिन में काफी एक्सपीरियंस करते हैं, प्योरिटी से हम थोड़ा सा अपने आप को दूर देखते हैं अभी, कि किसी के प्रति जजमेंटल नहीं, किसी के प्रति क्रिटिकल नहीं, किसी भी सीन और दृश्य में कोई गलत थॉट ही नहीं आ रही, ये प्योरिटी है, ये प्योरिटी है। लेकिन लेट अस जस्ट विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल, ये सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है, अभी ये इमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही थॉट क्रिएट की तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक सर्किट बनना शुरू होगा। अगर थॉट ही नहीं क्रिएट की, किया ही नहीं, तो वो संस्कार है लेकिन वो फाइल कभी खुली ही नहीं।
3: थॉट किस चीज की क्रिएट नहीं की बोल रहे थे,
4: ये कब थॉट लास्ट हमने क्रिएट की थी कि आई एम अ प्योर सोल?
3: वो तो मेडिटेशन में बैठ के,
4: वो भी तो अब ना जब सीख रहे हैं, जब वो भी नहीं किया था तो तब लास्ट कब क्रिएट की थी?
3: तब तो मालूम ही नहीं था।
4: जब मालूम ही नहीं था तो क्रिएट ही नहीं की, जब क्रिएट ही नहीं की फाइल खुलने का कोई चांस नहीं। नॉलेज मिली, शुरू किया, वो फाइल को टच करना तो शुरू हो गया। सिर्फ एक क्वालिटी भी अगर रोज लें, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, कोई सीन आई, आई एम अ प्योर सोल, किसी की बात कोई बुरी लगी, आई एम अ प्योर सोल, ग्रुप बनना शुरू होगा धीरे धीरे, लेकिन बनना तो शुरू हो गया। जैसे आई एम अ प्योर सोल, मंत्र जीवन के ये होते हैं, ये मंत्र है जिसको बार बार बार बार रिपीट करते जाए, आई एम अ प्योर सोल। नाउ विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, नॉट आई एम अ फादर, दोनों लाइंस में फर्क
3: बहुत फर्क है, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर एंड आई एम अ फादर में।
4: आई एम अ फादर तो एक्सपेक्टेशंस, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर,
3: सोल से सोल को एक्सपेक्ट नहीं करता है क्या?
4: सोल से सोल को रियलिटी पता है, सोल से सोल को पता है कि वो ये सब संस्कार लेकर आए हैं, उसके थ्रू बात कर रहे हैं। एंड सोल से सोल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, मैं आत्मा हूं तो मेरी जो एनर्जी का फ्लो है वो देने की तरफ हो जाता है बजाय के लेने की तरफ।
3: सोल से सोल मेरा रिलेशनशिप और मीटिंग या शादी या बच्चा हुआ ही इसलिए था कि कार्मिक अकाउंट है, ठीक है? तो वो कार्मिक अकाउंट के लिए ही तो फिर सोल से सोल की एक्सपेक्टेशन तो होती होगी ना।
4: एक सिंपल चीज देखते हैं, सपोज प्योरिटी संस्कार है आत्मा का, एक और संस्कार है आत्मा का पीस, ये ओरिजिनल संस्कार है। इसको देख लेते हैं, इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि आत्मा का ओरिजिनल फाइल पीस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। ओम शांति हम इसलिए कहते हैं, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल बींग। लेकिन मुझे याद नहीं था कि आई एम अ पीसफुल बींग, राइट? तो हम शांति ढूंढने लगे क्योंकि शांति चाहिए तो थी आत्मा को, ये नहीं याद था कि आई एम अ पीसफुल बींग। ये याद होना कि आई एम अ पीसफुल बींग और ये भूल जाना, दोनों में जीवन जीने के तरीके में कोई फर्क आएगा?
3: बहुत।
4: क्या फर्क आएगा?
3: ऑपोजिट हो जाएगा पीस का।
4: क्या क्या करेंगे, क्या फर्क हो जाएगा?
3: आप यहाँ रेस्टलेस रहेंगे, वहाँ पीसफुल रहेंगे, यहाँ पर आप एंग्री रहेंगे।
4: दोनों में से पीस कब एक्सपीरियंस होगी?
3: जब आप पीस में रहेंगे,
4: जब आप पीसफुल सोल हैं, ये याद रहेगा।
3: और पीसफुल कर्म करेंगे, पीसफुल सोचेंगे, पीसफुल बातें करेंगे,
4: पीसफुल सोचेंगे, तभी पीस एक्सपीरियंस होगी। जब पीस एक्सपीरियंस होगी, शांति अनुभव होगी, आत्मा को अच्छा लगेगा। ये भूल गया सारा, याद क्या रहा, मैं ये सब आउटर चीजें हूँ। लेकिन शांति फिर भी चाहिए थी, क्यों चाहिए थी? आत्मा को उसकी ओरिजिनल चीजें चाहिए होती है। इट फील्स वेरी सफोकेटेड विदाउट दैट। अब शांति के लिए हम बाहर जाने लगे, मतलब जो अपना था उसको अनुभव नहीं किया तो बाहर से लेने की कोशिश की। एक्सपेक्टेशंस ये है, बाहर से लेने की कोशिश करना इज एक्सपेक्टेशन। फिर हमने कहा इधर जाएं तो शांति मिलेगी, पहाड़ों में जाएं तो शांति मिलेगी, कोई धर्म स्थान पर जाएं तो शांति मिलेगी, कुछ लोगों ने कहा युद्ध करेंगे तो शांति मिलेगी, कुछ लोगों ने कहा जंगल में जाके अकेले रहेंगे तो शांति मिलेगी,
3: कुछ ड्रग्स में चले गए ये खाएंगे पिएंगे तो शांति मिलेगी।
4: बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी वो चीज, आत्मा को वो अगर चाहिए तो उसको वो संस्कार को कर्म में लाना पड़ेगा। अगर कर्म में लाए तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो मांगना बंद कर देंगे। अब आपने कहा इफ आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी।
3: हाँ।
4: जब आई एम अ सोल एंड आत्मा की ओरिजिनल संस्कार को कर्म में यूज करेंगे तो वो कर्म में क्या क्या आएगा? प्यार आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, ये सब कुछ आ गया, आत्मा ने अनुभव कर लिया उसको। जब अनुभव कर लिया तो वो चीज की सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं औरों से? क्योंकि हमें वो वाली क्वालिटी चाहिए, वो मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा।
3: ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि मैं वही चीज मांग रहा हूँ जो मुझ में नहीं है।
4: नहीं, हम वो चीज नहीं मांग
3: हम
4: रहे
3: लोगों जो से आपने कहा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे
4: जो हमें चाहिए, हम अनुभव करना चाहते हैं, वो हम रिश्तों में अच्छा फील करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा अच्छा फील करना चाहती है, आत्मा प्यार अनुभव करना चाहती है, आत्मा एक्सेप्टेंस अनुभव करना चाहती
3: है। और अगर मैं अनुभव करूं कि मैं हूं पीसफुल और मैं सोल हूं तो दूसरे से मैं उम्मीद नहीं करूंगा इस चीज की।
4: सपोज आप कहते हैं मीठा अच्छा लगता है, चलो मीठा अच्छा लगता है तो मिठास टेस्ट करना चाहते हैं, राइट? एक मिठाई की पीस आपकी प्लेट में भी पड़ी है, एक मिठाई का पीस मेरी प्लेट में भी पड़ा है, आपको मीठा अच्छा लगता है, यू वॉन्ट मीठा, लेकिन यू हैव फॉरगॉटन कि मिठाई आपकी प्लेट में पड़ी है, तो वो वाली एक बात भूल गई। लेकिन अब मीठा तो अच्छा लगता है, मीठा तो चाहिए, तो यू आर गोइंग टू आस्क मी फॉर इट। विजुअलाइज दिस सीन, इट बिकम वेरी इजी टू फिट इट हियर। प्लेट आपके पास भी है, प्लेट मेरे पास भी है, वही मिठाई आपकी प्लेट में भी है, मेरी प्लेट में भी है। आपको मीठा अच्छा लगता है, मीठा खाने का मन कर रहा है, सिर्फ लेकिन भूल गए कि मिठाई आपके प्लेट में है, तो आप क्या करेंगे?
3: मैं बोलूंगा यार थोड़ा टेस्ट करा दे।
4: सो यू विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम मी। अब मेरे पास चॉइस है,
3: शेयर करूं या ना करूं,
4: शेयर करूं या ना करूं। मतलब जो आपको चाहिए वो आपको दू या
3: ना दू।
4: आपने तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर ली, एंड आपने फिर साथ में ये भी लेबल लगाया कि अगर मैंने आपको वो मिठाई दी देन आई एम अ नाइस पर्सन। क्योंकि आपको मिठाई चाहिए। सपोज मैंने वो मिठाई नहीं दी और आपको चाहिए थी, तो उस क्षण You will not like me for who I am. यू से इतना ही तो एक्सपेक्ट किया था, क्या चाहिए क्या था मुझे इस रिश्ते में? इतनी थोड़ी सी मिठाई चाहिए थी, वो भी नहीं दी। अब इक्वेशन चेंज, आपको मीठा अच्छा लगता है, आपकी प्लेट में मिठाई पड़ी है, आपको याद है, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन आप मिठाई अपनी प्लेट से खा रहे हैं, तो आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन रखना।
3: खाऊं या ना खाऊं, जब मुझे मालूम है तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: टेस्ट आप वहां से कर रहे हैं मिठाई, आपको जो मिठास चाहिए थी वो मिल रही है, तो फिर मुझसे एक्सपेक्टेशन मिठाई की
3: जीरो।
4: दिस हो गया। अब मैं अगर मिठाई न दूं
3: तो मुझे क्या फर्क पड़ता है?
4: सी द लाइन, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने नहीं दिया? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर उन्होंने नहीं दिया तो दे आर नॉट रॉन्ग और बैड।
3: सपोज मीठा नहीं खिलाया तो कड़वा तो आपकी प्लेट में नहीं डाले ना।
4: ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि मीठा नहीं खिलाया तो कड़वा तो ना डाले प्लेट में।
3: उसके बाद जो कड़वा पड़ा उठा के मेरी मिठाई के साथ डाल दे,
4: राइट,
3: वो भी तो राइट नहीं है ना।
4: आपके पास इतनी मिठाई है कि अगर कोई कड़वा भी डाल दे
3: वो भी
4: आप अपनी मिठाई खाते जाए। इम्पोर्टेंट इज याद रखना कि मेरे पास वो मिठाई है। दिस चेंजेस थिंग्स, एंड फोकस इस पर कर देना कि आप मुझे वो मिठाई खिला ले।
3: हो सकता है मैं कड़वा जिसको बोल रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरा एक थॉट आया, मैं जिस चीज को कड़वा बोल रहा हूँ उसका मिठाई मुझे ना देना, उस चीज को मैं कड़वा बोल रहा हूँ।
4: वेरी ट्रू, या
3: तो उसे मिठाई नहीं दी को मैं कड़वा दे दिया, बोल दिया,
4: राइट। जैसे
3: तो आपने उसका मतलब
4: उसका नजर चेंज हो जाएगा,
3: पर्सपेक्टिव अपना अपना।
4: आपने

0: बिहेव किया, बहुत कड़वा भी डाल दिया तो भी अपनी मिठाई पर फोकस्ड रखें। एंड जितना आप अपनी मिठाई पर फोकस रखेंगे, आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन मेरी तरफ वो प्योरिटी की आएगी और साथ साथ आप मुझे मिठाई भी खिला सकते हैं। तो हो सकता है मेरा कड़वापन भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगे वो मीठा खाने से। रेडिएट योर प्योरिटी टुवर्ड्स मी।
1: इतना ओवरफ्लोइंग अबंडेंस नेवर एंडिंग मीठा आपके पास है, तो शेयर करो तो और बढ़ेगा।
0: शेयर करेंगे तो और एक्सपीरियंस में आएगा, एक्सपीरियंस में आएगा तो और बढ़ता जाएगा। लेकिन अपनी मिठाई तो तब शेयर करेंगे ना
1: जब पता चले कि हमारे पास है रियलाइजेशन।
0: दिस अब पता चले अपने पास है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन हुई खत्म, अपनी रेडिएट करनी शुरू कर दी, जीवन कितना सिंपल हो जाएगा। एंड जितना मुझे रेडिएट किया अपना बढ़ता गया। सिंपल। अब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को लें। दिस सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटीज एंड वाइब्रेशन। कि जैसे ही सोल टू सोल बात की आपने, आई एम अ प्योर सोल एज अ फादर, एक्सपेक्टेशन सामने से घटने लगेंगे।
1: स्पीकिंग टू अ प्योर सोल एज अ सन और डॉटर।
0: वेरी ट्रू। एक्सपेक्टेशंस कम होने
1: लगेंगे, वाइफ व्हाटएवर,
0: एक्सपेक्टेशंस कम होने लगेंगे। धीरे धीरे होगा लेकिन कम होने शुरू हो जाएंगी। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरे साथ पास सब कुछ है, लेकिन ये मेरे पास जो सब कुछ है उसके साथ मैंने इन सब के साथ रहना है, कर्म करना है। तो मेरी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इट विल गो टूवर्ड्स गिविंग रादर देन आस्किंग, rather than begging, rather than wanting, energy flow change हो जाएगा, आत्मा का अनुभव बदल जाएगा।
1: कितनी सुंदर बात है। और मैं सोच रहा था कि देखो हर चीज तो ये पेड़ है हमारे सर के ऊपर, सिर्फ गिविंग कर रहा है, कुछ मांगता ही नहीं है। आप कुछ छांव दे रहा है, मुझे छांव दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, फ्रूट दे रहा है।
0: ह्यूमन नेचर ऑल्सो भी गिविंग है, लेकिन ओरिजिनल नेचर भूल गई है ना, तो गिविंग से आस्किंग में चले गए, गिविंग से वांटिंग में चले गए, गिविंग से एक्सपेक्टेशंस में चले गए। नेचुरल और नॉर्मल की डेफिनेशन बदल गई। आज लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखे, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: गिविंग रखना नॉर्मल है तो इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं, अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
2: Sanskars of body consciousness and ego are deep sanskars created in many births. We are 100% body conscious today. We have forgotten that we are soul. Now we are shifting to 100% soul conscious, which means always aware of being a soul with divine qualities. This shift is a gradual process of attention and awareness. If we create thoughts, this transformation is difficult. Soul consciousness is not possible in practical life. When everyone else is not doing it, how can I do it? These thoughts create a barrier in our journey of transformation. We always need to remember that originally we were 100% soul conscious. Divinity, peace, love and bliss was our natural self in practical life. That is our potential, and little attention and we can go to being who we originally were. As we shift towards soul consciousness, our attention will not go towards the acquired sanskars of others. When we emerge our purity, we will not look at the impurity of others.

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है, शनिवार हम लोग आप सभी से रूबरू होते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के साथ। जोड़ देते हैं आपको आज के दिन, विशेष हमारे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नए नए करियर के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं और बहुत सारी करियर की ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी कभी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग फील्ड में रहेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलता। इसीलिए लोग जो हैं स्कूल में, आप देखेंगे कि कई बार कुछ ऐसे पिकनिक कराते हैं कुछ स्कूल के माध्यम से कि आपको कोई फैक्ट्री दिखाने लेके गए, कोई आपको किसानों का खेती काम करते हुए उनको दिखाना शुरू कर दिया, पहाड़ों के बीच में आपको लेके गए। तो इस तरह के ये जो बाहरी का आवरण है जो हमारे स्कूल के साथ साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एज ए पिकनिक माना, मौज करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ें हम लोग देख कर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर आपको सीखना होता है, लर्निंग होता है कि ये चीज़ें कैसी होती हैं। अगर फैक्ट्री देखने गए तो फैक्ट्री कैसे बना और उसमें क्या चीज़ें बनती है, कितने लोग लगते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अगर आप कोई बिजनेस चीज़ें देखने जाते हैं, कुछ ऐसे मार्केट में चलेंगे तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट में सारी चीज़ें आती कैसे हैं और डिलीवर कैसे होती हैं, लोगों के पीस पास में कैसे पहुंचती हैं, वो आपका अगर सोचने का तरीका आ जाए आपको तो आप बहुत अच्छे एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं या समझते हैं या किस तरह की आपकी सोच है। तो सिर्फ पिकनिक है, मौज मस्ती के लिए गए, ऐसा सोच के जाएंगे तो फिर आप कुछ उठा नहीं पाएंगे, है ना। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आपको करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें और किस तरह से ये काम किया गया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब लुधियाना से विशेष हरि किशोर जी आए हुए हैं और आप वाटर फिल्टर का काम करते हैं और बात लंबे समय से, तो उसके बारे में जानेंगे आपसे। लेकिन आपको पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। कैसे है हरि किशोर जी आप?
3: जी बहुत ही बढ़िया
2: जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आपकी बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा कराइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और वहाँ का परिवेश कैसा था, तो हमें अच्छा लगेगा।
3: जी भाई जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया बाबा। एक्चुअली भ्राता जी, इस शरीर का नाम परिचय देना चाहते हैं। इस शरीर का नाम हरि किशोर है और बचपन से ही स्कूल टाइम में गाने का बहुत शौक रहता था और नाट्य कला में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा और समय अनुसार ये अवसर भी मिले और स्कूल में कविताएं, गीत और अभिनय करते और ये सब करने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा शुरू से, यानी कि तो ये सब करते हुए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि हमारे जो लौकिक पिताजी थे, यानी कि हमारे पिताजी, वो आर्मी में थे।
2: अच्छा,
3: मिलिट्री में। तो जैसे उनकी आर्मी की ड्यूटी होती थी जहाँ पे भी, तो वो हमें अपने साथ ही रखते थे, यानी कि फैमिली को। तो फैमिली को साथ जैसे रखते थे तो वहीं पर हमारा पढ़ना लिखना, हमारी परवरिश वो आर्मी कैंपस में ही होती थी, यानी कि वहाँ के जो फैमिली क्वार्टर्स होते थे वहीं पे रखा जाता था। तो पढ़ाई भी हमारी जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, ट्रांसफ़र होती थी, तो उनके साथ साथ ही वहाँ जाना होता था। तो ऐसे ही बहुत सारे मौके मिले आर्मी में भी, जब उनके वो कुछ कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेंट करने का मौका मिलता था। तो ऐसे करके अभिनय वगैरह करते रहे।
2: बिल्कुल
3: जी।
2: तो मैं चाहूँगा कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा कराइए कि आप संगीत वगैरह की जो बातें कर रहे हैं
3: जी,
2: तो कुछ स्कूल में आपने कंपटीशन में या कुछ प्राइज आपको मिला हो, ऐसे कुछ इवेंट हुए हो जिसमें आपने भाग लिया हो, उसके
3: नहीं,
2: बारे
3: उस समय उस समय तो भ्राता जी कोई प्राइज की कोई बात नहीं होती थी
2: जी,
3: क्योंकि ये बात करें तो मैं जाऊँगा 1980 में।
2: अच्छा।
3: तो उस समय में जो स्कूल का जो था वो क्लास होती थी 9 की, तो उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी, छोटी क्लासेस जो होती थी उसमें ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती थी। तो इन चीजों को सामने रखते हुए तो एक चलो एक जैसे स्कूल में जो भी जैसे होता है किसी को गिफ्ट के तौर पे पेन दे दिया, कॉपी दे दी, तो मना ये सब चीजें चलती थी उस समय। तो ऐसा होता था। बाकी अभिनय की बात करें तो जैसे हम जाते थे किसी दूसरे अन्य स्थानों पे, तो वहाँ पे जब हम अपना आर्ट शो करते थे तो वहाँ पे प्राइजेस वगैरह दिए जाते थे।
4: अच्छा।
3: हाँ, वहाँ पे मिलते थे। अभी लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 1985 में हम लुधियाना में आए थे
4: जी।
3: तो वहाँ पे फर्स्ट में जैसे ही हमें थिएटर करने का मौका मिला और थिएटर करते करते बहुत सारे कह सकते हैं कि अवार्ड वगैरह भी दिए जाते थे वहाँ पे, तो वो सब भी हासिल हुए और अभिनय करने का जो एक अच्छा था कार्यक्रम, आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्म लाइन में भी तब्दील होता गया।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और बचपन की यादें भी आपने ताज़ा कराई। उस समय तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी, लेकिन जहाँ भी आप प्रेजेंटेशन देते थे लोग पेन या फिर किताब आपको देते थे एज ए यादों के बारे में। तो आइए, और मैं चाहूँगा कि बचपन में स्कूल लाइफ में जैसे आपके पिताजी आर्मी में रहे हो
3: जी,
2: तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी मना बदली भी होते थे आपके स्कूल के, तो उसके बारे में बताइए।
3: हाँ, बदली होती थी। उसमें ये था कि कुछ समय वहाँ पढ़ लिया, कुछ समय और किसी जगह पे जाके स्कूल में कह सकते हैं कि दाखिला ले लिया, तो ऐसा ये सब चलता था।
2: अच्छा अच्छा, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती थी क्या?
3: जी, परेशानी तो वैसे स्टूडेंट लाइफ थी तो ये तो होता था कि जो पढ़ेंगे तो पढ़ने पे ही सारा डिपेंड होता था, कितना हम पढ़ लेंगे उसी के आधार पे सारा सब कुछ चलता रहता था। हाँ, नवीन अगर बात करें कि वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और है, तो ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता था, एक जैसा ही रहता था। जी जी जी,
2: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना, कोई जगह पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय रुक गए तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उससे फैमिलियर हो जाते हैं, फिर नए जगह पे जाएंगे तो वापस थोड़ा टाइम लगता है।
3: हाँ, वो टाइम तो ठीक कहा आपने, लेकिन जैसे छोटी क्लासेस थी, ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो उस समय बस इतना ही था कि जो टीचर्स होते थे तो वो पहले जब उनको मना स्कूल में लिया जाता था, उनका दाखिला होता था, तो वो मना पूछा करते थे आप इंग्लिश के बारे में, या वो जो चैप्टर होते थे स्कूलों में जो भी अपने, तो उनके बारे में पूछा करते थे, बताते भी थे ठीक है ये बच्चा चलने लायक है या उस क्लास में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, तो इसी तरह ये सब चलता था। तो वो समय थोड़ा सा होता था भाई, फिर भी क्वेश्चनों के जो आंसर पूछे जाते थे तो वो दिए जाते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बचपन की याद कराई
3: जी,
2: और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें भी, होमवर्क नहीं करने पर मारवीर पड़ती थी क्या उस समय आपको, या कुछ ऐसी मस्ती वाली बातें आपकी किसी
3: मार की बात? हाँ, मार की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है भ्राता जी, प्लेसमेंट तो होती ही है, अगर हम स्कूल का कार्य नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करेंगे तो नेचुरल है कि होगा, ऐसा तो होता ही था। तो हाँ, अपनी बात करें तो कभी जैसे कभी कोई क्वेश्चन मिला और उसका आंसर लास्ट में अगर थोड़ा सा भी एक भी कहीं एक शब्द गलत हो जाता था तो नेचुरली ही हाथ आगे करना पड़ता था। जी
2: बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है। और इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं कि करियर को लेकर आपका क्या भावना थी, आप क्या सोचते थे बचपन में, आपकी जो है किस तरह की विचारधारा थी करियर को लेकर, या बचपन में कुछ ऐसे सोचा भी करते थे कि नहीं ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई पढ़ना है और आगे का आगे देखा जाएगा इसी मानसिकता में रहते, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंता या फिर थोड़ा सा उसके पर विचार चलता है स्कूल पढ़ते वक्त।
3: जी भाई जी,
2: तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके विचार कैसे चलते हैं उस समय और किस तरह का, और देखा गया कि वो परिवेश कैसा है, आप जिस संकुल में रहते हो, जहाँ पर रहते हो, वो परिवेश भी आपको जो है मोटिवेट करता है कि क्या करना है क्या बनना है। तो अगर ऐसे आपके आसपास में लोग नहीं हैं और आप नहीं जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, या फिर माता पिता भी इतना अवेयर नहीं है कि क्या बताना है बच्चों को, किस तरह से उनके करियर के लिए उनको काउंसलिंग, खुद माता पिता अगर बोले कि भाई आप पढ़ते पढ़ते क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, आपकी रुचि क्या है इसके बारे में हमें बताइए, ताकि हम आगे उसके बारे में आपके लिए तैयारी कर सकें, तो ये बातें शायद कई कई कम होता है, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो शायद बच्चों को ये सवाल पूछते हैं, तो दोनों तरफ से बात अच्छी हो जाती है, तो बच्चे की मानसिकता तैयार होती है, वो बच्चा बताएगा तो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं।
3: जी, जी, जी।
2: तो हर एक साल दो साल के बाद इसको अगर आप इस तरह की बातें उनके साथ शेयरिंग करते हैं तो बच्चों की शेयरिंग सुनने के बाद उसकी रुचि क्या है और उसके मार्क्स देखिए, उनका सब्जेक्ट में किधर अच्छा काम आ रहा है, बच्चा अच्छा गेन कर रहा है, तो उस अनुसार उसको अगर मैनिपुलेट करते हैं तो आपको काउंसलिंग करने की या बाद में करियर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा इसमें एक्सेल है और उसकी मनसा ये है, तो दोनों मैच हो रहा है तो आप उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय में शायद माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते थे जिसके वजह से ये चीजें पीछे रह जाती।
3: जी भाई जी।
2: आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शायद बच्चों से ये बातें कम होती है, क्योंकि बच्चों का और माता पिताओं का मेल या मिलन जो है समय उनके पास कम है।
3: जी भाई
2: तो
3: जी।
2: इस वजह से भी ये थोड़ा गैप पड़ जाता है। तो हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से इन चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेनोमोदन 107.8 एफएम पर, जिया करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हरि किशोर जी हमारे साथ है पंजाब लुधियाना से। और बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने बताया अपने पढ़ाई के बारे में, स्कूली लाइफ के बारे में उन्होंने शेयरिंग किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हरि किशोर जी से वापस जोड़ता हूँ मैं आप सभी को। हरि किशोर जी, बताइए मुझे कि आप स्कूल टाइम में या 8वीं 9वीं 10वीं में जब आए, सेकेंडरी स्कूल में आप एंट्री कर लिए
1: जी,
0: तो क्या उस समय आप अपने करियर को लेकर कुछ बनना चाहते, इसके बारे में सोचते थे क्या? अगर सोचते तो किस तरह के विचार आपके होते थे?
1: हाँ, ये कहना चाहेंगे भाई जी इसके ऊपर कि बचपन से बस मुझे ये होता था कि संगीत सीखना है और कोशिश करनी है भाई गीत गाने हैं, तो इसमें यही होता था कि चलो मैं एक अच्छा सिंगर बन जाऊंगा या फिर कुछ एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा मन में एक संकल्प रहता था और ये भी रहता था। और दूसरा बात करें तो सिंगिंग की, तो सिंगिंग में यही होता था कि ज़्यादातर मैं किशोर कुमार जी के गीत सुनता था, तो उनको अपना एक आइडल भी समझता था।
0: अच्छा
1: जी जी जी जी,
0: जी
1: तो उनके ही गीत बहुत सारे मुझे अच्छे लगते थे, बहुत ही मना स्वाभाविक तौर पे वही ज़्यादातर मैं गीत गाता था। वैसे बहुत सारे गीत थे, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मन्ना डे हैं, मुकेश जी हैं और अन्य हैं, तो केएल सहगल जी हैं जैसे,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छे महान ये महारथी रहे हैं संगीत लाइन में, और सबकी रेस्पेक्ट होती थी। लेकिन किशोर कुमार जी की अगर बात करें तो वो जो गीत जैसे गाते थे और उनकी जो वॉइस टचिंग थी वो बहुत ही हमें आकर्षित करती थी, तो संकल्प यही होता था कि मैं जब भी गाऊंगा तो जब भी कहीं कैरियर शुरू हुआ तो मैं इन्हीं के माध्यम से, यानी कि इन्हीं को सामने रख के मैं कुछ गीत स्टार्टिंग करूंगा
0: जी, जी।
1: तो ऐसा ये मेरा उस समय चलता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: चलिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि किशोर दा का कोई गीत आप गुनगुना ही दीजिए हमारे श्रोता मित्रों को, अच्छा लगेगा, है ना?
1: किशोर कुमार जी के गीत तो बहुत हैं, जैसे बहुत ही खूबसूरत एक गीत हमारे शाहिर लुधियानवी जी ने लिखा था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो चलिए दो चंद लाइनें हैं वो मैं आपको
0: सुनाई
1: पेशे खिदमत करता हूं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,

0: एक ऐसे गगन के तले। हाँ
1: क्या बात है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे करियर के बारे में, तो करियर को लेकर आप और क्या सोचते थे, किस तरह की बातें आप जो है किया करते हैं, थोड़ा सा बताइए। और कि गाने के अलावा आपको क्या बनना पसंद था?
0: करियर में भाई जी बस यही होता था कि ज़्यादातर हमें यही रहता था कि हमने इस सिंगिंग लाइन या फिर बात करें फिल्म लाइन की, तो कोशिश यही रहती थी कि या तो कोई अभिनेता बनूंगा या फिर कोई सिंगर बन जाऊंगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन ड्रामा में कुछ और ही था। तो ऐसा रहा, और यहाँ तक कि अभी थोड़े समय की बात करें तो चंद 4-5 साल की बात है, उससे पहले भक्ति मार्ग में काफी गीत भजन और माता की भेंटें बहुत सारी गाई हैं। तो ये करियर बन के रहा ये काफी हमारी लाइफ में। और यहाँ तक कि फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में ऐसा पंजाबी फिल्में बहुत सारी की, जिसमें से धार्मिक फिल्में भी थी, गैर धार्मिक भी थी, और सामाजिक फिल्में जिसे कहेंगे ये सब। अभी लास्ट में जो मूवी स्टार्टिंग की थी, बॉलीवुड की मूवी फर्स्ट यानी के कह सकते हैं, तो उसमें एक छोटा सा करेक्टर मिला था। वो फिल्म का नाम था दंगल। तो दंगल में बस छोटा सा काम मिला था। तो बस जैसे कहते हैं ना कि समय जो है ना वो अपना अपनी ही रफ्तार से चलता है, और जब वो समय आ जाता है
1: तो अपने आप सब कुछ हो
0: तो
1: जाता
0: अपने आप ही ऐसा परिवर्तन आता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी कि ये कहेंगे कि उसके बाद तैयारी थी कि मुंबई जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। जूनियर आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत होती थी वहाँ पे, तो सारा कुछ तैयार हो चुका था,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: या कहेंगे कि बैग बैगेज भी पैक हो चुका था। लेकिन परमात्मा पिता की मर्जी कुछ और थी, उन्होंने इस भाई को आगे जाने की अनुमति नहीं दी, तो हमें वापस
1: अच्छा।
0: बुला लिया।
1: ओके ओके। तो दंगल में आपने कौन सा शॉट किया?
0: दंगल में भाई जी एक्चुअली ना वो जो अपना बोलते हैं जो बिजली डिपार्टमेंट होता है, तो उसके कुछ कार्य जो कार्यकर्ता होते हैं, तो उन उनके ही रूप में एक छोटा सा करेक्टर था, जैसे रनिंग शॉट भी कुछ कह सकते हैं, कुछ अपने फेस इम्प्रेशन कह सकते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: बड़ी मूवी थी, इसमें एकदम तो अगर चाहें कि कोई भी, चाहे पंजाबी एक्टर्स कोई अच्छा भी हो बढ़िया भी होगा, तो भी इंडस्ट्री उसको जल्दी वर्क नहीं
1: हाँ
0: देती
1: एक्सेप्ट
0: है।
1: नहीं करता।
0: एक सॉन्ग की तो बात वो तो अलग से है, लेकिन एक शब्द जो है वो भी उनकी, वो अपने ही हिसाब से चलते
1: चलते
0: हैं।
1: हैं उनका लेजर
0: तो
1: चाहिए।
0: वो चाहते हैं कि जब तक ये भले जितना मर्जी इसने काम किया हो, लेकिन जब तक वो इंडस्ट्री में आके कुछ स्ट्रगल नहीं करेगा,
1: तब तक उनको वो
0: हमारे
1: नहीं करना,
0: ऑफिसों के चक्कर
1: चक्कर
0: नहीं
1: नहीं लगेगा।
0: काटेगा, तब तक इससे कुछ भी नहीं करवाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर। तो वो आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि वो हाँ ये कहेंगे कि देते हैं मौका देते हैं, ऐसी कोई
1: हाँ
0: बात नहीं है।
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: अगर एक शब्द का ही अगर क्यों ही कहना है तो वो
1: हाँ
0: भी बहुत मायने रखता
1: जी जी जी
0: है ना?
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि आज के वर्तमान समय में भी ये ट्रेंड है कि अगर फिल्मों में या फिर कहीं आपको थिएटर में काम करना हो तो थोड़ा सा चक्कर जरूर लगाते हैं, और आपके अंदर की जुनून को देखा जाता है और आप कितने उसके लिए पैशनेबल है ये देखा जाता है। और जब आपका पैशन ही है तो आप उसके लिए तैयार ही रहते हैं, आप चक्कर लगाते रहते हैं और आप काम भी करते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। फिल्मों के अलावा या फिर एक्टर या फिर सिंगर के अलावा और क्या सोचते थे आप कि क्या बनना है आपको?
0: बनना भाई जी, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे शुरू से ही मैं मिडिल फैमिली को बिलोंग करता रहा हूँ, और बस यही होती थी कि भाई खाना है कमाना है तो खून पसीने की कमाई से ही कमाना खाना है। हमने ज़्यादा वो नहीं करना है जिससे हमारा ईमान जो है वो बिक जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यही रहा। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई जी,
1: हाँ
0: फिल्म लाइन जो है या संगीत की लाइन है, जो बाहरी लाइन जिसे आज हम आध्यात्मिकता में कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो भ्राताश्री, वो क्योंकि जब आध्यात्मिकता से जुड़ा जाता है तो उसका और इसका डिफरेंट होता है,
1: बिल्कुल
0: फर्क होता है, जमी आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए जो एक योगी होता है उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
1: सही बात,
0: तो इसीलिए बाबा ने हाथ पकड़ा, बाबा ने खुद हाथ पकड़ा और मुझे सदा काल के लिए उस लाइन से अलग कर दिया। ये कहना चाहूंगा
1: जी, जी,
0: क्योंकि
1: जी,
0: वो मैं छोड़ चुका हूँ। बाबा चाहते हैं कि बच्चे अगर आपने कुछ करना है तो बाबा के लिए
1: बाबा के लिए कर सकते हैं
0: जी।
1: हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जब आदमी आध्यात्मिकता की ओर जाता है तो निश्चित तौर पे आध्यात्मिकता हमेशा कहता है कि आप गंदगी से बचो, विकारों से बचो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप जो है एक्टिंग की दुनिया में जो है आपका खाना पीना अलग हो जाता है, आपका रहन सहन अलग हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक माहौल को पकड़े रहना मुश्किल होता है। ऐसा मुश्किल भी नहीं है, अगर आदमी जो है जुनूनी है और वो अपने नियम संयम पर कायम रहना चाहते हैं तो उसे कोई भी नहीं करता है।
0: जी भाई जी।
1: तो बहुत सारे ऐसे हैं, और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी जो है वेजिटेरियन है
0: जी,
1: तो वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप छोटे से शुरू करते हैं तो सब चीज़ें जो है आपको फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं मन जो है आपका वहाँ पर हार जाता है। तो जो बड़े होते हैं उनकी ऑर्डर्स चलते हैं तो वो उस हिसाब से उनको जो है सब कुछ मिल जाता है, वो भी होता है
0: जी।
1: लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि आप अगर वैल्यू के साथ, अपने मूल्यों के साथ अगर जीना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो बचपन से ही, तो वो चीज़ें आपके साथ भी चलती हैं
0: जी।
1: तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपने करियर को कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए काम किया जा रहा है। तो आप भी विचार कीजिए, आप किस करियर के बारे में सोच रही हैं, अगर नहीं सोच रहे तो आज से सोचना शुरू कर दें। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए, हरि किशोर जी से बातें हो रही हैं और हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर करियर को लेकर बातचीत हो रही थी और किशोर जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि उनको फिल्म लाइन या सिंगिंग लाइन में इंटरेस्ट था, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे बनने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, और कई बार हम जो सोचते हैं वो होते नहीं, और जो होता है उसके बारे में कभी सोचते नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये एक ज़िंदगी का फलसफा है, लेकिन अगर आप सोचते हैं तो निश्चित तौर पे आज न कल जो है उसका अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। जैसे किशोर जो को भी अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि ये चीज़ों में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उनको रोकने का वो फिर उनको अच्छा भी लगा ये चीज़ कि शायद मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो जो मुझे चाहिए वो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उन चीज़ को गिव अप कर दिया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर अपना काम कर रहे। तो अब वर्तमान में किस तरह का काम कर रहे हैं आप, किस तरह से आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसके बारे में हमें बताइए।
1: हाँ जी, ये बात तो भाई जी बहुत अच्छी करी आपने। रोजी रोटी के लिए तो मनुष्य जो है वो अपना कार्य ही करता ही है, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे वो एक ऑफिसर्स है, तो चाहे वो कोई नेता है या अभिनेता है, वो उनकी लाइनें हैं, वो अलग से हैं। तो ये बात कहेंगे कि जैसे अभी बात की कि हम ये जो कार्य हैं वो क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जी मेरा आरओ वाटर प्योरीफायरी का काम है, तो इसमें सेल है, सर्विसेज हैं, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं और इनका सारा ये कार्य से ही अपना रोटी जो है वो चलती है, धंधा चलता है, यानी कि कारोबार चलता है, तो करते हैं।
0: तो इसके बारे में आपको पहले कुछ पता था या बाद में ही आपने सीखा और इसको करना शुरू कर दिया?
1: कह सकते हैं कि जैसे उस समय मैं ये करता था साथ में, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ थी तो बहुत कुछ देखने में आ रहा था। और थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि जैसे पीछे से ही कोई पावर है जो ये कह रही है कि कुछ साथ में होना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन छोटा सा एक अनुभव सुनाएंगे कि रामलीला ग्राउंड में एक दशहरे से पहले जो 8 दिन या 9 दिन होते हैं, उन दिनों में रामलीलाएं हुआ करती थी। तो अभिनय का तो शौक था ही, तो ऐसे ही जब अभिनय करते थे तो वहाँ पे एक भाई आते थे, उनका वाटर फिल्टरों का ही काम था। तो उन्होंने कहा कि किशोर भाई जी, आप भले काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करिए, और साथ में ये जरूर करिए कि आपका जो कारोबार है थोड़ा सा एक साइड में ये भी रखिए, थोड़ा सीख लेंगे तो कहीं काम आ सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो भाई जी, कम से कम मैंने 1 साल उस काम को सीखा। सीखने के बाद में वो जहाँ जहाँ पे सर्विसेज देती थी, जैसे रेलवेज हो गई या जैसे कोई ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पे कमर्शियल आरओ एंड डोमेस्टिक आरओ जो थे वो लगा हुआ करते थे। तो उनको जैसे सर्विसेज देना, सारा कुछ देखना, तो मैं जाता भी था, देखता भी था, और आहिस्ता आहिस्ता ये चलना शुरू हो गया। तो कुछ समय के बाद में 2-3 साल वहाँ पे देखा, काम किया, उसके बाद में फिर अपना ही शुरू कर लिया कि चलो खुद करके देखते हैं तो ये काम अच्छा है।
0: जी जी, जी।
1: तो फिर वो ऐसा, फिर वो नेचुरली उसको अपना अपना लिया काम को, तो आज भी वही कर रहे हैं और संतुष्ट हैं। जितना जितना परमात्मा पिता देता है तो उसमें उसकी रजा में कहते हैं खुश रहो तो सदा ही खुशी मिलती रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: दो जनून तो यही है कि 2 वक्त की रोटी, चाहे वो दाल से मिले या नमक के साथ मिले, तो उसी में खुशी है सबसे बड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ये आरओ का काम करते हुए कैसे ये काम चलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप कि कंपनीज के थ्रू ये सारी चीज़ें हो जाती है या आप कुछ करते हैं?
1: ऐसा है भाई जी, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और कंपनी का जो होता है, कंपनी अलग अलग की कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां हैं जो आज मार्केट में चल रही हैं। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: अगर वो हाँ, क्योंकि चीज़ें हैं भाई जी, ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो नेचुरली कॉस्टली भी होती हैं, और जो खुद खुद मतलब एक्स्ट्रा तैयार की करके बनाते हैं तो
0: बनाते
1: जी
0: हैं।
1: जी तो उनका थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। तो बस ये चीज़ें जब वो सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ही हमें हायर कर दीजिए, बना दीजिए, तो अच्छा है। तो ऐसे ही ये सब चलता रहता है। अगर कंपनी की मांगते हैं तो वो भी मिल जाती है।
0: दोनों मना आप करते हैं?
1: जी जी हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक कोई एक्सपीरियंस आपका जो है, जैसे ना जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं और कंज्यूमर को, क्योंकि एक मार्केटिंग वाली फील्ड आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल भी लगता है शुरू शुरू में, और बाद में एक बार आप अनुभवी हो जाते हैं तो एक सेटिंग हो जाती है।
1: जी भाई जी।
0: एक एवरेज आपको बिजनेस मिलता ही है, तो अब मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसको सेट करने में, शुरुआत में क्या दिक्कतें आई और बाद में कैसे सेट?
1: जी भाई जी, सेट करने की बात करें तो ये बिजनेस लाइन ऐसी है भ्राता जी, इसके ऊपर, इसके अंदर स्थायी रूप से कुछ नहीं रहता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसका ये है कि ऊपर नीचे अवस्थाएं जैसे मनुष्य की होती है, वैसे ही इस कारोबार की भी ऊपर नीचे होती रहती है। और आज कहीं थोड़ा सा अच्छा है तो कल थोड़ा डाउन भी है, वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और जहाँ देखा कि चलो दो पैसे का काम है कर लो, तो वो भी चलो ठीक है। हाँ, अब ये है कि सब इच्छाएं समाप्त होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बस वो थोड़ा सा तो चाहिए ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो सब चलता रहता है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आध गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाई दीजिए।
1: श्रोताओं को गीत? जी, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक आध्यात्मिक गीत जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक भाई हैं, बीके भाई हैं, उन्होंने ही कुछ लाइनें लिखी हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि सुना सकूं आपको।
0: बिल्कुल।
1: मेरी रूह तुझको बाबा तुझे याद करते जाए, तेरी याद में हम सब कुछ

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हरी किशोर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा करूंगा कि हमारे मिडिल फैमिली में इस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का अनुभव हरी किशोर जी ने सुनाया और आपको सुनकर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी लगी होगी कि बचपन में जिस तरह के हम सपने देखते हैं, बड़े होने तक वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम उस तक नहीं पहुँच पाते, और फिर जीवन के जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो हमारी वास्तविकता है, उसके साथ हम सौदा करते हैं और उसके साथ जीने भी लगते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं हमारे आसपास में जो होती हैं वो उनके जरिए जो चीज़ें मिल जाती हैं वैसे हम लोग करते हैं। जैसे कोई बच्चे का अगर पिताजी नौकरी करता है, एज ए फैक्ट्री में काम करता है, तो बच्चा भी फैक्ट्री में करने लग जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है या फिर फैमिली की सपोर्ट मिल जाती है तो वो कहीं और भी काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके साथ में मैं यही कहूँगा कि आप अपने करियर के लिए अगर आप फ्रेमआउट अभी से करना शुरू कर देंगे, अभी से सोचना शुरू करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, और आज इंटरनेट का ज़माना है तो थोड़ा सा आपको जो है नॉलेज भी ब्रीफ में मिल ही जाएगा कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके लिए किस तरह का एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, क्या तैयारी है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या पढ़ाई लगती है, 10th के बाद, 12th के बाद या डिग्री के बाद वो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ाई पूरा कर लीजिए और पढ़ाई पूरा होने के बाद फिर आप अपने करियर के लिए, उस मुकाम के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, थोड़ा सा जो है एप्रिसिएशन वाली बात आती है, और उन चीज़ों को समझ लें और अप्रेंटिस पर कुछ काम, कुछ हद तक दो तीन जगह काम कीजिए जहाँ पर आपको करना है आपको। और अगर आप आर्टिस्ट के लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको थिएटर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जुड़ के काम करना पड़ता है और थोड़ी देर के बाद आपको जो है आइडिया मिल जाता है, आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने करियर को बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं, और कुछ लगे तो हमें ज़रूर कॉल करके 9914151415 इस नंबर पे फोन करके आप अपनी बात हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं और हम आपको हेल्प पूरी तरह से करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 पर आ रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक सफर, आंतरिक दिव्यता का आह्वान। जानिए कैसे देवी दुर्गा और लक्ष्मी हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक है, कैसे जागरण, व्रत और दीपक जलाना हमें आत्मा चेतना की ओर ले जाते हैं, और कैसे रास गरबा हमें सिखाते हैं। जीवन में सामंजस्य और सहयोग। नवरात्रि के नौ दिन रोज सुबह 11 बजे जुड़िए आरजे संजय के साथ सिर्फ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अंतरिक्ष दिव्यता का हुआ।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध हैं और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी,
0: बाल संसार में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और ख़ासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज़्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे, मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहाँ उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। यानी बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएँ तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें। तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेज़ी से वहाँ भाग जाए, लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहाँ से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराज़गी व्यक्त नहीं करें, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए, उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहाँ नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूँ। और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहाँ उपस्थित भी करेगा और अंतर मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएँ जागृत हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़ा अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो ज़रूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें, और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए, और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप करा देते हैं, तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
1: जी जी।
0: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ,
1: बिल्कुल,
0: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
1: जी
0: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज़्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
1: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
1: जी जी।
0: लेकिन वो समझने के लिए नहीं आया, शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
1: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
0: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पॉर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल बनो, सफल होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड ओके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार, इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगता हो, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरुआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहाँ पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, जिसके बारे में हमने बातें की। जो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उसका आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आपके गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, तो इनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब यहाँ हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है बल्कि ये समझने की है। और मैंने माँ से, उनके बच्चे की माँ से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी माँ के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की माँ को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाई फोर्स नहीं कर सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मनस्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज़्यादा लगता है। अब कम और ज़्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब माँ ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उन्हें को फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग चीज़ों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक से समझें जाने। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे ख़ास मनोस्थिति के बारे में और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र संवेदनाओं की गरिमा को, तो यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में, साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज़ दिखाई दे, आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग हो सकता है कि वो चीज़ें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है, देखिए ट्रायल एंड एरर सारी ज़िंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मना हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज़ हमेशा काम करती हैं, भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सवाल, एक और भावनाएँ जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना, तो अजय जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
1: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहाँ चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेकर होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्चरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है, बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति एक गहरी आस्था है और वो इस सोचता है कि ये तीन लोग मिलके हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहाँ परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों, उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएँ धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा, और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहाँ प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर किया जा रहा है, ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, माँ समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है, तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफस्टाइल में उन चीज़ों का कहीं मायने बना ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं, तो वहाँ सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है, तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अपनाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज़ भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं को ठीक करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को सम्मान से देखें, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
1: क्या?
0: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
1: है।
0: गर्मियों की निहार है?
1: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
1: ना ना।

सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है। सुर नहीं तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं बेसुरा है। म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो। तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं।

ना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन

काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे